सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की वैशाख माह की तिथि 20, तदनुसार 10 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 45 सेकेंड

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनिए सांसारिक कर्तव्य।
1: आर्ष उगती है, शरीर है, उसमें प्राण है, तभी हम कोई धर्मार्थ कर्तव्य या मोक्ष की साधना कर सकते हैं। अतः इसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। सुजाता से परिचित होने पर साधनारत तापस सिद्धार्थ ने इसे जाना और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति का उचित मार्ग मिला। कई ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं कि सांसारिक कर्तव्य में राग संलिप्त व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई ऐसी उदात्त घटना घटी कि उसकी दशा दिशा पल भर में बदल गई। इन महान आत्माओं ने अपने भीतर आए चमत्कारिक परिवर्तन के पश्चात भी घर परिवार छोड़कर संन्यस्त हो जाने की सीख देने की बजाय कैसे उत्तमोत्तम तरीके से अपना गृहस्थ धर्म, सांसारिक संबंध और कर्तव्य निभाते हुए परम पद पाकर मनुष्य महान लक्ष्य साध सकता है, इसी का मार्ग सुझाया। किंतु ऐसे भी कुछ महापुरुष हुए हैं जिनके ऐश्वर्य पूरित जीवन में कुछ विक्षोभकारी घटनाएं घटी और वे प्रियदर्शी अशोक न बन वैरागी हो गए। वैराग्य के लिए ही उत्प्रेरित करते रहे। राजा भर्तहरि इस प्रसंग में स्मरण आते हैं। भर्तहरि बड़े यशस्वी प्रजापालक राजा थे। दिन रात प्रजा की सुख समृद्धि के ही कार्य में लगे रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी पिंगला अत्यंत सौंदर्यवती थी, जिन पर राजा का अत्यंत अनुराग और भरोसा था, किंतु उन्हें उनके पास बिताने को समय कम मिलता था। ऐसे में रानी का आकर्षण अश्वशाला के हृष्ट पुष्ट प्रभारी पर हुआ, जो पदच्युत हो जाने के भय से उनकी आज्ञा का पालन करता था। राजा इन बातों से अनभिज्ञ थे। एक दिन एक तापस ऋषि ने प्रसाद स्वरूप राजा को एक तपहपूत अमर फल दिया कि ऐसा प्रजापालक राजा सदैव बना रहे। राजा ने अतिरिक्त प्रेमवश वो अमर फल अपनी रानी को खाने हेतु दिया और रानी ने चुपके से अपने प्रेमी अश्वशाला प्रभारी को। उक्त अश्वशाला प्रभारी का प्रेम संबंध एक वेश्या से था, जिस वेश्या को एक ऐसे सेठ ने आश्रय दिया हुआ था जिसका मन अपने परिवार जन से उजाट हो गया था। वेश्या ने वो फल उक्त सेठ को कृतज्ञता पूर्वक दिया। सेठ ने उसे अपने धर्मनिष्ठ प्रजावत्सल राजा को देना श्रेष्ठ कर समझा। राजा ने फल देखते ही पहचान लिया। गहरी पूछताछ के पश्चात जब उसे वास्तविकता का पता चला तो पत्नी से ही नहीं, राजपाट और सारे सांसारिक संबंध और कर्तव्य से ही वो विरक्त हो उठा और उसके मुंह से सहसा निकला, जिन्हें मैं सदैव चाहता था वो रानी मुझसे अनुरक्त न हो, अन्य से अनुरक्त आसक्त थी।

0: अन्य भी किसी अन्य से प्रेम आसक्त था और जिस औरत से वो आसक्त था वो भी किसी अन्य से आसक्त थी। इस तरह जिस काम वासना के वशीभूत अन्य अन्य को संतुष्ट करने की क्रिया में लोग जुटे हुए हैं, उस कारण काम को मैं क्यों न समझ सका। अतः उन सभी को धिक्कार, वासना को भी धिक्कार, और सबसे अधिक धिक्कार मुझे कि ये तथ्य इतनी देरी से मैं समझ सका।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इसमें आपने सुना सांसारिक कर्तव्य। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आज आप सुनिए वार्ता ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आपके खेत में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों को मारते हैं, नाश करते हैं। उनमें से एक ट्राइकोडर्मा भी है। ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी आप खेतों में जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा स्वतंत्र रूप से जमीन यानी कि मिट्टी में एवं सड़ती लकड़ी पर पाए जाने वाला एक फफूंद है। इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। इससे निकलने वाले रस से सड़ने वाले एवं जमीन में रहने वाले फफूंद के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले फफूंद को नष्ट करने में काम आ सकता है। यानी कि ट्राइकोडर्मा द्वारा जो अन्य फफूंद हैं जो कि रोग पैदा करते हैं, उन रोगों के नियंत्रण हो सकता है। फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा, एस्क्लेरोसियम जो मिट्टी जनित फफूंद हैं, उनको ट्राइकोडर्मा नष्ट करता है और पौधे को सुरक्षित रखता है। कुछ रोग जो कि फफूंद के द्वारा फैलते हैं, जैसे फसल और सब्जियों में मृदुगलन रोग, डैम्पिंग ऑफ, जिसमें कि पौधा जो है उगने के साथ ही मुरझाने लगता है और उसका जो धड़ भाग सड़ जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। सब्जियों में जड़ गलन एवं कॉलर सड़न रोग जो कि फ्यूजेरियम मैक्रोफोमिना से होता है। चना एवं मसूर में जड़ सड़न एवं उकठा रोग जो होता है वो भी फफूंद के द्वारा ही होता है। और इन सब रोगों के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग कर सकते हैं इन रोगों की रोकथाम के लिए। ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा पौधों में वृद्धि सहायक होता है। इसके उपयोग के कारण फास्फेट एवं सूक्ष्म तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जड़ अधिक नीचे तक जाने के कारण पौधों में सूखा सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कीटनाशी का अपघटन भी ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से होता है। ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एवं कार्बामेट कीटनाशी का मिट्टी में अपघटन ज़्यादा होता है। अब आप जान लीजिए कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसके द्वारा बीज उपचार भी किया जा सकता है। यानी कि बीज जनित जो फफूंद होते हैं उनके द्वारा जो नुकसान होता है उससे बचाव हेतु, उस नुकसान से बचाव हेतु ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन जो है यानी कि पाउडर जो है उसे 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। नर्सरी का भी आप उपचार कर सकते हैं। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी के घोल में आप प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र नर्सरी को उपचारित कर बीज की बुआई कर सकते हैं। मिट्टी उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम भींगे हुए गोबर खाद में मिलाकर छाया में फर्श पर फैलाकर पॉलीथीन से ढक दें। 3-4 दिन बाद इसे उलट पुलट कर पुनः पॉलीथीन से ढक दें। 7 दिन बाद गोबर खाद मिश्रित ट्राइकोडर्मा को खेत में मिला दें। ट्राइकोडर्मा के 1% घोल को जुताई के कुछ समय पूर्व छिड़काव कर भूमि जनित जड़ गलन, धड़ गलन एवं उकठा रोगों से भी बचाया जा सकता है। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है, लेकिन जो हानिकारक फफूंद आपके खेतों में पाए जाते हैं, आपके फसलों को नुकसान करते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप गमला में भी कर सकते हैं, क्योंकि गमला में जब भी आप पौधे लगाते हैं या शोभाकारी पौधे लगाते हैं, कैक्टस लगाते हैं, तो एक समस्या उसमें बहुत देखने को मिलती है

0: कि आपका पौधा जो है जड़ के पास से, यानी कि जैसे अंकुरित हुआ या जैसे वो उसका धड़ भाग है वो लसलसा हो जाता है, वो गल जाता है, फिर पौधा आपका सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो इस तरह से इस रोग को भी नियंत्रित करने के लिए यदि आप गमले में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से ये जो बीमारी है वो नहीं लगेगी। ट्राइकोडर्मा बाजार में आपको पाउडर के रूप में मिलता है, उसका या आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये फफूंद है, इसका जो जैविक भाग है वो बाजार में आपको पैकेट में मिलता है, उसका आप लेकर के गमले में भी प्रयोग कर सकते हैं, खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, नर्सरी उपचार कर सकते हैं, मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से जड़ गलन, धड़ गलन, उकठा रोग और मृदु गलन रोग जो है वो सारे रोग जो है इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आपने सुना वार्ता ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजे आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजे को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

देवताओं के अवतार में एक अवतार है राम अवतार। राम अवतार अपने आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। राम अवतार से जुड़े समस्त चरित्र एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए आदर्श बन सकता है।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है रविंद्र साठे का।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर था रविंद्र साठे का। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। इसके अंतर्गत आप सुनिए भेंट वार्ता, गंभीर बीमारियों में होम्योपैथिक कितना कारगर है। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर चंदन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं हरेंद्र आजाद और हमारे साथ आज विशेषज्ञ डॉक्टर डॉक्टर चंदन हैं स्टूडियो में। और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथी कितना कारगर है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: सर। जैसा कि मैंने बताया हमारे श्रोताओं के लिए, आज का हमारा विषय है होम्योपैथी कितना कारगर है, सामान्य बीमारी हो चाहे गंभीर बीमारी हो। तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन कौन से इस तरह की डिजीज हैं जिनको हम गंभीर कैटेगरी में रखते हैं और कौन है जो सामान्य है और उनके लिए कितना ये कारगर उपचार है।
2: सर, सबसे पहले समझ ले गंभीर कहते किसको है। सर, एक टर्मिनोलॉजी होती है जनरल डिजीज
1: जी
2: और क्रॉनिक डिजीज। तो एक आम भाषा में समझ ले कोई भी बीमारी जो साल से, एक साल से ऊपर रह जाता हो उसे क्रॉनिक कहते हैं
1: जी,
2: और उसके से कम जो रहता है वो जनरल डिजीज है
1: जी।
2: दूसरी चीज, कोई भी पैथी क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथी से बेटर हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सर, अभी आज सुबह की मैं घटना बता रहा हूँ, गोइटर का केस। फाइंडिंग में थायराइड बढ़ा हुआ है, एलोपैथिक सिस्टम ने उसे थायराइड अप्लाई कर दिया
1: जी,
2: पेशेंट का, वो नहीं रिलीफ हुआ। सर, वो गोइटर का इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ थायराइड इलाज हो रहा है
1: जी।
2: हमारे पास एकदम सेपरेटली उसके लिए डायग्नोज करके एकदम गोइटर का ट्रीटमेंट होता है। जैसे ही गोइटर ठीक होगा थायराइड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि डिजीज नहीं है, वो सिम्टम था।
1: सर, आपने थायराइड की बात किया तो थायराइड के बारे में हम बता दें कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें थायराइड से पीड़ित हैं, क्या इसमें ये दवा कारगर है और ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है?
2: बिल्कुल, ये पूर्ण रूपेण ठीक होती है बशर्ते प्रारंभ से ही इसका होम्योपैथ से इलाज किया जाए। क्योंकि एलोपैथिक पद्धति में आने के बाद जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो एक्सटर्नल सपोर्ट है, तो जब बाहर से कुछ सपोर्ट मिलता है तो बॉडी खुद की चीजों को बनाना छोड़ देती है और वेस्टाइल हो जाती है, और वेस्टाइल होने के बाद इसका उपाय मुश्किल है। लेकिन अगर प्रारंभ में आते हैं तो ये एकदम निसंदेह है, ये ठीक होता है।
1: क्या बात है। तो ऐसे ही कुछ क्रोनिक डिजीज हैं, जैसे सर कैंसर की बात करते हैं, आजकल हम लोग बीपी की जो समस्या देखते हैं और कई लोग बताते हैं डायबिटीज हो जाता है, तो इस तरह की बीमारियों में एक बार दवा शुरू हुआ तो मरते दम तक दवा खाते रहिए, तो क्या आपके यहाँ इसके लिए क्या उपचार है?
2: यहाँ उस चीज की वही बाध्यता है कि अगर पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेज से आते हैं तो उपाय है, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम के अंदर में इलाज नहीं किया जा रहा है, वहां पेलिएशन मेथड चल रहा है। जिस चीज की कमी है बाहर से पूरा कर दो, अगर कोई चीज बाहर से पूरा हो जाएगा तो शरीर उस चीज को बनाना छोड़ देगा, बट इनिशियली जब आप आते हैं हमारे पास ये 100% क्यूरेबल है, रिवर्सेबल है।
1: सर, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य रोग हैं जैसे सर्दी बुखार जुखाम जो होता है आए दिन, जो लोग हम में से हर कोई पीड़ित हो जाता है, तो इनमें ये कितना कारगर होता है, त्वरित लाभ मिलता है क्या?
2: ये त्वरित लाभ के लिए सबसे अच्छी पैथी है, एक सामान्य किसी भी चिकित्सक के पास चले जाएं, कोई भी फ्लू के लिए या कोल्ड हो कफ हो 3 to 5 days लग जाता है, यहाँ भी उतना ही लगता है। इसी बुखार के बीच में मैं कुछ 2-3 बीमारियां बता दूं। डेंगू
1: जी,
2: जिसके यहाँ आपका पटना शहर इसे हमेशा पीड़ित रहता है,
1: निश्चित रूप से
2: जो बहुत आराम से ठीक होता है। तो इस सारी चीजें की यहाँ सुविधा है, लेकिन आप किस समय आते हैं, यहाँ लोग होम्योपैथ को मेजिकल बना

0: हैं, सारा सिस्टम पे पहले एलोपैथ सिस्टम में ट्राई कर लिया, आयुर्वेद से ट्राई कर लिया, जब हार बैठते हैं तब होम्योपैथ में आते हैं कि शायद कोई मैजिक होगा।
1: मतलब यहाँ आपकी बातों से एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि कोई भी बीमारी हो तो अगर इनिशियल स्टेज में हम पहुँचते हैं तो यहाँ उपचार बड़ा आसान
0: बड़ा
1: है।
0: बड़ा आसान है।
1: सर, अभी का जो समय चल रहा है, गर्मी शुरू हो गई है और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, कई तरह के रोग हो जाते हैं, लू लग जाना होता है या लोगों का पेट खराब होता है, लू मोशन जो शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी के उपचार क्या?
0: उपचार तो एकदम है, लू लग जाए उसके बाद उपचार तो संभव है ही है, लेकिन हमारे पास प्रिवेंशन का भी ऑप्शन है।
1: जी
0: एक दवा मैं बता रहा हूँ, ग्लोनाइन 30 पोटेंसी में आप दिन में एक खुराक ले लें और ढेर सारा पानी पिए, लू नहीं लगेगी। और अगर इसके बाद लू लग भी जाती है तो उसको ठीक करना बहुत आसान होगा। जो स्थिति बिगड़ती है लू लगने का, वो स्थिति आएगी ही नहीं।
1: मतलब आपके पैथी में गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी उपचार है और सामान्य बीमारियों का भी उपचार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कई लोगों का ये मानना होता है कि आप लोग जांच वगैरह नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं, कुछ ऐसा भी है क्या?
0: नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन जहां रिक्वायर्ड है वहां होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आपके पेट में दर्द है
1: जी,
0: तो मुझे कैसे पता लगेगा
1: कि ये
0: कि
1: दर्द कहाँ है?
0: कहाँ है? आप लोकेशन से बताइए कि नीचे दर्द हो रहा है तो हम किडनी इमेजिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रेडिएटिंग पेन पूरे पेट में हो रहा है तो बताना बड़ा मुश्किल है, तो
1: जी
0: उसके लिए अल्ट्रासाउंड कंपलसरी है।
1: जी
0: हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं और किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी।
1: क्या बात है श्रोताओं। तो ये थी कुछ जानकारी सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथी कितना कारगर है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर चंदन जी। डॉक्टर चंदन, आप अपना बहुमूल्य समय दिए आकाशवाणी में हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोताओं के लिए आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचना में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, सामान्य और गंभीर बीमारियों में होम्योपैथिक कितना कारगर है। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर चंदन कुमार और इनसे इस विषय पर बात कर रहे थे हरेंद्र आजाद। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल। पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे 7:15 पर और 7:25 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर। रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 10 बजे। बाल किलकारी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:15 पर, और 10:30 पर बाल कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे।

दोपहर 12 बजे सुनिए बिहार का लोक संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे रूपक और संवेद का अनशिक्षा कार्यक्रम। आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर और 2:30 पर पुनः आप सुनेंगे फिल्म संगीत। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 4:30 पर और शाम 5:30 पर मैथिली कार्यक्रम भारती का प्रसारण होगा।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर।

0: अध्यक्षस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्र रक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्कैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरते युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा

0: अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन में। तो सबसे पहले बात करते हैं देश दुनिया के इतिहास में 10 मई यानी आज का दिन क्या खास है। जी हाँ, यह दिन खास है क्योंकि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के अंत का गवाह बना आज का ही दिन। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह जो है वो आज के ही दिन से शुरू हुआ। सैनिकों ने दिल्ली कूच किया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। में संतोष यादव का विश्व रिकॉर्ड बना। जी हां, हरियाणा के पर्वतारोही संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। और हम आपको बता दें आज के दिन क्या खास है। जी हां, 1526 में पानीपत की लड़ाई भी आज के दिन से ही शुरू हुई। क्रिकेट का इतिहास कहें तो 1981 में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया था। और आज के ही दिन 2005 में भारत पाक संबंध यानी भारत और पाकिस्तान के बीच अमृतसर लाहौर बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी थी। और आज किनका जन्मदिन है। जी हां, 1986 में आज के दिन भारतीय शतरंज खिलाड़ी पेंडाला हरिकृष्णा का जन्म हुआ। और 2022 में प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन आज के दिन। तो श्रोताओं, जानकारी अभी ढेर सारी है, बातें भी अभी ढेर सारी है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज मदर्स डे है। जी हां, माताओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को सम्मानित करने वाला ये विशेष दिन है जो प्रतिवर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन माँ के प्रति आभार प्रकट करने और उनके योगदान को मान्यता देने का अवसर है। वैसे तो कहें तो हर दिन माँ का है। जी हाँ, माँ के बिना कोई भी दिन नहीं। और भी बातें हैं पर सुनते हैं इस गाने के बाद।

जी हाँ श्रोता, माँ दुनिया में निस्वार्थ प्रेम, ममता और त्याग की मूरत होती है। वे न केवल बच्चों को जन्म देती है बल्कि पालन पोषण, संस्कार और एक गुरु बनकर उनका जीवन संवारती है। जी हाँ, माँ ईश्वर का रूप और सबसे बड़ा उपहार मानी जाती है।

वैसे तो कहें माँ का कोई एक खास दिन नहीं, हर दिन माँ का होता है और माँ से हर दिन है। दुनिया में एक माँ ही है जो निःशर्त प्रेम, जी हाँ माँ का ही होता है। वे अपने बच्चे के मन, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को गढ़ती है। करुणामयी, साहसी और परिवार की देखभाल करने वाली होती है। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है और उसकी उसका पहला विद्यालय, बच्चा का पहला विद्यालय उसका घर। माँ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तो श्रोताओं शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए उनका सम्मान और उनकी देखभाल हर दिन हर समय करनी चाहिए। ये अनमोल तोहफा है हमारे जीवन का। माँ पे बातें तो बहुत है श्रोताओं, पर समय कम है। इसी के साथ सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए पॉप म्यूजिक।

अभी आप सुन रहे थे पॉप म्यूजिक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन, राग है शुक्ल विलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन, राग था शुक्ल विलावल। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
3: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ

0: जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
1: टीडीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और

0: ईआरएम श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को डीआरडीओ ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक

0: once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes four labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And nine Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के कयाम के 45 साल पूरे होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशाअत के साथ मेहनत से मुतालिक चार जाब्तों को नाफिज कर दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के तवील दौरानिए के तजुर्बे के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और नौ भारतीय मुक्केबाज ताशकंद में 15 साल और 17 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वजीर आजम बेंगलुरु में तकरीबन 11 बजे दिन में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के कयाम के 45वें साल के तकरीबात में शिरकत करेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नए तामीरशुदा ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और इहाते में नए तामीर करदा ध्यान मंदिर या मेडिटेशन हॉल का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी दिमागी सेहतमंदी, देही तरक्यात, फितरत के तहफ़ और समाजी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मजकूरा फाउंडेशन के साल भर तक जारी रहने वाले प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर जाने से कबल वजीर आजम HAL हवाई अड्डे पर BJP के रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करेंगे। बंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना होंगे, जहां वो दोपहर तकरीबन 3 बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु वेत्री कशगम TVK के बानी सी जोसेफ विजय आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात आज सुबह 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगी। रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर जनाब विजय को ओहदे का हलफ दिलाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक उनके साथ 9 वजीर भी हलफ लेंगे। चेन्नई में इस तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीबात में कसीर तादाद में लोगों के आने की तवक्को है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: चेन्नई सुपर किंग्स का शहर आज 51 साल जोसेफ विजय के लिए बिगुल बजाएगा, जो इस तकरीब की मरकजी शख्सियत होंगे। आज रियासत की राजधानी हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ नए वजीर आला का खैर मकदम कर रहा है। 34% से ज्यादा मैंडेट हासिल करने वाले नीज कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब वजीर आला बनने जा रहे हैं। उनके वालिद SA चंद्रशेखर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें सियासी मुकालमे भी शामिल थे। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली TVK ने कांग्रेस, VCK बाएं बाजू की पार्टियों और IUML की हिमायत से अक्सरियत हासिल की है। حکومت

0: है। 13 मई को जनाब रंगास्वामी वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। गुज़िश्ता 9 अप्रैल को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुए इंतखाब में AINRC की क़यादत वाले NDA की आसान जीत हासिल करने के बाद जनाब रंगास्वामी 5वीं मुद्दत कार के लिए वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया गया था। आसाम BJP कानून साज पार्टी आज गुवाहाटी में अपने रहनुमा का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेगी। BJP के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज सुबह 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मीटिंग करेंगे। इस दौरान आसाम में NDA सरकार की मुसलसल तीसरी मुद्दत कार के लिए हलफ बर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: BJP कानून साज पार्टी की मीटिंग BJP के मरकजी मुशाहिदीन जगन प्रकाश नड्डा और उनके साथी मुशाहिद नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। मीटिंग के बाद NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग भी इसी मकाम पर होगी। इसके बाद NDA कानून साज पार्टी हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगी। इस दौरान 12 मई को मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के लिए खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में तेजी से तैयारियां जारी हैं। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला इंतजामिया ने इस दिन के लिए शहर में ट्रैफिक के जाब्ते भी जारी कर दिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने की तवक्को है। इसके अलावा BJP के इकतदार वाली मुख्तलिफ रियासतों के कई वजराए आला और मरकजी वजरा को भी इस अहम तकरीब में मदऊ किया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: कांग्रेस पार्टी की आला क्यादत ने कल नई दिल्ली में केरला में हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग की। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर बुलाई गई थी, जिसमें सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और केरला के सीनियर रहनुमा रमेश चैनीथाला और VD सतीसन ने शिरकत की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी केरला के नए वजीर आला के बारे में हतमी फैसला करेंगे और बहुत जल्द नाम का ऐलान किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने तमाम मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSEs में काम करने वाले आउटसोर्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तहफ़ को नुमाया तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम किए हैं। लेबर कोड्स की तामील को सरकारी खरीदारी और बोली लगाने की अहलियत से बराह रास्त मुंसलिक कर दिया गया है, ताकि उजरतों की अदायगी में ताखीर और कानूनी वाजिबात की अदम अदायगी जैसे मसाइल को रोका जा सके। इन हिदायत में इस बात का इरादा किया गया है कि पेशे से मुतालिक तहफ़ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के सेक्शन 55(3) के तहत ये प्रिंसिपल आजिर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ठेकेदार बर वक्त उजरत अदा करे। इन हिदायत में कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 17(1) का भी हवाला दिया गया है, जो उजरतों की अदायगी के लिए वक्त की हद मुकर्रर करता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नया फ्रेमवर्क 4 लेबर कोड्स के तहत मजदूरों के तहफ्फुज़ के तसव्वुर को अमली शक्ल देता है और साथ ही उजरत की बर वक्त अदायगी और सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात जमा कराने में नाकाम रहने वाली फर्मों के लिए सख्त सजाएं बशमूल ब्लैक लिस्टिंग और काम से रोकने जैसी दफात मुतारफ करवाता है। जुमे को जारी करदा नई हिदायत के तहत तमाम वजारतों, महकमों, आईनी और खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सख्ती से इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेकेदार मुकर्रा वक्त के अंदर उजरतें तकसीम करें। हिदायत के मुताबिक रोजाना की उजरत शिफ्ट के अख्तिताम तक हफ्तावार उजरत, हफ्तावार छुट्टी से पहले 15 रोजा उजरत, 15 दिन खत्म होने के 2 दिन के अंदर और माहाना उजरत अगले महीने की 7 तारीख तक अदा की जानी चाहिए। हुकूमत ने मजीद हिदायत दी है कि उजरतों की अदायगी सिर्फ बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाए और ठेकेदारों के लिए ये लाजमी है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے حیدرآباد میں اپنے ایکٹیولی کولڈ فل اسکیل اسکریمجٹ کمبسٹر کا طویل دورانیے کا ایک جامع ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے. وزارت دفاع نے بتایا کہ اس تجربے کے دوران 1200 سیکنڈ سے زائد کا رن ٹائم حاصل کیا گیا جو رواں سال جنوری میں کیے گئے 700 سیکنڈ کے پچھلے ٹیسٹ

0: से कहीं ज्यादा है। ये कामयाब तजुर्बा भारत को जदीद एरो स्पेस सलाहियतों और मुसलसल उभरती हुई जंगी टेक्नोलॉजीज में सफे अव्वल में खड़ा कर देता है। वजारत ने मजीद बताया कि ये कम्बस्टर DRDO की लेबोरेटरी DRDL ने सनती शराकत दारों के तआवुन से तैयार किया है। इस कम्बस्टर में मकामी तौर पर तैयार करदा माय हाइड्रो कार्बन ईंधन, जदीद थर्मल बैरियर कोटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। मुकद्दस सोमनाथ मंदिर रूहानियत और पायदार सियाहत के आलमी मरकज के तौर पर अपने जदीद सफर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते उनकी क्यादत में मंदिर अपने सुनहरे दौर में दाखिल हो गया है। अपनी मजहबी अहमियत से हटकर सोमनाथ माहौलियाती तहफ्फुज में एक अलमबरदार के तौर पर उभर रहा है, जिसका मकसद कार्बन के सिफर अखराज वाला भारत का पहला मंदिर बनना है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत मंदिर फूलों के फजले को खाद में और प्लास्टिक के फजले को पेवर ब्लॉक्स में तब्दील करके पायदारी में मेयारात कायम कर रहा है। इसके अलावा जदीद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम और मियावाकी जंगलात के साथ मंदिर का ट्रस्ट तेजी से कार्बन के सिफर अखराज की तरफ बढ़ रहा है। इस डिजिटल पहल से अब दुनिया भर के अकीदतमंद न सिर्फ घर बैठे पूजा बुक कर सकते हैं बल्कि मंदिर का प्रसाद भी हासिल कर सकते हैं। ये कदीम रिवायात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। आज वंदे भारत और बैन अक्वामी हवाई अड्डों समेत आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी से लैस इस मुकद्दस मंदिर में हर साल 97 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पूजा अर्चना करने आते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तआवुन से गुज़श्ता रोज नई दिल्ली में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन मेट काउंसलर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। ये तकरीब प्रोजेक्ट मेट की तौसी की अलामत है, जो कि एम्स नई दिल्ली की जानिब से तैयार करदा नौमरों के फलाह बहबूद का एक प्रोग्राम है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडेड एंड टोबेगो में वाके नेल्सन आइलैंड का दौरा किया, जहां उनके हमरा वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद थी। नेल्सन आइलैंड वो मकाम है जहां ठेके पर भारतीय मजदूर पहली बार ट्रिनिडेड एंड टोबेगो पहुंचे थे। अमरीका ने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत मुलाजिम की खिदमात हासिल करने के लिए अदा की जाने वाली कम अज कम उजरत में पहले से तयशुदा हद से 30% इजाफा करने की तजवीज पेश की है। मुक्केबाजी में ताशकंद में जारी 15 साल और 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत की 15 साल से कम उम्र की लड़कियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मुक्केबाज अलग अलग जुमरों में फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मगरबी बंगाल में हुकूमत की तश्कील की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, शुभेंदु अधिकारी ने वजीर आला के अहदे का हलफ लिया, मगरबी बंगाल में पहली बार BJP की हुकूमत। इसी अखबार की एक सुर्खी है, तमिलनाडु में काफी उथल पुथल के बाद विजय की हुकूमत साजी का रास्ता साफ। वजीर आजम का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज करेंगे। इस खबर को अखबार प्रताप ने नुमायां तौर पर शाया किया है। सभी अखबारात ने लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वाइस एडमिरल स्वामीनाथन के बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मुतअद्दिद दिफाई आदाब को निशाना बनाने वाले जदीद अग्नि मिज़ाइल के कामयाब तजुर्बे से मुतल्लिक खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत दीगर अखबारों ने बड़ी खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैन अक्वामी खबरें इस तरह हैं, लबनान में इजरायली फौज के हमले जारी, मजीद 31 अफराद हलाक, मुख्तलिफ गाँव को खाली करने का हुक्म।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो हैदराबाद में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। TVK के सरबराह सी जोसफ विजय को आज सुबह तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का वजीर आला मुकर्रर किया है। मरकज ने जाब्तों की इशात के साथ मेहनत से मुतालिक 4 जाब्तों को नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: छोटा शहर लेकिन सपने ग्लोबल, अब टॉप क्लास इंजीनियरिंग शिक्षा यही बिहार में। हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे राज्य में 38 प्रमुख संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े, एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत।
2: एडमिशन आधारित है जेईई मेन 2026 या बीसीईसीई मेरिट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कहां चलती है, इधर तो आओ।
7: इधर आइए, इधर।
8: इधर?
7: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
9: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
8: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
9: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
8: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
10: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
9: शुभ वाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान। रोहतास जिले का टेलकप पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चयनित। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर सैप जवानों की होगी नियुक्ति, 1 जून से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन, साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत

उत्प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। रोहतास जिले के टेलकप पंचायत समेत देश भर की 42 पंचायतों को इस वर्ष यह पुरस्कार दिया जाएगा। टेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलेगा। इसके तहत 1,25,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित होगा। कर्नाटक से सबसे अधिक 6 पंचायतों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 5-5 पंचायत चयनित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके। गृहमंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। बाढ़ और लू संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली मजबूत करने, जन जागरूकता, समुचित राहत सामग्री की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बैठक जन केंद्रित आपदा प्रबंधन और सक्रिय उपायों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र 1 पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई निर्धारित की है। आयोग के अनुसार आपत्तियों के निपटारे से असंतुष्ट रहने पर अपील वाद दाखिल किया जा सकता है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं प्रारूप 1 का अंतिम प्रकाशन 15 जून को किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने पंचायत चुनाव में आरक्षण की सही जांच के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने श्री विजय को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रिया प्रमंडलवार तय की गई है, जिसमें पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा के लिए 1 जून, कोसी, मुंगेर और सारण के लिए 2 जून, तिरहुत के लिए 3 जून, मगध के लिए 4 जून और पटना प्रमंडल के लिए 5 और 6 जून की तिथि निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य किया गया है। राज्य में मरीजों की जांच रिपोर्ट चिकित्सकों को अब ऑनलाइन मिलेगी। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1 जून से मरीजों और उनकी जांच रिपोर्ट की एंट्री ऑनलाइन की जाएगी। श्री सिन्हा ने बताया कि इसे आभा आईडी के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR के लिए 20 रुपए दिए जाएंगे। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में अब तक 6,11,00,000 मरीजों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज नई दिल्ली में समग्र बौद्धिक विकास पर परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। CBSE ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से यह आयोजन किया है।
इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है।

0: बोर्ड के अनुसार ये परियोजना इस वर्ष जुलाई से छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रखरखाव में अनियमितता के मामलों में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।
2: दिनांक 10 मई उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। राज्य में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान राज्य भर में लंबित 20,000 से अधिक ट्रैफिक ई चालानों का निष्पादन किया गया। पटना जिले में सबसे अधिक 10,119 यातायात चालान का निपटारा किया गया। पटना के फतुहा के एक व्यक्ति को 40,000 रुपए के चालान पर 20,000 रुपए की माफी दी गई है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 148 ट्रैफिक चालान सहित 1227 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं सीतामढ़ी जिले में कुल 2854 मामले और सुपौल जिले में 1394 वादों का निष्पादन किया गया। नेपाल सरकार के आदेश के बाद अररिया जिला प्रशासन ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों को भी अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। राज्य के 208 नए डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में मान्यता दे दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने बताया कि इन महाविद्यालयों में 1 जुलाई से नए सत्र की शुरुआत होगी। राज्य में सरकारी स्कूलों में पदस्थापित महिला शिक्षकों को गृह जिले में तबादला किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले माह इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद महिला शिक्षिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। राज्य में महिला और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की जांच आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी करेंगे। गृह विभाग के अनुसार इनसे संबंधित मामले राज्य में लगभग 4,870 लंबित हैं। इनकी जांच निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के डुमरिया के रश्मि सिंह का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के निशानेबाजी टीम के लिए चयन किया गया है। रश्मि वर्तमान में आईएसएसएफ युवा वर्ग की शूटर हैं। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत पैकपार के वार्ड नंबर 10 में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ

0: एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा जिला का 46वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव और जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। एसएसबी की बीरपुर इकाई ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत गीदरमाड़ी गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई गई है। पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक के पास से पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले की विशेष पुलिस ने 4 अपराधियों को चोरी की 7 स्कूटी और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। सीटीएसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अगम कुआं, खाजे कला और मालसलामी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सहरसा जिले के महिषी और सौर बाजार के 2 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के मामले में प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अग्नि मिसाइल के परीक्षण पर लिखा है, एक वार में कई दुश्मनों को भस्म करेगी अग्नि। दैनिक जागरण लिखता है, सप्ताह में 48 घंटे काम की समय सीमा तय, केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिताओं को किया लागू। प्रभात खबर ने बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह पर लिखा है, शुभो आरंभ, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका में लगेगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, शिक्षा मंत्री का दावा, जल्द होगी TRE 4 परीक्षा। आज अखबार की सुर्खी है, हार के बाद बदला ममता का अंदाज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान। रोहतास जिले का टेलकप पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए चयनित। बिहार पुलिस में 15,821 पदों पर सैप जवानों की होगी नियुक्ति, 1 जून से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
8: हमारा मोबाइल नंबर है
6: 9431

0: 1021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
0: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
0: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनिए उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: शेर नगमा के तहत अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये बेहद खूबसूरत कलाम। आइए सुनते हैं सेहतनामा। अच्छी सेहत मियारी गिज़ा।
1: सामही नादाब, आज के सेहतनामा में आपका खैर मकदम है। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए मौजू के साथ। आज का हमारा मौजू है अच्छी सेहत मियारी गिज़ा। आज हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे डाइटिशियन सैयद मुमताज करीम के साथ, जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद मुमताज करीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है।
2: हाँ, शुक्रिया, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान तीन मरहले से गुजरता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो हमें उसी हिसाब से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है, उस पर खास तवज्जो देनी होती है। तो मुमताज करीम साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमें इन तीनों मरहले में खास तवज्जो देनी चाहिए अपनी सेहत पर, खास करके बचपन में।
2: देखिए, सबसे पहले सेहत हम सभी के लिए अजीम दौलत है, और अच्छी सेहत के लिए आपको चुस्त दुरुस्त रहें, आप बीमार ना पड़ें, और अच्छी सोच, अच्छी ग़ज़ा और वर्जिश के साथ साथ आपको अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। सही वक्त पे खाना, सोना, उठना और अपने वर्क को वक्त पे करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी सेहत पा सकते हैं। आपने बताया कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहें,
1: हाँ, उनकी सेहत अच्छी
2: उनकी
1: रहे,
2: सेहत
1: सेहतमंद
2: अच्छी
1: रहे।
2: हो।
1: हाँ।
2: बच्चों से पहले जब एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है और 9 महीने तक एक बच्चे को अपने पेट में रखती है,
1: जी
2: उस 9 महीने में जो माँ गजा लेती है, उस गजा का असर बच्चे की पैदाइश में होती है। क्योंकि अगर माँ उस पीरियड में सही वक्त पे गजा ली और सही गजा ली और सही मकदार में ली, तो बच्चा जो पैदा होता है वो एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है, यानी वो अंडर वेट नहीं होता है और वो फुल ट्रम पे। जो माँ ऐसी नहीं करती हैं, उनका बच्चा जो पैदा होता है, एक तो वक्त से पहले भी हो सकता है और जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं होता है। तो इस पीरियड में खास करके औरतों को
1: हाँ,
2: ध्यान देना
1: किस
2: पड़ेगा।
1: टाइप का गजल लेना चाहिए जैसे बताइए।
2: जैसे वो प्रेगनेंसी पीरियड में हैं,
1: हाँ
2: तो सबसे पहला उन्हें अपने वक्त पे खाना, जो
1: ठीक
2: भी
1: है।
2: वो खाती हैं वो वक्त पे लें, और खाना खाने के साथ साथ वो आराम भी करें, और खाने में जिसमें प्रोटीन की मकदार ज्यादा है वैसे खानों को बोले। वेजिटेरियन है तो पनीर,
1: हाँ
2: दालें, राजमा, सोयाबीन की सब्जी, इस तरह। अगर वो नॉन वेज हैं

0: तो वो अंडा भी ले सकती हैं,
1: हाँ,
0: चिकन, मटन, इस तरह की गजा को वो अपने गजा में ज्यादा शामिल करें।
1: कभी कभी ये देखा जाता है कि हमल के दौरान जो है किसी किसी खातून में एक महक जो होती है ना, खाने पीने की सारी चीजों से उनका लगाव खत्म हो जाता है, खाना नहीं चाहती, ऐसी हालत में क्या करें?
0: देखिए, तो सभी महिलाओं में ऐसे ऐसा नहीं होता है, रेयर केस में 100 में 2% 3% ऐसी महिलाओं में इस तरीके का होता है। फिर भी अगर होता है तो इसमें कुछ करना नहीं है, वो अपने खाने को वो कंटिन्यू करे। अब वो महक की वजह से खाना नहीं खा रही हैं तो इसका असर तो बच्चे में आएगा, बच्चा जो बॉर्न होगा उसका वेट कम होगा।
1: मतलब इसका कोई मुतबादिल नहीं है।
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब स्कूलिंग शुरू होती है उनकी, तो स्कूलिंग के दौरान जो उनका ये लापरवाही होती है खाने पीने की, क्योंकि बच्चों को तो माँ बाप टिफिन दे देते हैं और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, लेकिन टिफिन बहुत बच्चे नहीं खाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि रास्ते में जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो रास्ते में खाते हैं, ऐसे में तो वो स्किप कर जाते हैं अपना नाश्ता, तो फिर वो कैसे मेंटेन होगा?
0: देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो माँ का रोल है।
1: जी
0: अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप जब बच्चे को 3 इयर्स 4 इयर्स में केजी केजी वन केजी टू आपने स्कूल भेज दिया, स्कूल भेजना तो आपने शुरू कर दिया, मगर आप जितना ज्यादा बच्चे को पढ़ने पर जोर दे रहे हैं उतना बच्चे के खाने पे आप जोर नहीं दे रहे हैं, तो आप वक्त पे खाना नहीं दे रही हैं। जैसे आप स्कूल भेजना स्टार्ट किया उस डे वन से ही फिर आप उसके खाने पे ध्यान दीजिए, वक्त बनाइए और वक्त पे उसको हर चीज दीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि माँ जो रहती है, माँ को इतना ज्यादा बच्चे से प्यार हो जाता है तो बच्चे जो बोलते हैं माँ पूरा कर देती हैं।
1: तो आप मुझे ये बताइए कि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ देनी चाहिए खाने में? बच्चे जल्दी खाना भी नहीं चाहते उस वक्त, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ देनी चाहिए उनको उस वक्त जब वो जाते हैं, खिलाकर भेजना चाहिए? और टिफिन में क्या देना चाहिए जिससे उनको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल सकें, प्रोटीन है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें मिल सकें?
0: बच्चे मॉर्निंग में स्कूल अगर जा रहे हैं तो मॉर्निंग में अगर स्कूल आपको भेजना है तो रात में माँ प्रिपेयर करें कि मॉर्निंग में हमें क्या देना है, तब तो वो सत्तू की रोटी वो दे सकती हैं, दाल की रोटी वो दे सकती हैं, आलू की पराठा वो दे सकते हैं।
1: टिफिन में?
0: नहीं, टिफिन में नहीं, मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट में वो दे सकते हैं। आप जैसे सत्तू की सबको देना है, सत्तू का रोटी देना है या पराठा देना है, आप रात में उसको प्रिपेयर कर लीजिए, यानी सारा चीज आप तैयार कर लीजिए और मॉर्निंग में उसको बना लीजिए, उसके दही के साथ आप उसको दे दीजिए।
1: मुमताज साहब, सारे बच्चे तो खाना नहीं चाहते हैं ये
0: नहीं,
1: सब।
0: ऐसा नहीं, खाना नहीं चाहते हैं, हम खाना खिलाना नहीं चाहते हैं। हमने क्या बोला कि आपको चेंज करना पड़ा, जिस तरह जितने वक्त पे आप बच्चे को स्कूल भेज रही हैं वक्त पे, उसी तरह वक्त पे आप उसको खाना खिलाइए। और यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के लिए हम स्पेशल खाना बनाते हैं, बच्चे को हम पेरेंट जब खाना खाते हैं वो अपने साथ लेकर के नहीं बैठते हैं, वो बच्चे को पहले खिला देते हैं, फ्री हो जाते हैं तो फिर माँ बाप अपने इंडिविजुअल। एक बच्चा अगर माँ बाप को देखे मेरे माँ बाप ये खा रहे हैं तो बच्चे को ललक होगा।
1: अच्छा,
0: जब आप पेरेंट्स जब खाना के लिए बैठते हैं खाना खाते हैं तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ खिलाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को खिलाएं। ये हैबिट जब तक नहीं बनेगा बच्चे में चेंजिंग नहीं आएगा।
1: टिफिन में क्या देना चाहिए उन्हें?
0: हाँ, टिफिन में सबसे बेटर फ्रूट्स दीजिए, मखाना आप दे सकती हैं,
1: अच्छा,
0: मखाना आपने दे दिया, एक फ्रूट्स दे दिया, एक फल दे दीजिए।
1: यही बच्चे जब बड़े होते हैं, मतलब 15 साल से 20-22 साल की उम्र में, तो वो फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीने लगते हैं। वैसे में तो ना उन्हें वो चीजें मिल पाती हैं जो अक्सर खाने में होनी चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, सी, जो भी सारी चीजें, तो उनको कैसे मेंटेन किया जाएगा फिर?
0: देखिए, मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान देना है। अगर आप शुरू से ही जब बच्चे स्कूल में जाना आप स्टार्ट किए उस पीरियड से अगर आपने बच्चे पे गजा पे ध्यान दिया तो जब बच्चे बड़े हो गए, जब वो 12th 10th क्लास में गए तो वही हैबिट्स उनमें डेवलप रहेगा। मगर इस हैबिट्स को आप डेवलप किया नहीं और 10th क्लास 12th क्लास में वो चले गए, फिर उसको बोल रहे हैं आप खाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं कि वो बच्चे एक्सेप्ट करे। आपको बच्चे को शुरू से ही बचपन से ही खाने हर चीज खाने का हैबिट्स बनाना पड़ेगा। अभी एक सुपर फूड्स का आपने सुना होगा भाई, बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में सुपर फूड में ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, चना दाल आता है, इसको मिलेट्स बोलते हैं। इसमें विटामिन से, मिनरल्स से, फाइबर है, कैल्शियम है, प्रोटीन से, ये बहुत ही मुफीद है।
1: तो ये मिलेट्स जो है वो सारे बच्चे, आप तो सही मानों में मतलब जब बड़े हो जाते हैं वो तो खाना नहीं चाहते
0: नहीं,
1: हैं।
0: खाने का तरीका तो चेंज कर दीजिए, क्यों नहीं खाएंगे हम, उसे बनाने के तरीके को चेंज, जितने भी मैंने बताया ज्वार बाजरा रागी सभी का आप पाउडर बना लें,
1: अच्छा,
0: पाउडर के फॉर्म में बना के रख लें, और जो नॉर्मल जो रोटी आप बनाती हैं उस नॉर्मल रोटी में डेली चेंज करके दें। जैसे आपने नॉर्मल आटा आटा आपने लिया, उस आटे में एक रोटी में एक चमची वो आप रागी को डाल दीजिए और
1: अच्छा,
0: उसको मिक्स कर लीजिए और फिर उसकी रोटी बना के दीजिए। बच्चों को भी पता नहीं चला उसमें क्या है, बच्चा भी एक्सेप्ट कर लिया।
1: गुड गुड।
0: आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं तो नहीं खाते रहे।

0: ठीक है वो एक्सेप्ट नहीं खा रहे, मगर कैसे खिलाएं, किस फॉर्म में खिलाएं, उस फॉर्म में चेंज करना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे दही नहीं खाते हैं, उसको दही पसंद नहीं है, है? तो दही पसंद नहीं है तो आप माँ को एक जहन हो कि मेरा बच्चा दही नहीं खाता, ऐसा नहीं है। दही बच्चा खाएगा, आपको चेंज तो कर दीजिए। चेंज क्या करना है, आटा जो आप गूंधती हैं दही से आटा गूंध दीजिए। दाल आप दे रही हैं, दाल में 2 चमची दही डाल दीजिए, पहले थोड़ा तो लेना स्टार्ट करे। यहाँ पर क्या होता है कि लोग स्टार्टिंग से
1: जो चीजें बच्चे को पसंद नहीं आती
0: हाँ,
1: है
0: उसको
1: उसको
0: क्वांटिटी में यानी ज्यादा क्वांटिटी
1: नजरअंदाज कर
0: हाँ
1: देते हैं।
0: नजरअंदाज भी कर देते हैं, और जो बच्चे को पसंद नहीं उसको कम क्वांटिटी से कम मकदार से स्टार्ट कीजिए उसे, और फिर उसको बढ़ते रहिए, डे बाय डे उसका क्वांटिटी को बढ़ा दी।
1: अच्छा मुमताज साहब, ये आजकल के बच्चे जो हैं जिम वगैरह जो है बहुत ज्यादा करने लगे, जो पहले जिस तरह से लोग खुले आसमान में वर्जिश करते थे वो वर्जिश तो लोगों ने छोड़ ही दिया है, लड़कों ने तो आजकल सिर्फ जिम को ही अपना लिया, और उसके साथ साथ इस तरह की चीजें खाते हैं जैसे प्रोटीन के लिए हर तरह की चीजें जो आती हैं वो खाते हैं, मानना है कि उसमें स्ट्रॉयड बहुत होता है, ये तो बड़ा नुकसानदेह होता है।
0: देखिए आपने बताया प्रोटीन में जो स्ट्रॉयड होता है, उससे पहले आप देखें जो बच्चे जिम कर रहे हैं, आज जिम फैशन हो गया है, कहाँ जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। आप ये गौर कीजिएगा, जो लोग जिम जाते हैं उन्हें आप 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बोलिएगा वो नहीं चल पाएंगे, दौड़ने के लिए बोलिएगा नहीं दौड़ पाएंगे। वो तो अपना बॉडी को तो बना लेते हैं, मगर वो बॉडी जो बनता है वो कमजोर बॉडी बनता है। क्यों? क्योंकि जहां वो जिम कर रहे हैं वहां उन्हें ताजी हवा नहीं मिल रही है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े और ऑक्सीजन ले, ना ऑक्सीजन मिला ना ताजी हवा मिल रहा है। और साथ साथ जो मैंने बोला आप बताया कि वो 2 से 3 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, चलेंगे तो वो हफने लगेंगे। रीजन ये है कि उन्हें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। आप ओपन जिम में जाइए, वहां बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहता है, पेड़ पौधा लगा रहा है तो उससे आप फ्रेश हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, धूप निकल गया तो उससे आपको विटामिन डी मिल रहा है। ऐसी विटामिन डी के नहीं मिलने से आजकल के यंग एज के लड़कों को पैरों में दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, ज्यादा देर वो खड़ा नहीं हो पाते हैं।
1: और ये आजकल का जो फैशन बन गया है कि ऐसी चीजें खाएं जिसमें प्रोटीन है तो उसमें स्ट्रॉइड भी बहुत है, तो इसका जो मनफी असर है वो उन्हें नजर ही नहीं आता है।
0: देखिए प्रोटीन का भी एक क्वांटिटी लिमिटेशन है, बॉडी के हिसाब से एज के हिसाब से प्रोटीन का एक रिक्वायरमेंट है। जैसे छोटे बच्चे 6 मंथ से लेकर के 10 इयर्स, इस एज में क्या होता है, बच्ची का ग्रोइंग स्टेज है, बहुत तेजी से वो बढ़ते हैं, उनका हाइट भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है, यहाँ पर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जैसे वो 20 इयर्स या 22 इयर्स वो क्रॉस कर जाते हैं तो वहां पर एक सडन वेट हो जाता है, जैसे वो 20 इयर्स या 20 इयर्स प्लस में हो गए तो उन कंप्लीट एक हाइट हो जाता है, वेट हो जाता है, फिर वो वेट और हाइट्स वो आगे नहीं बढ़ते हैं।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका वेट क्या है और हाइट क्या है,
1: उस हिसाब से आपको
0: उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेना है। वहां पर एक BMI हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स,
1: जी
0: बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से उनका कैलोरी मेजरमेंट करते हैं, कितना कैलोरी उन्हें लेना है, और उस कैलोरी की मेजरमेंट के हिसाब से फिर प्रोटीन डिक्लेयर करते हैं, कितना प्रोटीन उनको डेली लेना है। अगर फॉर द एग्जाम्पल अगर 20 इयर्स यंग मैन है और वो उसे 60 किलोग्राम के हैं, 60 kg के हैं, और उन्हें डेली जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी का है वो 1800 से 2200 कैलोरी का रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहां पर हो रहा है कि आप उनके वर्क के ऊपर डिपेंड हो जाता है, सेडिमेंटरी वो वर्कर हैं या मॉडरेट हैं या हेवी वर्कर हैं, है? कभी यंग पीपल जो हैं वो बहुत हेवी वर्क करते हैं या सेडिमेंटरी वर्कर पढ़ने लिखने वाले हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग
1: उनको प्रोटीन लेनी होती है,
0: प्रोटीन भी लेना है और गजा भी लेना है, कैलोरी भी लेना है।
1: जी उमता साहब, अक्सर मैंने देखा है कि फीमेल जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती हैं, उन्हें वो ज्यादा एनेमिक होती हैं, और खास करके मेंसुरेशन का जो टाइम होता है वो उनका वर्कलोड वैसा ही रहता है, लेकिन उनकी जब वीकनेस हो जाती है तो ना तो वो आराम ले पाती हैं और ना उन्हें सही गजा मिल पाती है, ऐसी कौन सी गजा लेनी चाहिए जो उन्हें हर तरह से मजबूत रखे?
0: देखिए आपने बताया कि वो एनीमिक हो जाती हैं, तो पहले तो आपको जानना होगा वो एनीमिक हुई क्यों। सडनली कोई एनीमिक नहीं होता है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक नॉर्मल लेडी में 12 से 15 या 12 से 16 होना चाहिए। अगर वो 7 ग्राम है तो मींस एनीमिक हो रही है, एनीमिक है 7 ग्राम है। अगर 7 ग्राम प्लस है, 8 ग्राम प्लस में है, तो वो एनीमिक नहीं है, वो गजा के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैसी महिलाओं को अपना हीमोग्लोबिन चेक करना होगा और देखना होगा कि उनका हीमोग्लोबिन का जो रेशियो है वो कितना है। अगर 8 ग्राम से ज्यादा है, 9 ग्राम से ज्यादा है, तो वो गजा से फुलफिल हो सकता है, मगर उससे कम है तो फिर उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है। इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि वो नियरेस्ट में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उस स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जाकर के वहाँ जो लेडी डॉक्टर रहती हैं उनसे मिलें और उनके मशवरा से ही वो कुछ करें। जहाँ तक आपने बताया कि इनकी

0: गजा में क्या लेना चाहिए, ऐसी गजा आप लें जिसमें
1: खून बने।
0: खून बने। जैसे मैंने आपको सुपर फूड्स के बारे में मैंने बताया
1: हाँ
0: आपको,
1: हाँ मिलेट्स के बारे में।
0: बहुत सारी दालें हो गई, इस तरह की चीजों को वो अपने गजा में शामिल करें। फल वो लें, ड्राई फ्रूट्स लें, नॉन वेज अगर खाती हैं तो अंडा ले सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, तो इस तरह की चीजों को अपनी गजा में वो शामिल करें।
1: जी अच्छा,
0: और
1: ये बहुत सही बात है कि खून बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब ये मेंसुरेशन का टाइम हो चाहे मेनोपॉज का टाइम हो, ये इन्हीं चीज़ों का कॉमनली उन्हें ख्याल रखना होगा। अच्छा ये डॉक्टर आप हम ये बताइए कि अक्सर हमने देखा है जो खास किस्म के पत्ते होते हैं, पत्ते जिन्हें कहते हैं कि जैसे कड़ी पत्ता है, जैसे सहजन का पत्ता है, जैसे तुलसी का पत्ता, ये पत्ता जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें कौन कौन से पत्ते को हमें खाना चाहिए?
0: पत्ता के बारे में आपने बताया, अभी पत्ते का बहुत अहम रोल हमारी गजा में है। गजा में उस पत्ते को अगर आप शामिल करती हैं, जैसे आपने अमरूद के पत्ते का सुना होगा, हर घर में अमरूद रहता है,
1: हाँ
0: करी लीव्स, तुलसी का लीव्स, पपाया लीव्स, इन सब पत्तों का अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसा नहीं कि इन सब पत्तों को डेली आप लीजिए, एक हफ्ता आपने करी लीव्स लिया, एक हफ्ता आप तुलसी लीव्स ले लीजिए, फिर एक हफ्ता कभी पपाया लीव्स ले लीजिए, हैं? तो इस तरीके के पत्ते को अगर आप लेती हैं,
1: लें कैसे ये
0: हाँ
1: बताइए।
0: लें कैसे, जैसे करी लीव से, करी लीव को डायरेक्ट आप एम्प्टी
1: हाँ
0: स्टॉमिक
1: वो
0: ले
1: तो हम
0: स्टीमिंग कर
1: लोग कर
0: सकती
1: हाँ वो
0: हैं,
1: तो हम लोग कर
0: हाँ
1: लेते हैं
0: तुलसी
1: जी,
0: लीव भी आप चीमिंग कर
1: वो भी
0: सकती
1: कर
0: हैं।
1: लेते हैं।
0: जहां तक पपीता का पत्ता आया, उस पत्ते को आप मिक्सी में,
1: अच्छा उसको
0: हाँ
1: पीस करके
0: हाँ उसको
1: ग्राइंड करके।
0: पीस
1: हाँ
0: लें और 2 टीस्पून में 1 गिलास पानी में या हाफ ग्लास पानी में मिक्स कर दें,
1: अच्छा
0: और उसमें 1 से 2 चम्मची हनी मिला दें,
1: अच्छा हनी मिला
0: हनी मिला दें, तो उसका क्या होगा, कड़वाहट खत्म हो जाएगा और उसमें एक टेस्ट आ जाएगा, तो आप आराम से ले सकते हैं। इस पत्ते का इतना फायदा है, यानी डायबिटीज के पेशेंट को हो या फिर डाइजेशन हो।
1: अच्छा 1 मिनट, जब आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो डायबिटीज में तो शहद तो नहीं खाया जा सकता?
0: नहीं तो शहद आप उसमें नहीं दें, आप शहद नहीं मिलाएं, वो तो करी लीव्स ले, नहीं करी लीव्स ले सकती हैं, गुआवा लीव्स ले सकती हैं, तुलसी ले सकती हैं, ये लीव ले, वो पपाया लीव का अगर टेस्ट अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो छोड़ दें। इन सब पत्तों में एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है,
1: गुड गुड
0: और जिसकी वजह से
1: जी
0: ये ब्लड शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, और जिन लोगों का, जो लोग हार्ट के मरीज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है,
1: हाँ हाँ
0: उनके
1: हाँ
0: लिए तो बहुत मुफीद है। उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अगर अपर लेवल में है तो लोअर लेवल में ये सपोर्ट करेगा।
1: अच्छा एक चीज, अभी तो जिस तरह से लोग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो दातून मतलब तो खत्म ही हो गया है, लेकिन अभी आपने बात की कि नीम का पत्ता, तो नीम का पत्ता के साथ साथ नीम का दातून भी बहुत फायदेमंद होता होगा।
0: नीम की दातून का मुकाबला कहाँ है? यहाँ पर क्या होता है, आज फैशन हो गया है, जो चीज हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं उस चीज को एक्सेप्ट ज्यादा कर लेते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है नीम का अर्क डाला हुआ है, वो टूथपेस्ट जरूर लेंगे, मगर बाजार में जो नीम के दतमन बिक रहा है,
1: दातून मिलते हैं
0: दातून
1: जी
0: दिखता है, उस दातून से वो दतमन नहीं करेंगे। तो
1: जी
0: मैं तो गुजारिश करूंगा आपके सुनने वाले को, वो हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर नीम का दातून यूज करें। नीम का दातून यूज करने से दांत की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, और माउथ फ्रेशनर वो है।
1: जी। तो मुमताज साहब, हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने जानी जो अब तक शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि किस तरह से पत्ते हमारे इतने फायदेमंद हो सकते, हमारे लिए इतने फायदेमंद हो सकते हैं, किस तरह से दातून मुफीद हो सकता है, ये चीजें तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया।
0: आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया।

द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सबसे बड़ा अनमोल खजाना सेहत है। आप सुन रहे थे सेहतनामा। सही ग़िज़ाइत की पहचान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सआदत हसन मंटो के बारे में। सआदत हसन मंटो और उनके अफसाने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दू अदब की दुनिया की मशहूर व मारूफ शख्सियत सआदत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो उर्दू दुनिया के एक ऐसे नामवर जिन्होंने सच्चाई और

इंसानियत की आवाज़ को अपनी कलम की जोर से काफ़ी आगे बढ़ाया। उर्दू अदब के सबसे मुनफरद, अहम और बेबाक अफसाना निगारों में से एक थे सआदत हसन मंटो। वो अपनी तहरीरों में अक्सर मुआशरती मुनाफ़क़त, तकसीम हिंद के तल्ख हकायक और इंसानी नफ्सियात की गहराइयों को बेनकाब करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी पैदाइश 11 मई 1912 को हिंदुस्तान के लुधियाना में हुई थी। इन्हें उर्दू अफसाना निगारी का बेताज बादशाह कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, सआदत हसन मंटो को बेताज बादशाह कहा जाता था। मंटो के मशहूर अफसानों में खोल दो, ठंडा गोश्त,

सता सता के हमें अश्क बार करती है। आप सुन रहे थे मौसीकी तहत तलत अज़ीज़ की आवाज़ में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में।

हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। आप सुन रहे थे निदा फाजली का ये कलाम लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला कलाम भी लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में। कलाम है वसीम बरेलवी का।

वसीम बरेलवी का ये कलाम अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में। सामईन हजरात, वक्त हो गया है हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन को यहीं अख्तिताम पज़ीर करने का। फ़िलहाल हमें दीजिए यहीं इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

0: मतलब 1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.5।

0: यारियां फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया केके ने, इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया अनुपम अमोद ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दंगल फिल्म के इसी गाने के साथ रसमंजरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: बात, नई शुरुआत, नया अंदाज हम लाए हैं आप प्यारे श्रोताओं के लिए, एक नई रवानी लाए हैं। आइए सुनते हैं बाल किलकारी।
1: नमस्कार, मैं अनुराग कुमार
2: और मैं आकृति राज।
1: बाल किलकारी की इस नए अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं।
3: आकृति, इस बार अप्रैल के महीने में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी ना?
2: थोड़ी बहुत गर्मी तो थी, पर ज्यादातर मौसम अच्छा रहा।
3: हाँ, और देखते देखते कैसे महीना भी खत्म हो गया, यह भी पता नहीं चला। अच्छा यह बताओ, अप्रैल के महीने में बारिश के पीछे का क्या कारण था?
2: मुझे बहुत कुछ तो पता नहीं, लेकिन अखबारों से इतना जरूर समझ बनी है कि मौसम में हो रहे इस बदलाव की वजह जलवायु परिवर्तन है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर भी बिहार में देखने को मिल रहा था। इन सब कारणों के कारण बिहार में बारिश हो रही थी।
3: मेरे साथ रहकर तुम भी थोड़ी समझदार हो गई हो।
2: ओ बाबू, मैं पहले से होशियार थी, समझे?
3: अच्छा, इतना होशियार हो तो मेरी एक पहेली का जवाब दो, तो मैं मानू कि तुम्हारे पास भी दिमाग है।
2: हाँ हाँ, पूछो पूछो, मैं सब जानती हूँ।
3: तो पहेली सुनो। चढ़े नाक पर पकड़े कान, है कौन बताओ वह शैतान।
2: शायद इस पहेली का उत्तर हेलमेट है।
3: गलत जवाब, इस पहेली का सही उत्तर होगा चश्मा।
2: बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा सवाल जवाब, अब मेरे सवाल का जवाब दो, राष्ट्रगान किसकी रचना है?
3: बस इतना आसान सवाल, भारत का बच्चा बच्चा इस सवाल का जवाब जानता है। इस सवाल का जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और तुम्हें शायद यह भी पता होगा कि 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है। वह एक बंगाली कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए गद्य और पद्य रूपों और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया।
2: अच्छा, और क्या जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में?
3: जितनी जानकारी थी उतनी तो मैंने बता दी, पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमने सम्राट समीर भैया को बुलाया है। इन्होंने हिंदी विषय से स्नातकोत्तर किया है, साथ ही यह किलकारी बिहार बाल भवन में छोटे बच्चों को हिंदी लेखन भी सिखाते हैं। सम्राट भैया को लेखक और कवियों के बारे में विशेष जानकारी है, इसलिए इस बार हमने सम्राट समीर भैया को आमंत्रित किया है। आपका बहुत स्वागत है सम्राट भैया हमारे बाल किलकारी कार्यक्रम में।
4: बहुत धन्यवाद अनुराग, और श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को इतना प्यार देते हैं।
2: भैया, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई को हम जानते हैं, क्या आप उनके विषय में हमें कुछ जानकारी साझा करेंगे?
4: बिल्कुल, टैगोर जी से मेरा लगाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मैं भी उसी दिन पैदा हुआ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था।
3: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में कितनी रचनाएं लिखी हैं?
4: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1000 से अधिक कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपनी कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था।
2: और तभी लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी।
4: बिल्कुल सही, इस ऐतिहासिक कृति की नीति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रविन्द्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के

0: अंग्रेज मित्र चित्रकार रोन्थेस्टीन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोन्थेस्टीन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र डब्ल्यू बी यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वहीं नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखा। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई और फिर लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचना धर्मी ही नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा।
1: सही कहा, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान व्यक्ति थे और उनकी महानता से ही यह दुनिया उन्हें पूजती है।
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगणमन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था।
0: सही कहा, उन्होंने बांग्ला साहित्य में नया मोड़ डाला और पश्चिम में भारतीय संस्कृति को पेश करने में मदद की और उन्होंने संगीत नाटकों और गीत लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया और उनकी संस्था विश्व भारती आज भी एक महत्वपूर्ण संस्थान है। और सबसे अद्भुत बात कि टैगोर ने 60 वर्ष की उम्र में चित्रकला करना शुरू किया और उनके चित्र दुनिया भर में सराहे गए। टैगोर के दर्शन में साहित्य और धार्मिकता का संगम था।
2: उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, जो उन्हें एशिया के पहले व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह पुरस्कार उन्हें उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था।
0: अगर उनके बारे में कुछ अनोखी बात कहें, तो उन्होंने 2200 से अधिक गीतों की रचना की और उन्होंने 2 बार विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। टैगोर ने बंगाली साहित्य में एक नई शैली की शुरुआत की और भारतीय संस्कृति को पश्चिम में पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं भारत और बांग्लादेश में आज भी लोकप्रिय हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य में अनेकों कार्य किया। टैगोर ने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और छंद तथा लोक भाषा के उपयोग की शुरुआत की और इस प्रकार शास्त्रीय संस्कृत पर आधारित पारंपरिक प्रारूपों से उसे मुक्ति दिलाई। भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1880 के दशक में कविताओं की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की तथा मानसी की रचना की। टैगोर की कविताओं की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रोथेनस्टाइन ने पढ़ा था और वे इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने अंग्रेजी कवि यीट्स से संपर्क किया और पश्चिमी जगत के लेखकों, कवियों, चित्रकारों और चिंतकों से टैगोर का परिचय कराया। उन्होंने ही इंडिया सोसाइटी से इसके प्रकाशन की व्यवस्था की और शुरू में 750 प्रतियां छापी गईं, जिनमें से सिर्फ 250 प्रतियां ही बिक्री के लिए थी। बाद में मार्च 1913 में मैकमिलन एंड कंपनी लंदन ने इसे प्रकाशित किया और 13 नवंबर 1913 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इसके 10 संस्करण छापने पड़े।
2: रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के साथ एक और जानकारी जुड़ेगी, शांति निकेतन की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाँव के जीवन को बहुत करीब से देखा था। वे किसानों, काश्तकारों के जीवन में फैले अशिक्षा के अंधकार को मिटाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि देश के विकास के लिए पहले गरीब किसानों का विकास जरूरी है। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने योजना बनाई कि कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित शांति निकेतन में, जो उनकी थोड़ी बहुत जमीन है, उस पर इन किसानों और काश्तकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल खोलने के विषय पर मशविरा लेने के लिए पत्नी के पास पहुंचे। उनके इस विचार को सुनकर उनकी पत्नी हंस पड़ी। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि स्कूली शिक्षा से हद दर्जे तक भागने वाला आज स्कूल की स्थापना करने की बात कैसे सोच रहा है। उनकी पत्नी ने कहा, आपके स्कूल खोलने की बात मेरी समझ में नहीं आई। टैगोर ने पत्नी की इस जिज्ञासा और हंसी को शांत करने के लिए कहा कि वह उन स्कूलों जैसा स्कूल नहीं खोलने वाले हैं।

0: बंद कोठरियों और कमरों में छड़ी के दम पर बच्चों को सबक रटाए जाते हैं। शांति निकेतन वृक्षों के नीचे खुले में व्यवहारिक शिक्षा देने वाला पहला स्कूल होगा। जब शांति निकेतन की स्थापना हुई तब उनके मन में यह इच्छा थी कि यहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कोई दीवार ना हो, उम्र और पद को भूलकर सब एक साथ मिलकर काम कर सके, जहाँ शिक्षा का मतलब किताबों में सिमटना कहीं से भी ना हो। एक दिन शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने इस विचार को अमली जामा भी पहना दिया। यही शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती बन गया। उत्तम दर्जे की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के इस लगाव को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। पर दोस्तों, उनके बारे में तो बहुत बातचीत हो गई, लेकिन उनकी रचना हम लोग नहीं जानते हैं। मैं एक रचना उनकी जानता हूँ। उनकी एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कविता है लुका छिपी, और इसका हिंदी अनुवाद किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। यदि मैं शरारत करूं, फूल बनकर चंपा के वृक्ष पर जा खिलूं, किसी भोर बेला में डाली पर हिलने डुलने लगूं, तब तो माँ तुम मुझसे हार जाओगी। माँ तब क्या तुम मुझे पहचान सकोगी? तुम पुकारोगी, मुन्ना कहाँ गया रे? और मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। जब तुम किसी काम में लगी रहोगी तब मैं आंखें खोले हुए सब कुछ देखूंगा। स्नान करके तुम चंपा के नीचे निकलोगी, पीठ पर केश फैलाए हुए वहां से पूजा घर में जाओगी, तब तुम्हें दूर से फूल की सुगंध आएगी, किंतु तुम समझ नहीं पाओगी कि सुगंध तुम्हारे मुन्ना के शरीर से आ रही है। सबको खिला पिलाकर दोपहर में तुम महाभारत लेकर बैठोगी, कमरे की खिड़की से वृक्ष की छाया तुम्हारी पीठ और गोद में पड़ेगी। मैं तुम्हारी पुस्तक पर आज हुलाऊंगा अपनी नन्ही सी छाया, क्या तुम समझ सकोगी? तुम्हारी आंखों में मुन्ना की छाया तैर रही है। सांझ को दिया जलाकर जब तुम गाय की सार में जाओगी तब मैं फूल का यह खेल समाप्त करके टप से धरती पर टपक पड़ूंगा और फिर से तुम्हारा मुन्ना बन जाऊंगा। तुम्हारे पास आकर कहूंगा कहानी सुनाओ, तुम पूछोगी तू कहाँ गया था रे नटखट, मैं कहूंगा सो मैं नहीं बताऊंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट भैया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हमारे जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही फेमस और हम सबका प्रिय गीत एकला चलो रे सुनना चाहेंगे। आइए सुनते।

0: पर अब समय सीमा को देखते हुए हमारे श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
1: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
1: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
0: मिलते हैं अगले रविवार,
1: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार।
0: इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए बाल कार्यक्रम बाल मंडली।

0: जय हिंद बच्चों, आज रंजना दीदी हैं, आपसे बातें करेंगी और हमारे साथ हैं आद्या और आधीरा। दोनों बहनें कराटे भी सीखती हैं और आज आई हैं आपसे ढेर सारी बातें करेंगी और आद्या कविता सुनाएंगी और अपने नन्हे साथियों से बातें भी करेंगी। बच्चों, अभी मौसम है गर्मी का और हम लोगों को अपना ख्याल मौसम अनुसार रखना पड़ता है। अभी जो महीना है, मई का महीना, इसमें गर्मी बहुत पड़ती है और तब हम ही नहीं, पशु पक्षी भी पानी के लिए प्यासे रहते हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने छत पर, बालकनी में उनके लिए मिट्टी के बर्तन या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आसानी से वो झुक कर पानी पी सके और दाना भी उनके लिए नियमित रखे। ये नहीं कि आज रखा, कल नहीं, जब मर्जी हुई तब रखा। नहीं, उनको भी एक उम्मीद, एक आसरा बन जाता है। वो रोज उसी जगह आते हैं और कितनी चतुराई से चिड़िया जो होती है चारों तरफ देखती है, दाना चुगती है और पानी जल्दी जल्दी पी लेती है, लेकिन फुर्र से उड़ जाती है, हमारी पकड़ में तो बिल्कुल नहीं आती है। और ये देखकर अच्छा भी लगता है और आप लोग भी चाहेंगे कि आपके घर आंगन में, छत पर, बालकनी में चिड़िया की चू चू सुनाई पड़े। तो आद्या, आप बताइए, आप चिड़ियों के लिए क्या करती हैं? चिड़िया आपको पसंद है?
1: कटोरी में उनके लिए थोड़ा सा दाना डालते हैं और उसको बालकनी में रखते हैं, और हम लोग उनके लिए पानी को भी कटोरे में ही देते हैं ताकि वो आराम से दाना खा पाए और पानी पी पाए।
0: और बच्चों, अभी आपको हम जानकारी देते हैं मीडिया के विषय में, और मीडिया से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, लोगों की सोच और व्यवहार को भी ये प्रभावित करता है। आजकल तो बच्चों, मीडिया के माध्यम से बच्चों को कई तरह से दिखाया भी जाता है, जो बच्चों को प्रेरणादायक और सकारात्मक रूप में दिखाते हैं, और ये एक संदेश देता हुआ होता है जिससे और बच्चे भी सीखते हैं उनको देखकर, चाहे रेडियो पर सुने, टीवी में देखें या अखबार में पढ़ें। उनसे हमको प्रेरणा मिलती है जिन बच्चों को सकारात्मक रोल में दिखाया जाता है। और कुछ भूमिकाएं और चित्रण जो होती है बच्चों की मीडिया के द्वारा, वो नकारात्मक रोल में प्रस्तुत करते हैं, और कभी-कभी समाज में भी बच्चों को गलत व्यवहार या गलत तरीके से दिखाया सिखाया जाता है, और इसे भी मीडिया समाज के सामने लाता है। लेकिन अब हमारी समझ पर है, या हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमको बताते हैं ये आपको नहीं करना है, तो इसको समझना भी हमको ही है। तो इन बातों का ख्याल हम लोगों को रखना ही चाहिए कि हम जहाँ भी रहें वो जागरूक रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई का सही उपयोग करें और अपने साथी मित्र के साथ हमेशा इस तरह की बातों पर बातचीत भी करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा हो सकता है। बच्चों, आज का युग तकनीकी युग है और रोज नई तकनीक हम सबको मिल रही है, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया, और ये हमारे जीवन का हिस्सा भी बन चुके हैं। और आप बच्चों को भी बहुत बार इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ता होगा पढ़ाई लिखाई में नई चीजें सीखने के लिए, और कभी-कभी वीडियो गेम भी खेलते होंगे या कुछ मनोरंजन भी आपका टीवी और मोबाइल के माध्यम से होता होगा। और बच्चों, आपको पता है तकनीकी युग में जो मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सब के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और इंटरनेट से क्या नुकसान है ये रंजना दीदी आपको बता देती है। तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत बार अनजान लोग जो इस तरह का साइबर क्राइम करते हैं, वो लोग कोई ना कोई तरीका खोजते रहते हैं कि वो लोगों से संपर्क करें, उनको गलत संदेश दें, उनके बैंक से पैसे किसी तरह निकाल लें। तो इसके लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, फोन करके आप से अच्छी से बातें करेंगे और उसके बाद आपकी निजी जानकारी जो होती है वो आपसे लेने की कोशिश करेंगे, और गलत वेबसाइट

मोबाइल पर आता रहता है जिसको हम बिना जानकारी के ओपन कर लेते हैं और उससे हम उस धोखा में फंसते जाते हैं और हमारे साथ बहुत ठगी भी हो जाता है। तो ऐसे जो वेबसाइट होते हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और वो नहीं करना चाहिए खुद से अकेले में मोबाइल में, जो कि हमको मना किया गया है। इससे सिर्फ हम ही नहीं परेशान होते हैं, पूरा घर, धन की हानि, बैंक से पैसे

पूछे उससे शेयर नहीं करें। दूसरी बात, ऐप्स और वेबसाइट जो सुरक्षित हो उसी का प्रयोग करें। अब तो सही गलत अकेले नहीं आप जान पाएंगे, तो घर के बड़ों के साथ इस पर जरूर थोड़ा सोच विचार करें, तहकीकात करें। और तीसरी बात है, अगर इंटरनेट या कॉल से डराने धमकाने या अजीब हरकत करने की कोई कोशिश करे तो तुरंत फ़ोन काटें या बड़ों को तुरंत बताएं, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं वो ज़रूर याद रखें और उस पर फ़ोन करके हम मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, नई नई तकनीक के विषय में जानना तो बहुत जरूरी है और उपयोग भी करना है, लेकिन समझदारी और सावधानी से, क्योंकि यहाँ से ज्ञान का खजाना हम पा सकते हैं।

0: और हमारी नन्ही साथी आद्या बातें सुन रही हैं और उनसे भी हम सुन लेते हैं ये कविता।
1: मेरा एक प्यारा परिवार है, मेरा एक प्यारा परिवार है, दादी दादा है, छोटे चाचू मेरे दोस्त, खेल खिलाती चाची है, मम्मी पापा सबसे अच्छे, लंबी ताऊ छोटी ताई, हम सब मिलकर रहते हैं, सारे दुख सुख साथ रहते हैं।
0: बच्चों हमारा परिवार, परिवार जो होता है जहाँ हम प्रतिदिन अपना अधिक समय बिताते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी परिवार में ही देखभाल होती है और परिवार को ही प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है, और जो वहाँ बड़े होते हैं वो शिक्षा देते हैं, हमको सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना, अच्छी बातें करना, अच्छा व्यवहार करना।

0: ये सब कुछ हम अपने परिवार में ही सीखते हैं, और स्कूल जाने की बारी तो बाद में आती है, जब हम कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हम में समझदारी आने लगती है। तो परिवार हमारे लिए वो स्थान है जहाँ हम अपना हर सुख दुख और समय अच्छे से बिताते हैं।
1: मेरा नाम आधीरा धारे है। मैं परिवार पे कविता बोलने जा रही हूँ। माँ की ममता, पिता का प्यार, इनसे रोशन होता संसार। भाई बहन की प्यारे बातें भर देती जीवन में सौगातें। जब भी मुश्किल राहें आए, अपने ही हिम्मत बन जाए। आंसू हो या खुशियों की बहार, साथ खड़ा रहता परिवार। ना धन दौलत, ना ऊंचा नाम, परिवार से बढ़कर नहीं कोई काम। जहाँ प्रेम और सम्मान बसता है, वहीं सच्चा सुख खिलता है। रिश्तों की ये प्यारी डोर रखती जीवन को हरदम जोर। जिसके पास अपनों का प्यार, वही दुनिया में सबसे धनवान।
0: कोई भी खुशी होती है तो सब मिल बैठकर उसको एंजॉय करते हैं, और कोई परेशानी यदि आती है तो उसका समाधान भी परिवार में ही निकलता है। और बच्चों, आपकी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप सब ने कहीं ना कहीं जाने का प्लान बनाया होगा, या आपके घर पर ही आपके परिवार के या आपके दोस्ती के या आपके मम्मी पापा के कोई परिचित आने वाले होंगे, तो उनके साथ अपना समय बहुत अच्छे से बिताएं और एक यादगार छुट्टी की तरह बिताएं। उनसे कुछ सीखें भी, उनको सिखाएं भी, और उनके साथ कहीं घूमने जरूर जाएं। पूरे समय घर में रहने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बाहर निकलेंगे तभी तो देखेंगे प्रकृति कैसी है, हम इसके साथ तालमेल रखें, इस प्रकृति का आनंद लें, तो इसके लिए हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये और भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि बिजली, पानी और ईंधन, इन सबको हमको बहुत संभाल के खर्च करना है। और जब आप घर में रहते हैं तो टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बत्ती, सब कुछ हम ऑन रखते हैं, और यदि हम बाहर निकलते हैं तो इसको जरूर ध्यान दें कि सब स्विच ऑफ करके ही बाहर जाएं। और यदि घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, स्विच ऑफ है, तो बिजली की बचत भी हो जाएगी।
1: हाँ, करती हूँ। पानी की बचत और बिजली की बचत करनी चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा है, बर्बाद नहीं करना चाहिए।
0: तो इस तरह का ख्याल हमको रखना चाहिए। और पानी, जो शुद्ध पानी हम लोग पीते हैं बच्चों, वो ऐसे ही हमको नहीं मिलता है, उसको साफ किया जाता है तब वो पीने योग्य होता है। तो इस अमूल्य जल को भी हमको संभाल कर रखना है, बारिश के जल का संचय करना है, ये सारे तरीके हमको सीखने, समझने और अमल में लाने चाहिए। आधीरा और आद्या, आप दोनों अपने घर में मम्मी की मदद करती होंगी।
1: हाँ, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को खाना खिलाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरे हर कार्य में मेरे को मदद करती है और मुझसे बहुत प्यार करती है।
0: और मम्मी आपके पसंद की सब चीजें बनाती भी होंगी, और आपको जो पसंद है वो आपके साथ मिलकर आपको कहाँ घूमना है या आपके पसंद की क्या ड्रेस है, ये सब कुछ करती होंगी। तो आपके पसंद का खाना तो बनता ही होगा, और आपको क्या-क्या पसंद है जो मम्मी से आप बनवाना चाहती हैं या मम्मी आपकी पसंद की चीजें बनाती हैं, बताइए अपने दोस्तों को। आद्या, आपके घर में खाना कौन बनाता है?
2: माँ बनाती है हम लोग की, मम्मी
0: तो आपके पसंद का खाना बनता है?
2: जी।
0: क्या बनता है आपकी पसंद का?
2: राजमा, छोला।
0: आपको पसंद है राजमा छोला और हरी सब्जियां?
2: हाँ, इसे पसंद है, खासकर बीन्स की सब्जी।
0: तो बीन्स तो हरी सब्जी नहीं है, हरी सब्जी तो लौकी, पालक, भिंडी, परवल,
2: भिंडी अच्छा
0: नेनुआ,
2: लगता है।
0: भिंडी पसंद है, और वैसे सभी हरी सब्जियां हमको खानी चाहिए। उससे फायदे क्या होते हैं पता है?
2: हाँ, वो हमें ताकत देता है,
0: हाँ,
2: मदद करता है, हमें ऊर्जा प्रदान,
0: ऊर्जावान
2: ऊर्जावान
0: बनाता
2: बनाता
0: है।
2: है।
0: और जैसे आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए विटामिन ए चाहिए, जो कि गाजर में भी मिलता है, और आंवला विटामिन सी से भरपूर है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब जैसे साग है, पालक है, इसमें आयरन बहुत होता है, जो हमारे खून को बढ़ाता है। और हर हरी सब्जी में कुछ ना कुछ पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, शरीर को पोषण देने में मदद
2: बहुत
0: करते
2: मदद
0: हैं,
2: करते हैं।
0: इसीलिए थोड़ी थोड़ी हरी सब्जी तो

0: खानी चाहिए और धीरे धीरे आदत लगानी चाहिए। जो फायदेमंद है वो तो हमको खाना ही चाहिए। फल और सब्जियाँ, खासकर मौसमी फल सब्जियाँ हमको ज्यादा ताकत देती हैं। आप माँ के बारे में बता रही थी, तो माँ पर कोई कविता भी आप सुनाने वाली थी अपने साथियों को।
1: इस कविता का नाम है मेरी माँ। प्यारी प्यारी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ लोरी रोज सुनाती है, थपकी दे सुराती है, जब उतरे आंगन में धूप प्यार से मुझे जगाती है, देती चीजें सारी माँ प्यारी प्यारी माँ, उंगली पकड़ चलाती है सुबह शाम घुमाती है, ममता बड़े हुए हाथों से खाना रोज खिलाती है, देवी जैसी मेरी माँ सारे जग से न्यारी माँ। धन्यवाद।
0: ये तो बहुत अच्छी कविता थी। और उंगली पकड़कर चलाना, तो बच्चों को जब बच्चे नहीं चल पाते, जब आप बहुत नन्ही सी थी तब माँ उंगली पकड़कर चलाती थी और अपने हाथों से खिलाती भी थी। लेकिन अब तो बड़ी हो गई, स्कूल भी जाती हैं, तो घर में मम्मी की मदद बच्चों को भी करनी चाहिए।
1: जी,
0: वो कैसे मदद करनी चाहिए?
1: हम इनको छोटे छोटे कामों में हाथ बटा सकते हैं, जैसे कि जब मम्मी खाना निकालती है तो उसमें भी हम मम्मी को मदद कर सकते हैं खाना निकालने में।
0: हाँ, पानी लाकर रख लिए या और जो जरूरत है, अगर सलाद बनना है तो सलाद के लिए जो सब्जियां रखी हैं उसको धुलना, उसको छील देना, बर्तन लाना, इस तरह से खाने के बाद बर्तन को उठाकर सही जगह रखना, ये सब मदद हम कर सकते हैं। और आधीरा भी अपने नन्हे साथियों के लिए लेकर आई है कविता। क्या है कविता?
1: कविता है माँ। ममता का सागर है माँ, स्नेह का झरना है माँ, लोरी के मीठे बोल गाकर सपनों को जगाती है माँ, त्याग की मूर्ति है माँ, समय साक्षी है इसका, इतिहास नया रचाती है माँ।
0: ये तो हुई हमारी आपकी माँ जो है। हम सब की एक माँ है, वो कौन है?
1: धरती माँ।
0: बच्चों को तो पता है धरती माँ, और ये हमारा पालन पोषण सबका करती है, क्योंकि धरती पर ही हम जन्म लेकर आते हैं, चलते हैं। बाग बगीचे, जो अनाज है और जो पानी है, ये सब हमें धरती माँ पर ही मिलता है। धरती माँ हमारी देखभाल करती है, तो धरती को भी हम माँ कहते हैं। बहुत बड़ी नदी है गंगा माँ, उनको भी हम माँ बोलते हैं, क्योंकि जितना भी जो खेती बाड़ी होता है वो नदियों के आसपास बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती है, इसीलिए हम नदी को भी, गंगा नदी को भी माँ बोलते हैं। तुलसी का पौधा, उनको भी हम माँ बोलते हैं, तुलसी माँ। तुलसी के पौधे से हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं?
1: तुलसी से पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर को कई सारी बीमारियों से बचाता है।
0: हाँ, उनमें औषधीय गुण ऐसे होते हैं, जैसे सर्दी जुखाम हो जाता है तो हम लोग तुलसी का काढ़ा बनाते हैं, और ऐसे भी हम लोग जो पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र रखते हैं, जिससे हम कहते हैं कि शुद्ध हो जाता है। पर्यावरण, वातावरण अच्छा तो बनता ही है।
1: पर्यावरण पृथ्वी पर एक सुरक्षित जीवन का आधार है। एक सुरक्षित पर्यावरण पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि हम किसी भी प्रकार से अपने पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं तो यह हमारी पृथ्वी के साथ साथ सभी जीवों, मानवों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इन सभी बातों को समझने के बावजूद वर्तमान में हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।
0: तो इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं हम?
1: हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं।
0: हाँ,
1: हम प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए।
0: हाँ, और जो हमको मिलता है पानी, शुद्ध पानी, इसकी भी कमी हो सकती है यदि हम पानी की बर्बादी करते हैं। तो बारिश के पानी को बचाना चाहिए, और कैसे उसको सुरक्षित रखें, साफ रखें, जहाँ भी नल खुला हो उसको बंद कर दें, चाहे हमारे घर का ना हो, बाहर भी कहीं जा रहे हैं रास्ते में यदि

0: नल टपक रहा है, या आपके घर में कोई नल जिससे पानी बराबर टपक रहा है, तो बताइए मम्मी को पापा को, तो वो उसको ठीक करवा लेंगे। ये सब ख्याल हमको रखना चाहिए। और बिजली, बिजली की बचत करनी चाहिए।
1: जब हम बाहर रहते हैं या फिर जब हम लोग कहीं भी बाहर जाए रहते हैं, तो हमें अपना घर के लाइट, फैन और जो भी सारे इलेक्ट्रिक सामान है उसे ऑफ करके जाना चाहिए।
0: हाँ, बाहर जाए तभी नहीं, यदि हम कमरे में हैं और उस कमरे से निकल भी रहे हैं, तो फालतू में बिजली और पंखा ये
1: जैसे ही
0: सब
1: निकलते
0: ना
1: हैं हम लोग
0: चलता
1: को
0: रहे,
1: बंद
0: और
1: करके
0: जब
1: निकल।
0: जरूरत हो तभी चलाएं। कभी कभी ऐसा भी तो कर सकते हैं, बाहर मौसम अच्छा है तो हम पंखा बिजली बंद करें और
1: और
0: बाहर
1: फिर
0: बाग बगीचे में थोड़ा घूम आए, थोड़ा खेल आए, थोड़ा बैठ आए, तो खुली हवा में रहना हमको फायदा ही देता
1: इससे
0: है।
1: हमें भी अच्छा लगेगा और बिजली भी बचेगी।
0: हाँ बिल्कुल, और ये भी एक तरह से पैसे की ही तो बचत होती है।
1: जी
0: और भी कुछ कविता है आप दोनों के पास?
1: जी
0: क्या है
1: मेरे पास एक जल पे कविता।
0: तो सुना दीजिए अपने नन्हे साथियों को। तो अधीरा सुना रही है अपने नन्हे साथियों को एक कविता जो जल पर है।
1: जल ही जीवन की आस, जल की हर एक बूंद कहे मुझको यूं मत खोने दे, मैं ही जीवन मैं ही आस, मुझसे ही हर सांस खास। नदियों में जो गीत बहे अब वो सूखे दर्द कहे, क्या मान अब तू भूल गया मुझसे ही संसार चले। मत बहा यूं मुझको व्यर्थ, मैं ही धरती मैं ही अर्थ, मुझसे खेत हरे भरे मुझसे जीवन के सब पथ। आज बचा ले हर एक धार, कल ना होगा ये उपहार, जल है तो ही जग मुस्काए वरना सूना ये संसार।
0: ये तो बड़ी अच्छी कविता एक उपहार के रूप में आधीरा ने अपने नन्हे साथियों को सुनाई। और इस तरह हमको जो कविता या कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनाते हैं, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। जैसे आधीरा ने ये जो कविता सुनाई, जल की खासियत का पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना कीमती है, इसको बचाना भी जरूरी है, और प्रयोग करें तो बहुत मितव्ययता से उसको बर्बाद ना करें। और आध्या भी कुछ और सुनाएंगे अपने साथियों को
1: जी
0: क्या?
1: दीदी, मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है धरती माँ की पुकार। सांसे हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, धुएं से घुट रहा है दम, आओ प्रकृति बचाए हम। नदियां सूखी प्यासी, धरती बिन पानी जीवन बेकार, कंक्रीट के जंगल बढ़ते कहाँ जाए अब पंछी बसर। प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, यह संकल्प उठाए हम। सांसे हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। हरियाली जब नहीं रहेगी खुशहाली खो जाएगी, प्रदूषण के चादर में दुनिया अंधेरी हो जाएगी। भावी पीढ़ी को क्या देंगे यही सोचे और जागे हम। सांसे हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। वृक्ष धारा के है आभूषण, मिट्टी के है ये रक्षक, स्वच्छ हवा पानी के खातिर ना बने हम भक्षक। पर्यावरण की रक्षा में मिलकर अब कदम बढ़ाएं हम।
0: और आप दोनों बहनों ने अपने नन्हे साथियों के लिए कविता सुनाई, तो रंजना दीदी भी सुनाना चाहती है एक कविता। सुना दे।
1: जी
0: जी
1: दीदी,
0: दीदी, तो मेरी कविता है मेरा परिवार। मेरा परिवार है सबसे प्यारा, जैसे चमके चांद सितारा। मम्मी की ममता, पापा का प्यार, खुशियों से भर देता संसार। भैया बहना संग में खेलें, हंसी खुशी के पल हम झेलें। झगड़ा हो तो मान भी जाएं, प्यार से फिर गले लग जाएं। घर में जब सब साथ हों, हर दिन जैसे त्योहार हो। प्यार, दया और अपनापन, यही है परिवार का धन। है ना बच्चों? बच्चों, परिवार का महत्व तो हम समझे ही, और आपसे बातें करके भी अच्छा लगा, आपके नन्हे साथियों को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन समय का ध्यान रखना भी जरूरी है, और हमारे बाल मंडली कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो हम अपने नन्हे साथियों से लेते हैं विदा। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
11: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
13: हेलो फरमाइश,
14: फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूं। आपके कॉल्स आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
15: नमस्कार संजय भाई
14: जी।
15: मैं जी सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
14: बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप?
15: धन्यवाद जी।
14: और क्या हो रहा है इन दिनों?
15: बस जी वो खेती का काम ही है, जो अभी तो काम नहीं चल रहा है क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद अभी फ्री हैं 1-1.5 माह।
14: हाँ जी, उसके बाद फिर आप लोग तो धान लगाइएगा फिर बासमती।
15: हाँ जी जी, फिर तो बस बहुत ज्यादा काम हो जाएगा जी।
14: जी
15: तो
14: बहुत ज्यादा,
15: 4 महीने पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी जी।
14: क्या हाल है उधर मौसम का?
15: मौसम ठीक है जी, परसों रात को

0: आई थी, आंधी और बारिश हुई थी, तो
1: जी।
0: अब ठीक है बिल्कुल। कल भी धूप निकली, आज भी निकली।
1: आज धूप है आपकी तरफ?
0: जी हाँ, धूप है। अच्छा
1: हमारे यहाँ अभी जोरदार बारिश हो रही है जी,
0: जी
1: ठंडी हवाओं के साथ
0: क्योंकि
1: थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हुई है
0: अच्छा, हाँ जी हाँ
1: जी,
0: जी, ठीक है जी।
1: तो अचानक से बादल उमड़े और बर्फ के साथ में फिर बारिश
0: क्या
1: जी।
0: बात है जी,
1: ये
0: क्योंकि
1: मौसम एकदम ठंडा हो गया है
0: कहीं धूप है
1: जी।
0: कहीं बारिश है।
1: इतना बड़ा देश है, हम तो हर रंग में जीने वाले लोग हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पहाड़ नदियाँ पठार जंगल समुद्र सब कुछ है हमारे यहाँ
0: जी, हाँ जी हाँ जी
1: जी,
0: हाँ, बिल्कुल जी
1: तो हम तो इन सब चीज़ का आनंद लेते हैं। और आप भी अगर आनंद लेने के ख्याल से हमें फ़ोन किया है तो कौन सा गाना मुफीद है बताइए
0: जी। गाना सुना रहे जी, फिल्म कभी कभी का
1: जी।
0: और टाइटल सॉन्ग इसका
1: मेरे दिल में ख्याल आता है
0: जी जी हाँ जी।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हेलो
0: जी
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से?
1: आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ बरगंदन पासवान, गांव नथुडी, पंचायत खुदुपार, प्रखंड चानन, थाना कील, जिला लखीसराय से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है, बहुत दिन के बाद आपने मौका दिया बात करने का, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद।
0: जी बहुत अच्छा, आपने मौका लिया और मौके पर
1: हाँ
0: आप बात कर रहे हैं। तो सुनाइए,
1: जी,
0: क्या
1: बताइए।
0: हालचाल हैं आपके और क्या हो रहा है आपकी तरफ?
1: मैं हाल चाल तो ईश्वर कृपा से स्वास्थ्य ठीक है, ठीक ठाक हूँ। उम्र के चौथे पड़ाव पर हूँ, सामाजिक काम कुछ कर लेता हूँ।
0: तो अभी कुछ कर
1: जहाँ
0: रहे
1: तक
0: हैं ये बता सकते हैं क्या?
1: अभी क्या दरवाजे का पहरा गिरी करते हैं, ठहरते हैं। सामाजिक काम जो हुआ मुद्दे अपने सब खेती गृहस्थी तो दाल हल नहीं चलता। वैसे मैं आपको बताया था, मैं सचिवालय से रिटायर अफसर एक हूँ, छोटा 15-16 साल हो गए रिटायरमेंट का
0: हाँ जी,
1: जी। तो लगे का कुछ कर लेता हूँ, जैसे जहां तक आपका कार्यक्रम है
0: हाँ
1: तो कार्यक्रम मेरे विचार से 5:45 से सवेरे 7:15 तक मैं सुनता हूँ आपका परमानेंट। तो उसमें जैसे चिंतन है, बड़ी अच्छी बात है। चिंतन में आप एक बार और कहा था, मैंने चिंतन में रिपीट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें।
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: 7:15 तक सुन लेता हूँ खेती गृहस्थी के बारे में। चाहे जी बताइए जितना सब कुछ खेती गृहस्थी के बारे में सारी
0: हाँ
1: बातें है। ये
0: जी
1: अच्छा रहा, आपका समय बहुत ले रहा हूँ, अच्छा लगा आपसे बात करने में। बात गाना सुना कहना सुना, आपसे बात होती तो बड़ी संतुष्टि होती है
0: हाँ जी, ये बात है।
1: जी। अब ऐसे बड़ाई की बात नहीं है, आप ये आप एक अच्छे मने कलाकार हैं।
0: जी धन्यवाद।
1: मतलब हमको लगता है कि अनंत कुमार के बाद आते स्टेशन में पटना में है मेरे घर से।
0: धन्यवाद आपका हौसला बढ़ाने के लिए। जी
1: हाँ जी हाँ, तो क्या नाम है, गाना जहाँ तक है, फिल्म का नाम चाहे जो हो लेकिन गाना कबूल है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।

0: में आपका?
1: मैं राजेंद्र प्रसाद, ग्राम छोटकी अम्मा, जिला नवादा से बोल रहे हैं सर।
0: जी कहिए, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, गर्मी कर रहा है, घर में अपना रेडियो सुनते हैं, हम तो कहीं जाते नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए थे, वो बढ़िया नहीं सफल हुआ, वोट गेम कराए थे तो थोड़ा विकलांगता है, रोशनी कम है, तो घर में आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: बढ़िया करते हैं, घर में ही रहिए और ज्यादा सुरक्षित घर होता है
1: हाँ ठीक है सर।
0: जी।
1: सर पहले, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, इस बात के लिए कि दो नाटक मैंने फरमाइश किया था, दोनों मुझे सुनने को मिला, एगो 21 अप्रैल को, एगो कल 5 अप्रैल को।
0: अच्छा जी,
1: 21 अप्रैल को दान सुनने को मिला और बंद कमरे में आत्मा सुनने को मिला 5 को,
0: जी
1: और गाना तो सुनवे किए थे सर,
0: वो भी अच्छा लगा।
1: वो एनो फरमाइश में किए थे। हाँ सर ठीक है सर, मूंग लगा हुआ है खेत में, सब्जी लगा हुआ है।
0: जी बढ़िया फसल लीजिए और
1: हाँ सर, लड़कन लोग करता है खेती, एगो के नाम अजय कुमार है, बड़ा लड़का के, छोटा लड़का के अभिषेक कुमार है, वही लोग करता है सर, हम आपका बाजा ही सुनते रहते हैं सर।
0: जी बढ़िया, कार्यक्रम से जुड़े रहिए और
1: हाँ सर, सुनते हैं सब चीज, लोग गीत वगैरह भी सुनते हैं, उर्दू में सेहतनामा आता है सर, उसमें डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत अच्छा से बताते हैं हर बीमारी के बारे में।
0: जी।
1: हाँ सर, वो सुबह से शाम तक बिहार, गुंजे बिहार तो खैर मेरा पसंदीदा है, नाटक ही सब तो पसंदीदा चीज है। हेलो, कार्यक्रम तो सर छुटवे नहीं करता है एको।
0: अब बताइए क्या सुनवाया जाए आपको।
1: सर एगो गाना है, फिल्म बढ़िया नहीं, नाम आ रहा है, आप बीती के गाना है, लगन का टाइम चल रहा है, तो सर गाना सुना दीजिए, टुन टुना टुन टुना, कभी खोले ना तिजोरी के ताला, हाय मेरे ससुरा बड़ी पैसा वाला है।
0: अच्छा, किशोर कुमार।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर।
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं?
1: सर मैं रविंद्र कुमार रवि कमरगामा जिला मधेपुरा से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं रवि जी?
1: बिल्कुल सही है सर, ठीक है बराबर। मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ सर, लगभग 5 दशक पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ।
0: जी जी
1: जिस समय निवेदन है कार्यक्रम गुंजे बिहार लोक दोनों पर आधारित फरमाइशी गीत आपकी पसंद शिशु महल जिस समय देता था उसी समय से मैं सुनता आ रहा हूँ।
0: जी चलिए, इन सब कार्यक्रमों का जिक्र आपने किया, उसमें से एक कार्यक्रम अभी भी चल रहा है गूंजे बिहार, मंगलवार को रात्रि 10 बजे इसका प्रसारण होता है, आप सुन रहे होंगे।
1: जी सर, अफसोस है कि मोबाइल ऐप से पूर्ण रूप से कार्यक्रम सुना नहीं जाता है, इसलिए कभी मोबाइल में डाटा नहीं तो कभी चार्ज नहीं, इसलिए मैंने मन बनाया है कि अगले दिन रेडियो खरीदूंगा। रेडियो तो मिलता ही नहीं है मार्केट में, बड़ी मुश्किल से एक दुकान में मिला
0: जी।
1: तो उनसे बात हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उपलब्ध है रेडियो, तो मैं अगले दिन जाऊंगा
0: जी
1: लेके आऊंगा, तो मैं पूर्ण रूप से कार्यक्रम सुनूंगा।
0: बिल्कुल, उसमें दोनों सिस्टम आजकल रहता है, बैटरी से भी चलने वाला और बिजली से भी, तो दोनों वाला लीजिएगा, जब जरूरत जैसी हो उसके हिसाब से आप अपना रेडियो
1: हाँ हाँ
0: चलाइएगा।
1: सर, अब तो बिल्कुल दोनों सिस्टम आता है।
0: जी चार्जेबल भी होता है।
1: जी
0: बहुत अच्छा, कार्यक्रम से जुड़े रहें, सुनते रहें, और अब बताइए क्या सुनने का मन है?
1: जी सर, दादा फिल्म का गीत है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
0: ठीक
1: सर आपका अगर इजाजत हो तो एक दो दोस्त का मैं नाम लेना चाहूँगा।
0: जी बोलिए।
1: जी कमरगामा का सुरेंद्र राम और अभिमन्यु जनरल स्टोर का हरदेव मंडल के लिए मैं ये गाना

0: मुजफ्फरपुर जिला से बोल रहा हूँ।
1: क्या शुभ नाम हुआ आपका?
0: एंडी लियाकत।
1: लियाकत जी, स्वागत है आपका। क्या करते हैं?
0: जी पढ़ाई करते हैं,
1: क्या पढ़ रहे हैं बताइए।
0: अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखवाए हैं।
1: अच्छा, और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ करते भी
0: पढ़ाई
1: हैं?
0: के अलावा खेती बाड़ी करते हैं।
1: अच्छा, मैंने खेत में काम आप कर लेते हैं, विद्यार्थी हैं,
0: जी
1: खेत में काम आपसे हो पाता है
0: जी हो पाता है।
1: जी? ऐसे तो कुछ बताइए, खेत में क्या क्या कर सकते हैं आप, कर पाते हैं?
0: जी थोड़ा बहुत सब्जी उगा लेते हैं, और अभी मकई रोपे थे, काटवा लिए।
1: मकई की फसल अच्छी हुई?
0: जी हुई थोड़ा बहुत। सब्जी
1: और सब्जियों में क्या है?
0: में जैसे करेला, घेवड़ा, कद्दू, बैंगन, ये
1: चल
0: सब है।
1: चलिए, बढ़िया है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, उपलब्ध होता है घर के लिए भी और बाज़ार में बेचने के लिए
0: जी
1: भी,
0: जी जी
1: तो बहुत अच्छा है। खेती बाड़ी से जुड़ा रहना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, साथ ही पढ़ाई आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और जो कुछ भी करना चाहते हैं आगे कीजिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपने फ़ोन किया है, क्या सुना है आपको?
0: कुछ भी सुना दीजिए।
1: कुछ भी?
0: अच्छा सर,

0: नमस्कार सर, हम अरवल जिला प्रसादी इंग्लिश से बोल रहे हैं।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: हम नारायण सिंह बोल रहे हैं सर।
1: जी जी, नारायण सिंह जी, स्वागत है आपका, कहिए।
0: बहुत दिन पर लगा है सर हमारा फोन, तो और सब तो ठीक ठाक है सर। सोन किनारे घर पड़ता है जी, सोन नदी है, अरवल जिला औरंगाबाद वाला रोड में।
1: अच्छा, अरवल जिला में सोन के नजदीक घर है आपका।
0: पटना औरंगाबाद रोड है,
1: तब तो नजदीक ही, आप बहुत दूर नहीं है
0: जी।
1: तो आप हमारे रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं?
0: बहुत सुनते हैं, हम 69 साल से सुन रहे हैं सर।
1: अच्छा,
0: बहुत हम बहुत रुचि रखते हैं।
1: क्या क्या सुनते हैं बताइए?
0: बहुत कुछ सुनते हैं सर, फरमाइशें तो आपका सबसे मेन चीज है, और उसके अलावा जो है से कि फरमाइशी है, और 7:30 के समाचार है, और इसी तरह का जो है से कि चौपाल पाल खेती गृहस्थी वाला, खेती हम करते करते हैं थे, तो अब तो हमारा परिवार ही या नहीं रहता है, सब गए रहता है लोग, हम रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी, लेकिन रेडियो की छोड़ते नहीं हैं हम। हमको तो सुनवा दीजिए सर, हीर रांझा का जो गाना है, दो दिल टूटे दो दिल हारे।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर,
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी हम रमेश बोल रहे हैं,
0: जी कहाँ से?
1: मोतीपुर मुजफ्फरपुर।
0: मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं रमेश जी, स्वागत करते हैं आपका। कुछ बताइए अपने बारे में, आपने पहली बार कॉल किया है?
1: जी नहीं, आज तीसरी बार है।
0: अच्छा, पहले हमारी बातचीत हुई है। ठीक है, तो फिर से एक बार अपना काम धाम बताएं हमें, हम कुछ याद कर लें आपको।
1: जी मेरा तो सिलाई से जुड़ा हुआ काम है, सिलाई करता हूँ।
0: अच्छा, तो अभी तो व्यस्त होंगे आप, लगन का समय चल रहा है।
1: हाँ जी व्यस्त तो है।
0: ऐसे में रेडियो सुन
1: हाँ
0: लेते हैं।
1: जी सर, रेडियो सुनता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आपका रेडियो से आता है। और सुबह सुबह जो चिंतन आता था वो चिंतन आजकल आता नहीं है।
0: बिल्कुल आता है, आज भी चिंतन का कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, हर दिन आता है ये 5:50 पर।
1: और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम आता है, वो तो बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम आता है। लेकिन
0: जी ठीक है, आप इन कार्यक्रमों का आनंद लें, लाभ लें। अभी आपने फोन किया है, क्या सुनवाए आपको?
1: ये सुनाइए, उपकार फिल्म का, बस में वादे प्यार वफा, बातें बातें।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: हेलो, गुड आफ्टरनून सर
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताइए, क्या
1: जी। हाजीपुर जिले से बोल रहे हैं, सज्जाद
0: नाम हुआ जी? सज्जाद जी, क्या करते हैं आप
1: जी। सर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वही काम धाम कर लेते हैं जी। दिन भर रेडियो ही सुनते हैं।
0: दिन भर? रेडियो ही सुनते हैं। चलिए, अच्छा है। क्या क्या सुनते हैं वही बताइए।
1: यही न्यूज सुन लेते, थोड़ा सा आपका हेलो फरमाइश ये सुन लेते हैं, और फिर से रात में खेती गृहस्थी का वो शाम 7 बजे से होता है ना, वो सुन लेते।
0: इन सब कार्यक्रमों का लाभ कुछ होता है जीवन में आपको?
1: माइंड फ्रेश रहता है, दिमाग शांत
0: जी
1: रहता
0: जी
1: है।
0: बढ़िया, अच्छा है। चलिए, दिमाग अगर फ्रेश हो जाता है तो कुछ बेहतर सोचिए, बेहतर करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। हमारी बहुत सारी शुभकामना है। रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। क्या सुनवाया जाए आपको, बोलिए।
1: एक फिल्म का गाना सुना दीजिए, साल सुताल मिला।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर
0: जी, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: जमिया चक बिलसरा से, पोस्ट कस्बा थाना सम्मोगन जिला बका।
0: नाम बताइए।
1: बलबीर यादव।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: क्या हो रहा है बताइए।
1: अभी तो खेती गृहस्थी हो रहा है।
0: क्या है अभी
1: फसल तो मूंग लगाए हैं।
0: मूंग के बाद फिर कटनी और उसके बाद धान?
1: ना ना, मूंग के बाद तो फिर तो बितरा उतरा समय आएगा तो वो खेती करेंगे।
0: मूंग के बाद क्या फिर होगा?
1: धान का खेती लेंगे।
0: बढ़िया, अभी समय है, इसमें मानसून आने में देर है अभी।
1: हाँ, मौसम तो सर बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। हाँ, रुक रुक के बारिश पड़ रहा है सर, 2 दिन में 3 दिन में रुक वेव मार के।
0: तो इससे आपकी फसल को नुकसान नहीं ना है?
1: नुकसान तो है सर, ये जो बोरिंग से पटा दिया ना, पटौने के बाद तो बारिश से मूसलाधार दे रहा है 2 दिन 3 दिन में रुक रुक के, इसलिए नुकसान तो थोड़ा है, क्या करेंगे।
0: हाँ, सिंचाई के बाद फिर बारिश होगी।
1: जी, मैं अपना मम्मी को बोल रहा हूँ कि मत पटाओ, समाचार में बारिश बता रहा है, मतलब नहीं मना, मम्मी मेरा पटा दिया।
0: तो मौसम विभाग की सूचना पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 दिन का इंतजार जरूरी था आपके लिए। और सभी किसानों से ये कहना चाहेंगे कि ये मौसम की जो सूचना है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस सूचना पर आपको थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। और अगर मन कर गया कि नहीं दिक्कत हो रही है, पटाना जरूरी है, तो थोड़ा कम पटाना चाहिए था।
1: वो तो सर, जो मेरा मम्मी ने मनमाना पुनी दिलवा दिया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं मम्मी को रोक रहा हूँ, मम्मी ने बात रखता है सर, इसलिए जो भी थोड़ा दिक्कत हो गया, मुंह में सर्दी हो गया।
0: चलिए, कोई बात नहीं है।

0: उसकी भरपाई हो सकती है करने की कोशिश, भरपाई उसकी करने की कोशिश कीजिए, कुछ बचाव अगर हो सकता है आपके नज़र में कुछ है ऐसा उपाय तो करें। और अब बताइए क्या सुनवाया जाए आपको।
1: सुनेंगे सर तो सुनेंगे, ये फिल्म का गाना सुनना है, दिल ऐसी का नाम फिल्म का,

0: से 1:30 के बीच कॉल कीजिए और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612-22-22500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं रेणु कुमारी और प्रमोद कुमार पंकज। पहले सुनिए रेणु कुमारी से लोक भजन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे रेणु कुमारी और प्रमोद कुमार पंकज। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए रूपक।
1: आइए सुनते हैं विशेष रूपक। मैं वैशाली हूं। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर किशोर सिन्हा।

बलशाली हुई। आज तेज आंधियों एक बार फिर मुझ पर पड़ी मिट्टी को झकझोरा है। आज फिर अतीत की यादें ताजा हो आई है। ये आंधियां कभी भी सोने नहीं देती। जब भी चैन से आंखें मूंदता हूं आंधियां जगा देती हैं।

काल चक्र घूमता रहा, समय की धूल उड़ती रही, गिरती रही, दबती रही, अपने सीने में अनगिनत साक्ष्यों को छुपाए मैं समय की गति निहारता रहा। आज पूरे विश्व में न जाने कितनी सभ्यताएं भूली भली और मिट्टी में दफन हो गई। मैंने भी कितने युग देखे, कितनी सभ्यताएं देखी। आज एक बार फिर अतीत के पन्ने फड़फड़ा उठते हैं,

0: अरे मेरे प्रांगण में कुछ पर्यटक आए हैं और उनके साथ आई है मुझे चाहने वाली सूत्रधार, जो मेरे अतीत और वर्तमान को सामने रखकर मेरी महत्ता प्रतिपादित करती है। वो पर्यटकों को सुना रही है।
1: वैशाली में उत्खनन का कार्य अभी भी चल रहा है। ये देखिए बसाड़ है। राजा विशाल का गढ़ से 1 मील दक्षिण एक मिट्टी की दीवार के अवशेष कोसा गांव से लेकर धरहरा गांव तक पाए जाते हैं। ये प्राचीन वैशाली नगरी के प्राकार के अवशेष मालूम

0: सूत्रधार ने तो खंडरों के बारे में बताना प्रारंभ किया, लेकिन मेरा अतीत बहुत पुराना है, इसे तो और दूर जाना चाहिए, और गहराई में बात को समझाना होगा।
1: वाल्मीकि रामायण में भी तो वैशाली का वर्णन है।
0: अरे इसने कैसे मेरे मन की बात सुन ली? अब सूत्रधार को बताना ही होगा।

0: उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। इक्ष्वाकोस्तु नरव्याक्र पुनः परम धार्मिकः अलम्बुषाया मुत्पन्नो विशाला इति विश्रुतः तेन चाक्षेदे स्थाने विशालेति पुरी कृता। रामायण में ही विशाला के नाम से इसका और इसके संस्थापक तथा उसके वंशजों की वंशावली मिलती है। विशाल, हेमचंद्र, सुचंद्र, ध्रुमाश्व, सृंजय, सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त, काकुलस्थ और सुमति। विशाला नरेशों के संबंध में महर्षि विश्वामित्र ने ये कहा है कि वे सब इक्ष्वाकों की कृपा से दीर्घायु, महात्मा, वीर्यशाली और धार्मिक हुए। वैशाली में ही देवों और दानवों ने समुद्र मंथन की मंत्रणा की थी। यही दिति की तपस्या का वर्णन है और इंद्र को मारने वाले पुत्र दिति की तपस्या का विफल होना भी वर्णित है। पुराणों में वैशाली के लिए विशाल, विशाला तथा वैशाली ये तीन नाम दिए गए हैं।
1: अतीत की ये बातें कितनी सुखद है। अब उस दृश्य को मैं देख रहा हूं जब मेरे कुंड ग्राम में वर्तमान महावीर का जन्म हुआ।
2: देखो देखो मुख पर कितनी चमक है।
3: हाँ बहन, चमक क्यों ना हो। जिनकी माता विशाल है, जिनके कुल विशाल हैं, जिनका जिन विशाल है, ऐसे पुत्र की चमक तो सूर्य से भी बढ़कर होगी। पिता भी तो नायक सिद्धार्थ हैं और पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं।
0: अतीत के पन्नों को और आगे पलटा जाए इससे पूर्व इसके वर्तमान स्वरूप को भी जान लेना चाहिए। ये क्षेत्र गंगा की सहायक नदी गंडक के पास अवस्थित है। इसमें मोटे तौर पर आधुनिक बिहार राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण एवं पश्चिम चंपारण के जिले, इनसे सटे नेपाल के तराई भाग तथा समस्तीपुर क्षेत्र सम्मिलित है। इस इतिहास प्रसिद्ध क्षेत्र की राजधानी वैशाली की पहचान बसाड़ एवं इसके आसपास के गांवों से की जाती है। इनमें बसाड़, हरपुर, चक्रामदास और कम्मन छपरा वैशाली जिले में हैं और बनिया, महुआ, वीरपुर और बासोकुंड मुजफ्फरपुर जिले में हैं। कुछ ही किलोमीटर पश्चिम गंडक नदी बहती है।
4: वर्तमान वैशाली और पुराने वैशाली में तो बहुत अंतर है। पुराने वैशाली का इतिहास तो बहुत पुराना है, क्या इसे विस्तार से बताएंगी?
0: क्यों नहीं। वैशाली का प्राचीनतम काल यानी प्रारंभिक काल लगभग ईसा पूर्व 725 वर्ष पुराना है। प्रथम लिच्छवी गणराज्य 725 ईसा पूर्व से 484 ईसा पूर्व माना जाता है। मगध का प्रभुत्व 484 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व तक, द्वितीय लिच्छवी गणराज्य करीब 125 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत तीरभुक्ति की प्रादेशिक राजधानी 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, तीरभुक्ति की द्वितीय राजधानी श्वेतपुर, विभिन्न राजवंशों की संघर्ष स्थली 550 ईस्वी से 1097 ईस्वी तक और तीरभुक्ति राज्य की तृतीय राजधानी सीमारामपट्टन। वैशाली क्षेत्र का ह्रास 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक।
4: ये तो बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन है। यानी वैशाली का अतीत बड़ा ही शानदार और घटनाओं से भरा हुआ है।
0: हाँ, वृज्जी संघ या लिच्छवी संघ ने शक्ति और सम्मान में अपने पूर्वी पड़ोसी विदेह को पछाड़ दिया था। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ एवं भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में वृज्जी संघ का प्रमुख राज्य के रूप में उल्लेख है, किंतु विदेह की चर्चा वहाँ नहीं है। किन परिस्थितियों में वृज्जी संघ की स्थापना हुई इतिहास इस पर मौन है। विद्वानों का विचार है कि विदेह में जनक वंश के अंतिम राजा कराल जनक के समय में उसके अत्याचारों के कारण जब क्रांति हुई तब वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हुई।
4: वैशाली के गणतंत्र की रचना

0: और उसकी विशेषता के बारे में भी कुछ बताइए।
1: वैशाली का वृज्जी संघ अपने गणतंत्री संविधान के लिए प्रसिद्ध है। गणतंत्री राज्य को गण या संघ कहते थे। चूंकि लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, इसलिए इसे लिच्छवी गण भी कहते थे। केंद्रीय कार्यपालिका में राजा, उपराजा, सभापति और भांडागारिक होते थे। 9 गणराज्यों की भी एक समिति होती थी, जो विशेषकर पर राज्य विभाग देखती थी। केंद्रीय विधानमंडल को संस्था कहते थे। जहाँ इसका अधिवेशन होता था, उसे संस्थागार कहते थे। इसके सदस्यों की संख्या 7,707 बतलाई गई है। प्रत्येक सदस्य राजा कहलाता था और उसे एक उपराजा, एक सभापति एवं एक भांडागारिक दिए गए थे। प्रत्येक सदस्य का अभिषेक होता था। इस उद्देश्य से एक अभिषेक मंगल पुष्करणी थी। इसके जल से अभिषेक नहीं होने पर राजाओं का अभिषेक संपूर्ण नहीं माना जाता था। जल को लिच्छवी राजाओं के अतिरिक्त दूसरा कोई छू नहीं सकता था। पुष्करणी के भीतर और बाहर बड़ा जबरदस्त पहरा था। राजा यानी राष्ट्रपति न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विद्वानों का विचार है कि गौतम बुद्ध ने अपने संघ का संविधान वृज्जी संघ, मल्ल संघ एवं शाक्य संघ को देखकर ही बनाया था।
2: मेरी गोद में घूमने वालों को सूत्रधार अच्छी और सही बातें बता रही है। मैं देख रहा हूं कि महावीर 30 वर्ष मेरे प्रांगण में बिताकर तपस्या पर निकल पड़े हैं। बारह वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बहुत बार मेरे प्रांगण में आए और जब उनकी अवस्था 71.5 वर्ष हुई, तब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या को वे पावापुरी में कालगत हुए। तब पावा कुशीनगर के 9 मल्लों, वैशाली के 9 लिच्छवियों और काशी कोसल के 18 गण राज्यों ने दीपोत्सव की व्यवस्था की थी।

मगध में उस समय हर्यंक कुल का राज चल रहा था। इसके संस्थापक बिंबिसार का एक विवाह वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की कन्या चेलन्ना से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र अजातशत्रु घोर महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी था। उसने लंबी लड़ाई लड़कर वैशाली के प्रथम लिच्छवी गणराज्य का अंत कर डाला। मुझे आम्रपाली के वो नृत्य और अजात शत्रु का आतंक आज तक याद है।

0: वैसे मगध साम्राज्य का जब पतन होने लगा तब द्वितीय लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई। फिर इसे गुप्त साम्राज्य की प्रादेशिक राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। उसने वैशाली का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा। वैशाली विभिन्न राजवंशों की संघर्ष स्थली भी रही।
1: वैशाली के प्राचीन वैभव और अतीत के खंडहरों से तो हम गुजर चुके, अब इस नए वैशाली में जो उत्खनन के कार्य हुए हैं उनके बारे में भी तो बताइए, और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं?
0: वैशाली के कुछ भागों में उत्खनन के कार्य हुए हैं। सम्राट अशोक के समय में बनाया गया अशोक स्तंभ खुदाई से निकला है। इस स्तंभ के ऊपर बैठा हुआ शेर आपको दिखाई पड़ेगा। सन 1958 में इसी भाग में खुदाई हुई तो बुद्ध की अस्थियां एक बर्तन में प्राप्त हुई। इसे बहुत संजोकर पटना के म्यूजियम में रखा गया है। अभिषेक पुष्करणी तो आप सामने देख ही रहे हैं। चार मुखी महादेव भी यही खुदाई से प्राप्त हुए हैं। बनिया स्थान में ये स्थल है। नगर की चार दीवारी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। राजा विशाल के गढ़ के पश्चिम बसार के पश्चिमी भाग में एक पोखर है जिसे लोग बौना पोखर कहते हैं। उसके उत्तरी भिंडे पर एक पुराने मंदिर में बहुत सी गुप्त एवं पाल युगों की मूर्तियां रखी हुई मिलेंगी जो काले पत्थर की बनी हुई है। राजा विशाल के गढ़ से थोड़ी ही दूर दक्षिण पश्चिम में ईंटों के एक स्तूप का खंडहर है जिस पर 15वीं सदी के मुस्लिम सूफी संत शेख मोहम्मद फैजुल्लाह काजिन सुत्तारी की दरगाह बनी हुई है। इसे लोग मीरन दरगाह भी कहते हैं। पालकालीन कार्तिकेय की मूर्ति, खरौना पोखर, बुद्ध स्तूप, कम्मन छपरा के चतुर्मुख महादेव, कोलुआ का अशोक स्तंभ इत्यादि कई दर्शनीय स्थल वैशाली में है। एक वैशाली संग्रहालय भी है।
2: शती ईस्वी पूर्व में वैशाली प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका महत्व गुप्त काल तक था, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह
0: डॉक्टर उर्मिला संत अधीक्षण पुरातत्वविद
2: यात्री फाहियान एवं वेनसांग ने भी क्रमशः 5वीं व 7वीं शती में इस स्थान का भ्रमण किया था। भारतीय इतिहास में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर वैशाली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह संसार में प्रथम गणराज्य के रूप में जाना जाता है। भारत में यह प्राचीनतम एवं बड़े राज्यों में से एक था। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का यह जन्म स्थल है। संभवतः वैशाली बुद्ध के क्रियाकलापों के कारण अधिकतम प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने कपिराज के हाथों मधु का दान स्वीकार किया था। यह बुद्ध के जीवन की अष्ट महाघटनाओं में से एक है जिसे बौद्ध ग्रंथों में वैशाली चमत्कार के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पहली बार बुद्ध द्वारा स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। बुद्ध के अवशेषों के 8 भागों में से एक भाग इस गणराज्य को भी प्राप्त हुआ था, जिसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बनाया गया जो आज रेलिक स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है।
3: यहाँ भीमसेन का पल्ला और मरमसोना स्तूप भी तो है।
0: हाँ, ये दोनों स्थल भी हैं। वैशाली में अब तक 6 बार खुदाई हो चुकी है। पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-64 ईस्वी तथा 1881 ईस्वी में अन्वेषण कार्य के सिलसिले में वैशाली के इलाके में डेरा डाला और बसार से कोलुआ तक खोज कर विवरण लिखा। उसने राजा विशाल कराल को केवल देखा ही नहीं, इसे मापा भी। उसने गढ़ की ऊंचाई 1580 फुट तथा चौड़ाई 750 फुट लिखी है। 1903 और 1904 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के टी ब्लाश नामक एक अधीक्षक ने वैशाली में सर्वे कर यहाँ अच्छे ढंग से उत्खनन किया। ब्लाश के बाद 1913-14 ईस्वी में डीवी स्पूनर ने भी खुदाई करवाई और उन्हें अधिक प्राचीन वस्तुएं तथा कुछ और मिट्टी की मुहरें मिलीं। उत्खनन का लंबा इतिहास है और आज तक यह चल रहा है। यहाँ शांति स्तूप का भी निर्माण किया गया है।
2: तो अब अनेक उत्खनन से यह प्रमाणित हो चुका है कि वैशाली का क्षेत्र काफी विस्तृत था, जिसमें वर्तमान ग्राम बसाड़, जो राजा विशालगढ़ का किला भी जाना जाता है, कोलुआ, बेनिया, चक्रमदास, लालपुर एवं वीरपुर सम्मिलित हैं, जो वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले में है। कई स्थानों पर समय समय पर अनेक विद्वानों एवं संस्थानों द्वारा उत्खनन कराया गया, जिनमें

0: कनिंगम, बेगलर एवं ब्लोच, स्पूनर, कृष्णदेव अलतेकर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा एवं पटना अंचल प्रमुख हैं। इन उत्खनन में अनेक महत्वपूर्ण भग्नावशेष प्रकाश में आए। राजा विशाल का गढ़ एक विशाल किला था। खरौना पोखर, जो प्राचीन अभिषेक पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध था, का जल अनेक राजाओं के राज्याभिषेक के समय प्रयोग किया जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण खोज रेलिक स्तूप के नाम से जानी जाती है। उत्खनन के समय यहाँ से सोप स्टोन का अस्थि मंजुष्ठा मिली है, जिसमें राख के साथ शंख, दो छोटे शीशे के मनके, स्वर्ण पत्र एवं तांबे का आहत सिक्का मौजूद है। कोलुआ ग्राम में अशोक कालिंग सिंह शीर्ष युक्त स्तंभ है, जो मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इस स्तंभ के उत्तर में ईंटों से निर्मित सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप मिला है, जो संभवतः कपि द्वारा भगवान बुद्ध को शहद अर्पित करने की घटना की स्मृति में बनवाया गया था। इस स्तूप के चारों ओर वोटिव स्तूप पाए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं द्वारा मनौती के रूप में समय समय पर बनवाए गए। स्तूप एवं स्तंभ के बगल में एक आयताकार तालाब मिला है, जो मरकट हिंद के नाम से जाना जाता था। इस तालाब में पुरुषों एवं स्त्रियों के नहाने के लिए अलग अलग घाट बने हुए थे। इस तालाब के दक्षिण में कुटागार शाला मिली है, जहां भगवान बुद्ध वैशाली आने पर रुका करते थे। इसके साथ ही स्वस्तिक आकार के 12 कमरों का भिक्षुणी विहार मिला है, जिसमें प्रसाधन कक्ष का भी प्रबंध है। ध्यान देने योग्य बात है कि यही वो स्थान है जहाँ पहली बार स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसके उत्खनन के फलस्वरूप अनेकों पुरावशेष प्रकाश में आए, जैसे मानव व पशुओं की मृण्मय मूर्तियाँ, मिट्टी के बने खिलौने, मनके एवं मृण मुद्राएँ। कोलुआ उत्खनन में प्राप्त एवं वैशाली के आसपास के क्षेत्रों में मिले पुरावशेष पुरातत्व संग्रहालय वैशाली में प्रदर्शित हैं।
1: यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है और पटना से इसकी दूरी क्या है?
2: वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। वैशाली से पटना हवाई अड्डा 50 किलोमीटर दूर है और हाजीपुर रेलवे स्टेशन मात्र 35 किलोमीटर पर है। वैशाली से मुजफ्फरपुर और हाजीपुर सड़क मार्ग से भी जुड़ा है और सड़कें काफी अच्छी हैं। ठहरने के लिए वैशाली में टूरिस्ट बंगला और टूरिस्ट यूथ हॉस्टल है।
0: कोलुआ में दर्शकों की सुविधा के लिए पाथवे का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उद्यान शाखा द्वारा पर्यावरण सुधारने के लिए उद्यान लगाया जा रहा है। कुटागार शाला, स्वस्तिक विहार एवं स्तूप का संरक्षण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा के लिए जन सुविधाओं का निर्माण करवाया जा रहा है।
3: सूत्रधार ले तो अतीत और वर्तमान के स्वरूप की पूरी चर्चा सुना दी। पर्यटक भी खुश है, लेकिन मैं अतीत की स्मृति में खो गया। सुना यही उत्पन्न हुआ था, किसी समय वो राजकुमार त्याग दिए थे जिसने जग के भोग विलास, राज श्रृंगार, जिसके निर्मल जैन धर्म का देश देश में हुआ प्रचार, तीर्थंकर जिस महावीर के यश अब भी गाता संसार। है पवित्रता भरी हुई इस विमल भूमि के कण कण में, मत कह क्या हुआ यहां इस वैशाली के आंगन में। महावीर के 5 महाव्रत आज भी कानों में सुनाई पड़ते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,

मैं वैशाली हूं। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे मोहन सिंह रावत, अंजलि रानी, अभय सिन्हा, मौसमी प्रकाश, अशोक कुमार सिन्हा, ध्रुव कुमार और नीलेश्वर मिश्र। प्रस्तुति सहायक थे सुधांशु कुमार। इसके लेखक थे डॉक्टर शंकर प्रसाद और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर किशोर सिन्हा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया,

0: 30% आरक्षण का कानून बनाया, लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों विभागों स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।
3: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
4: जी हाँ।
3: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
4: माती रे,
3: ए माती रे, मोरो मोते,
4: मोरो मोते,
3: माती के,
4: माती के,
3: सुमिलो,
4: सुमिलो,
3: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते, जीवन, ए माती ते, ज नहीं बोलना इसको, ज बोलना, ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
4: सोबी,
3: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी, आकी आकी, दो बार आकी, आकी आकी, मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आका हार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आका ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो।

0: दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ख खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आगे है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, मातिर बुकुत, मौनोर मालोती, बुटोलो मौनोर मालोती बुटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मौरो मौते। फिर दूसरा अंतरा है मौनोर
1: मौनोर
0: कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी
1: आजी।
0: इतना हो गया ना
1: जी।
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा,
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना
1: जी।
0: हुंदौर
1: हुंदौर
0: खुदीनौर
1: खुदीनौर,
0: खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर
1: खुदीनौर,
0: नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि
1: दृष्टि
0: शनि सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि,
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ,
0: आगे ना
1: जी, जी।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा।

ऐसे बोलना एक बार और दूसरे ना हुआ, दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना, खून दौर से लो, एक दो तीन चार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवित गान शिक्षा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। नमस्कार राष्ट्रीय की ओर से दुनिया की सभी माओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शर्ट के टूटे बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर सिर्फ माँ में ही होता है।

सब तरह की दीवानगी से वाकिफ हुए हम, पर माँ जैसा चाहने वाला जमाने भर में न था। दवा अगर काम ना आए तो नज़र भी उतारती है, ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है।

मेरी माँ किसी इत्र से कम नहीं। माँ के होने से घर 24 घंटे खुशबू की तरह महकता है।

चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है मैंने।

तू है तो मेरा वजूद है माँ, खुद रह जाती है भूखे पर पेट भर हमें खिलाती है, जीवन भर साथ हमारा निभाती है माँ।

अंत में यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ है, जब माँ ने गोद में उठाया तो मैंने आसमान को छुआ है। मतलब भरे इस जमाने में जो बिना मतलब के प्यार करती है, वो है माँ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित प्रारूप प्रपत्र 1 पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई निर्धारित की है। आयोग के अनुसार आपत्तियों के निपटारे से असंतुष्ट रहने पर अपील वाद दाखिल किया जा सकता है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं प्रारूप 1 का अंतिम प्रकाशन 15 जून को किया जाएगा। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रखरखाव में अनियमितता के मामले में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह राज्य के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत विश्व

0: व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री शर्मा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के क्षेत्रों सहित प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में परिवर्तन से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के NH 139 पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री झा ने हत्या, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम ने झीलिया मोहल्ले में 1,82,00,000 रुपए की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरा करने की पहल शुरू की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार पुलिस में 15,000 से ज़्यादा ओहदों पर स्पेशल असिस्टेंट पुलिस सैप के मुआहदों पर तकरीर की जाएगी। इसका अमल 1 जून से शुरू होगा। पुलिस हेडक्वार्टर ने जवानों की तकरीरी के लिए पटना ज़िला के दानापुर कैंट वाक़ सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल यूनिट बनाया है। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक तकरीरी अमल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को बिहार का मुस्तकिल बाशिंदा होना लाजमी है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इंतखाब के लिए शाये खाका फॉर्म 1 पर एतराज़ दर्ज करने की आखिरी तारीख 18 मई तय की है। कमीशन के मुताबिक एतराजात के निपटारा से गैर मुतमईन रहने पर अपील दाखिल की जा सकती है। इस अपील का निपटारा भी 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं फॉर्म 1 की आखिरी अशात 15 जून को की जाएगी। रियासत में पुलों के तहफ्फुज और उनके रखरखाव में बेजाबतगी के मामलों में इंजीनियर और उससे मुतालिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा तामीरात सड़क के सेक्रेटरी पंकज कुमार पॉल ने बताया कि पुलों के मेयार और तहफ्फुज के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कौमी शाहराह की निगरानी करने वाले इदारों को पुलों का हिफाजती ऑडिट करने की हिदायत दी है। तमिलनाडु में TVK पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय ने आज सुबह रियासत के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के लीडर की हैसियत से वज़ीर-आला के ओहदा का हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर लोकसभा में हिजब मुखालिफ के लीडर राहुल गांधी और दीगर मुआज़िज़ लोग मौजूद थे। इधर असम में भाजपा के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के कानून साजिया का लीडर मुंतखब किया गया है। जनाब शर्मा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। वजारत तालीम गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में हिंदुस्तानी जबान मौसम गर्मा कैंप का इनेकाद करेगी। एक हफ्ता का ये कैंप हिंदुस्तानी जबानों में बुनियादी गुफ्तगु को सीखने, अल्फाज को जानने, अपना तारुफ देने, हकीकी ज़िंदगी की बातचीत और सकाफत की तारीफ पर मरकूज़ होगा। इसका मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक जामे और यकसां तालीम के नुक्ते नज़र को फ़रोग देना है। मगरबी हवा के असर से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। आज सुबह राजधानी पटना, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर समेत आसपास के इलाकों

0: में हल्की बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सीमांचल के इलाकों समेत रियासत के शुमाल मगरिब और जनूब मशरकी हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बादल गरजने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में तब्दीली से रियासत के कई ज़िलों में कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया जी में कम अज़ कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में कम अज़ कम दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। अरवल ज़िला के मेहंदिया थाना हलका के कौमी शाहराह 139 पर दो गाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार दीगर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। सीवान के एसपी पूरन कुमार झा ने कहा है कि जरायम कंट्रोल में लापरवाही किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िला के सभी थाना इंचार्जों और दीगर पुलिस अफसरान की मीटिंग में जनाब झा ने कत्ल, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेज़ी से चार्जशीट दाखिल कर जरायम पेशों को सज़ा दिलाने की हिदायत दी। मगरबी चंपारण के बेतिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने झिलिया महल्ला में 1,82,00,000 रुपए के तखमीना से 3 अहम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की पहल की है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9,175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित

कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और डी के लिए स्टोनोग्राफर के कुल 731 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमि

0: टीका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और

0: योद्धा के विशेष केंद्र हैं।
1: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।

0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म शर्मिली का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार है नीरज, संगीतकार एसडी बर्मन।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म गैम्बलर में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार एस डी बर्मन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: लीजिए सुनिए नेहा भसीन को, फिल्म का नाम है सुल्तान।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को फिल्म का नाम है रज़िया सुल्तान। गीतकार हैं जानेसार अख्तर, संगीतकार खयाम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मनचाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मनचाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहर टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है, अब सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू।

0: अरे 10 लाख रुपया है कहाँ और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
1: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
0: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
1: तुमने कहा था ना मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
0: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
1: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
0: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
1: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
0: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। हे भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन्हीं को दारुण दुख से

0: माजी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी?

0: अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
1: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
0: तो चले क्या? अच्छा, कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना। कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
1: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
0: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
0: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
0: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
0: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
0: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
0: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
2: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो होशियार।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच

0: कुली कुली।
1: Oh, damn it! इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेस बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: माँ, मदर, मम्मी, वेर आर यू? ओ सिली ओल्ड लेडी।
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला। क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, आज फिर क्यों सॉन्ग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूंछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूंछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावटी नहीं, असली मूंछें हैं, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम।
2: हाँ।
0: हेलो, हाउ डू यू डू? यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछें और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूर अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल सिंगाराम, ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा? बदमाश चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा, कुछ नहीं मालूम है तुझे? कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चक

क्योंकि एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है। इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी माजी,
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला, नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? मैं।

0: माँ जी, ये कुमार स्वामी है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसे नहीं चाकू भोंका, तब ये कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। इन कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था।

0: यह सिंगाराम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है। क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊँ, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
2: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
2: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
2: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
2: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
1: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
2: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993

0: साहेबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
3: जी।
2: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
3: अरे बाप रे।
2: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
3: ये लो।
2: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
3: हीरोइनें भी हैं,
2: हीरोइनों के भी डेटे हैं और ठहर गए।
3: अब
2: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
3: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
2: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
3: कनेक्शन
2: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
3: अरे गजब।
2: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर में 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ, मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे।
1: हाँ।

0: रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी। कुलदीप जी आ जाते थे बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले,

0: विपटा के लोग वहां पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जौहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जौहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीजें। अगर आप चाहे तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जौहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो। उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जौहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में? तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे। बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे?
1: हाँ
0: लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। आप मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने। अब साहब उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है। बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए? मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है?
0: कहानी नहीं।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह ले हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लो, मान गए। यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे हैं, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज ए राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू
0: कर दिया।
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल,
0: मशाल, मशाल का।

0: अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था।
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यशी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब का
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: इंग्लिश का आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से। जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए इन्होंने।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत खुश और स्वस्थ होंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज का ये रविवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उन अनगिनत एहसासों को सलाम करने का दिन है जो माँ शब्द में समाये हुए हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम माँओं को समर्पित रहेगा। गीतों की मिठास भी होगी, श्रोताओं के संदेशों की गर्माहट भी और भावनाओं के साथ स्वरांजलि भी।
1: आज हर गाने से पहले हम आपको सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं की ओर से उनकी माँ के लिए भेजे हुए कुछ स्पेशल मैसेजेस, कुछ प्यारी शब्द और कुछ अनकही जज्बात।
0: वाह! और श्रोताओं, यही नहीं, संडे स्पेशल यानी स्वरांजलि में भी आज हमारे श्रोताओं ने अपनी माँ के लिए बेहद सुंदर कविताएं और भावनाएं भेजी हैं, जिन्हें हम आपके साथ शेयर करेंगे।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे जानेंगे जॉब अपडेट्स, कुछ रोचक तथ्य और एक बहुत जरूरी चर्चा, वर्ल्ड लुपस डे, ताकि मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता भी बनी रहे।
0: तो श्रोताओं, तैयार हो जाइए अगले कुछ पलों के लिए, जहां हर बात में होगा अपनापन, हर गीत में होगी यादों की खुशबू और हर एहसास में होगी हमारी माँ।
1: और श्रोताओं, अगर आप इस वक्त अपनी माँ के साथ बैठे हैं तो याद रखिए, बस उनकी तरफ एक बार देख करके मुस्कुरा दीजिए। यकीन मानिए, उनकी पूरी दुनिया वहीं बसती है।
0: क्या बात कही है आपने अंजलि। चलिए श्रोताओं, इसी खूबसूरत एहसास के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा संदेश हमारी एक श्रोता की ओर से, जिन्होंने अपनी माँ के नाम लिखा है।
2: नाम पार्थ त्रिपाठी है और मेरी मम्मी का नाम चंपा त्रिपाठी है। मैं आज इस मदर्स डे के बेहद खास मौके पर अपनी मम्मी को कुछ कहना चाहता हूँ कि जो माँ होता है ना, माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ बिना कहे हर दर्द समझ लिया जाता है, बिना मांगे हर खुशी भी मिल जाती है। सच बोलूँ तो अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत रिश्ते भी बनाते हैं, लेकिन माँ जैसा रिश्ता जो होता है ना, वो ना कभी था और ना कभी होगा। मम्मी, शायद मैं कभी आपको ये खुलकर नहीं बता पाया कि आप मेरी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आज इस मंच के जरिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जिंदगी में कुछ बन पाया या मेरे अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है या मैं किसी मुकाम पे खड़ा हूँ, तो वो सिर्फ आपकी वजह से और मेरे पूरी परिवार की वजह से है, लेकिन उसमें आपका योगदान बहुत है। जब से मैं छोटा था और मैं गिर जाता था, तो आप ही थी जो पहले दौड़ कर आती थी और मुझे संवारती थी। जब बुखार आता था तो पूरी रात खुद नहीं सोती थी, मेरे को सुलाती थी, और आज भी मेरी आवाज़ से आपको पता चल जाता है कि मैं कितना उदास हूँ, कितना खुश हूँ, कितना क्या हूँ। तो सबसे पहले आपको ही महसूस होता है। और मुझे याद है मम्मी कि कई बार आप अपनी ज़रूरतों को दबाती थी बस इसलिए कि मेरी छोटी छोटी विश जिससे मुझे खुशी मिलती है वो सब पूरा कर सकें, और आज भी आप वही करते हो। आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा भगवान से सब कुछ मांगा है। एंड ऑनेस्टली, नो मैटर हाउ ओल्ड वी ग्रो, नो मैटर हाउ स्ट्रांग वी प्रिटेंड टू बी, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको सिर्फ अपनी माँ की गोद में ही सुकून मिलता है। माँ आप मेरी पहली टीचर भी हैं, पहली दोस्त भी, और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी हैं। कभी कभी मैं गुस्सा कर देता हूँ, कभी कभी आपकी बात भी नहीं सुनता, लेकिन दिल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और आपने जीवन में अपने जितना भी कष्ट और परेशानी झेली है, आपके हर एक कष्ट और परेशानी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे जीवन में मैं आज जहाँ पर भी हूँ वो सब आपकी वजह से ही हूँ। आज मदर्स डे पर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि थैंक यू।

में, थैंक यू फॉर एवरी सेक्रीफाइस, एवरी प्रेयर एंड एवरी स्माइल जो आपने सिर्फ मेरे लिए की। बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी मुस्कान कभी ना कम हो और आपको जीवन में और कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। और आखिर में दुनिया में चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन माँ सिर्फ एक ही होती है। एंड हैप्पी मदर्स डे मम्मी, आई लव यू सो मच, थैंक यू एंड धन्यवाद आकाशवाणी पटना।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे तारे जमीन पर फिल्म से शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना। दोस्तों वक्त हो गया है कार्यक्रम के उस खास हिस्से का जहां कुछ शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर हमारे दिल पर बहुत गहरा होता है।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रेरक पंक्तियों की। आइए अब सुनते हैं आज की प्रेरक पंक्ति।
0: मुश्किलों से डर कर अगर रुक जाओगे, मुश्किलों से डर कर अगर रुक जाओगे तो सपनों तक कैसे पहुंच पाओगे। हौसला रखो, हर दिन नई राह बनेगी, आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी।
1: वाह निशा, सच में क्या बात कही है आपने। दोस्तों जिंदगी में रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं।
0: हाँ अंजलि, ऐसा होता तो है, क्योंकि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना।
1: तो दोस्तों खुद पर भरोसा रखिए, हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए।
0: बिल्कुल, और इसी खूबसूरत सोच के साथ हम बढ़ते हैं हम आगे और सुनाते हैं आपको अगला हमारे स्पेशल मैसेज जो कि हमारे लिसनर ने हमें भेजा है।
2: दोस्तों मेरा नाम शिवानी है और मैं मोतिहारी के एक छोटे से गांव से बोल रही हूँ। सो आज है मदर्स डे, तो मैं अपनी प्यारी माँ के लिए प्यार और सम्मान से भरे दो शब्द बोलना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे माँ, आप मेरे लिए माँ नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और ताकत है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस खास दिन पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कितना कीमती है। मेरे बेहतरीन पल आपके साथ ही गुजरे हैं। हैप्पी मदर्स डे माँ।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे मैरी कॉम से ये गाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: श्रोताओं, अब समय है हमारे कार्यक्रम के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से का, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े एक ऐसे विषय की जिसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वर्ल्ड ल्यूपस डे, यानी विश्व ल्यूपस दिवस।
0: जी हाँ निशा, हर साल 10 मई को ये दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है लोगों में लुपस जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का नाम तक नहीं सुन पाते, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ल्यूपस होता क्या है। ल्यूपस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो हमें बीमारियों से बचाती है, वह गलती से शरीर के हेल्दी हिस्सों में असर डालने लगती है।
0: यानी शरीर खुद से ही अपने शरीर के खिलाफ काम करने लगता है, और इस वजह से इसका असर शरीर पर अलग-अलग अंगों पे आपको दिखने लगता है, चाहे वो त्वचा हो, जोड़ों का दर्द हो, किडनी हो, फेफड़े हो, कई बार दिल पर भी इसका असर देखने को मिलता है, और इसके कई लक्षण हो सकते हैं। तो निशा, आप बताइएगा।
1: अब अगर हम लक्षण की बात करें कि इसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इसके कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि लगातार थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द रहना, बार-बार बुखार आना, बाल झड़ना, त्वचा पर लाल चकते पड़ना, या धूप में जाने से ज्यादा परेशानी महसूस करना।
0: और कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य कमजोरी या मौसम का असर समझ के इग्नोर कर देते हैं।
1: हाँ
0: पर ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी समस्याएं लंबे समय तक अगर बनी रहे तो डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे वो बीमारी है या जो हम कहते हैं मौसमी बुखार।
1: ये तो है अंजलि। असल में अंजलि, कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका समय पर पता चल जाए तो उन्हें काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ल्यूपस भी उन्हीं में से एक है।
0: तो दोस्तों यही कारण है कि विश्व ल्यूपस दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहे और इलाज और देखभाल करें। और दोस्तों आपको भी आज ये पता चल गया है, तो आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखें।
1: हाँ, डॉक्टर्स के अनुसार अभी ल्यूपस का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है, लेकिन सही इलाज और देखभाल से मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं।
0: इसके लिए जरूरी है समय पर दवाइयाँ लेना, नियमित जांच करवाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और स्ट्रेस से थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, तनाव बहुत बीमारियों में हमारी बीमारी को और बढ़ा देता है, इसलिए जरूरी है कि तनाव से हम दूरी बनाकर रखें। और एक और बात, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि लंबे समय तक किसी बीमारी से जूझना मानसिक रूप से भी काफी कठिन हो सकता है।
0: ऐसे में हमारे परिवार, दोस्तों और समाज का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। कभी-कभी किसी की का साथ, किसी की हिम्मत बढ़ाने वाली बातें दवा से भी ज्यादा असर दिखाती है। तो दोस्तों याद रखिए, अपने आसपास देखिए और लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो सके।
1: बिल्कुल, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रखने लगे हैं। काम, पढ़ाई, मोबाइल और तनाव के बीच हम अक्सर शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपने सपनों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाएंगे।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज विश्व ल्यूपस दिवस पर हम बस यही संदेश, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, किसी भी परेशानी को हल्के में ना ले और समय-समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें।
0: क्योंकि सही जानकारी, सही समय पर इलाज और अपनों का साथ जीवन को बेहतर और आसान बना सकता है।
1: हाँ, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए।
0: तो दोस्तों इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं हमारा अगला संदेश।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि राज है, मैं पटना बिहार से हूँ। आज मदर्स डे के इस स्पेशल मौके पर मैं अपनी प्यारी माँ पुष्पा देवी के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ। माँ, तेरे ही उंगली से चलना सीखा, तेरे ही मार से डरना सीखा।

मेरे ही दुलार में प्यार दिखा, ना ममता में तेरी मिलावट है, मुझ पर तेरा प्यार निसार। आंखें खोलूं तो तेरा ही चेहरा दिखे, बंद करूं तो तेरा ही दुपट्टा मिले। लोग कहते हैं अच्छा करो जन्नत में जाओगे, उन्हें क्या मालूम हम तो रोज जन्नत घुमा करते हैं, अपनी माँ के गोद में सर रखकर सोया करते हैं। लव यू माँ, हैप्पी मदर्स डे।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से ये गाना।
1: माँ, माँ एक ऐसा शब्द है जिसे बोलते ही मन में अपने आप सुकून उतर जाता है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन माँ का प्यार हमेशा वैसा ही रहता है, निस्वार्थ, शांत और हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहने वाला।
0: सच कहा आपने निशा। माँ वो होती है जो खुद थक जाती है, लेकिन हमारे चेहरे की थकान पहचान लेती है। हम कभी अपनी परेशानियाँ छुपा भी लें, फिर भी माँ की नज़रें सब पढ़ लेती हैं।
1: और शायद इसी रिश्ते की खूबसूरती को महसूस करने के लिए हर साल मदर्स डे मनाया जाता है, ताकि हम अपनी माँ को सिर्फ धन्यवाद ना कहे, बल्कि उन्हें ये एहसास दिला सके कि वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
0: बचपन में जब हम गिरते थे तो सबसे पहले माँ ही आती थी दुलारने के लिए, और आज बड़े होने के बाद भी अगर मन कहीं टूटता है तो सबसे पहले माँ ही याद आती है।
1: ऐसा लगता है जैसे वो सामने रहती और उनको ज़ोर से गले लगा लेते। श्रोताओं, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो हमारी पहली दोस्त, पहली शिक्षक और पहली ताकत होती है। उनकी डांट में भी चिंता होती है और उनकी चुप्पी में भी हमारे लिए दुआएं।
0: और आज के इस खास अवसर पर आप भी अपनी माँ के पास हैं अगर, तो उनके पास जाइए, उनसे थोड़ा बातें कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। सच बता रही हूँ आपको, उनसे बातें करके जो खुशी आप उनको देंगे वो किसी महंगे तोहफे से भी ज़्यादा बढ़कर होगी।
1: बिल्कुल। और जिन श्रोताओं की माँ इस वक्त उनसे दूर है, तो बस आप एक छोटा सा काम करिए, उनको कॉल कीजिए। यकीन मानिए, आपकी आवाज़ ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।
0: चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अगला खास मैसेज।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं सहरसा बिहार का निवासी हूँ। आज मदर्स डे के मौके पर मैं अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, तुम मेरी दुनिया हो, तुमसे ही मेरा आज और कल है। मम्मी, माते या मैया, किसी भी नाम से तुम्हें बुलाऊं, पर तुम्हें माँ सुनना ही पसंद है। इसलिए मेरी प्यारी माँ के लिए आई लव यू माँ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा फिल्मी गीत, आवाज थी आतिफ असलम की। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंजलि।
1: और मैं हूं निशा। दोस्तों, आज का पूरा कार्यक्रम माँ के नाम समर्पित है और इसी खास अवसर पर अब वक्त है हमारे संडे स्पेशल सेगमेंट स्वरांजलि का।
0: जी हाँ दोस्तों, स्वरांजलि सिर्फ शब्दों का मंच नहीं है बल्कि भावनाओं की वो दुनिया है जहां दिल की बातें सीधे आवाज बनकर आपके सामने आ जाती है।
1: क्या बात कही है अंजलि आपने। दोस्तों, माँ शब्द की व्याख्या करने के लिए हमेशा शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर भी हर दिल उन्हें अपने अपने अंदाज में महसूस करता है। किसी के लिए माँ दुआ है, किसी के लिए हिम्मत और किसी के लिए पूरी दुनिया।
0: तो दोस्तों, आइए इस खूबसूरत एहसास को और ज्यादा बढ़ाते हैं और सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको हमारे श्रोताओं की भावनाओं से सजी आज की सुरांजलि, उनकी माओ के नाम।
2: नमस्कार, मेरा नाम है मध्यंका राज और मैं कवित्री हूँ। सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ। इसके पीछे का सारांश यही है कि किस तरीके से एक बेटी जब हॉस्टल लाइफ में जाती है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने घर के सारे ऐशो आराम को छोड़कर जब हॉस्टल जाती है तो अपनी माँ से शिकायतें करती है। अपने दुनिया भर के जमाने भर के लोगों की शिकायतें वो अपनी माँ से करती है, अपने तकलीफ़ों की शिकायतें वो अपनी माँ से करती है। तो उसकी जो पंक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार है कि कूलर में सोने वाले को पंखे में कहाँ नींद आती है, तुझे कैसे बताऊँ माँ तेरी याद मुझे किस कदर रुलाती है, तेरे पास रहकर तेरा प्यार पाया है माँ।

0: पर तुझसे दूर रहकर मुझे तेरी याद बहुत सताती है, और दुनिया भर से मैंने इतना ही सीखा है कि एक तू ही है जो मेरे साथ सच्चा रिश्ता निभाती है। तेरी डांट का मैं पलट कर जवाब दे दिया करती थी, पर यहाँ किसी के डांटने पर तेरी बेटी सहम जाती है, और दुनिया से मैंने बस इतना ही सीखा है कि एक तू ही है जो मेरे साथ सच्चा रिश्ता निभाती है। तेरे सामने ये आंसू दिखाना नहीं चाहती, तेरे सामने ये आंसू दिखाना नहीं चाहती, पर तुझसे दूर रहकर मुझे तेरी याद बहुत सताती है, और तेरी गोद में जो जन्नत मिलती थी सोने पर, वो हॉस्टल के बेड पर बिल्कुल नहीं मिल पाती है। तेरे हाथ के बनाए खाने से मैं मुंह फुलाया करती थी, पर यहाँ जो मिलता है तेरी बेटी वो चुपचाप खा जाती है। तुझे कैसे बताऊँ माँ, तेरी याद मुझे किस कदर रुलाती है। धन्यवाद श्रोताओं, और अपनी माँ के लिए जो मेरा मैसेज है, मैं यही कहना चाहूँगी कि मम्मी आप मुझ पर पूरा भरोसा रखना। आपने जो कहा है, आपने जो सपने देखे हैं मेरे लिए, मैं उसे पूरा करूँगी, और सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी वो सारे सपनों को पूरा करूँगी। एक दिन आपकी बेटी आपके खुशियों का कारण बनेगी, अभी भी हूँ, पर आगे भी आपका और पापा का दोनों का नाम गर्व से ऊंचा करूँगी। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और मेरी प्यारी माँ शोभा, जिनके नाम का अर्थ है सुंदरता, आकर्षण, गरिमा। मेरे पिताजी कहते हैं नाम व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है, और मेरी माँ इस कथन की सबसे सुंदर उदाहरण है जो हर रचना की सुंदरता बढ़ाती हैं। इन दिनों मेरी माँ और मेरे बीच कुछ मीलों का फासला जरूर है, परंतु वो मेरे हृदय के सबसे करीब हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैं महसूस करती हूँ वो अधिकतम लोग महसूस करते होंगे। माँ हर किसी के जीवन में अलौकिक भूमिका निभाती हैं। उनका निस्वार्थ भाव से हर प्राणी, हर वस्तु को प्रेम करना जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचय कराती है। हम सभी की पहली मित्र, हाँ, हमारी पहली मित्र हमारी माँ होती है ना? स्कूल से आकर उनसे सारी बातें साझा करना, ना आते हुए भी उनके हर कार्य में हाथ बटाना, और उनसे पूरी रात कहानियां सुनना, जो केवल एक कहानी नहीं, हमारी खुशनुमा जीवन की दास्तां होती। मातृ दिवस के अवसर पर आप सभी से कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी, जो हर कोई कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे, जो कुछ इस प्रकार है। माँ, माँ शहर की रातें लंबी होती, ना तारे, ना मिट्टी की खुशबू, ना ही पवन की शीतल लहरें हैं, परंतु आपकी तस्वीर मेरे कमरे को घर बना देती, और हाँ, बालकनी को बगीचा। मैं यहाँ किताबों में भविष्य ढूंढती, और आप हमारे आशियाने में खुशियाँ। आप कहती थी ना, सोनू कुर्सी को धीरे रखो, उन्हें भी चोट लगती, पंखे को शुक्रिया करो, पूरी रात हमारे लिए जगती। अब हर रोज प्रकृति को नमन, कुदरत को प्रणाम करती हूँ माँ। माँ, आपकी हाथों की मिट्टी से खिलते हैं फूल और भगवद गीता के श्लोक। आप जब पन्ने पलटती हो, मानो प्रभु स्वयं हमारे आंगन में पाठ सुनने को आए हों। आपकी उंगलियों से बगिया महकती है, और आपकी हंसी से पूरा घर खिल उठता है। माँ, एक जीवन को जिंदगानी बनाना चाहती हूँ। भोर की पहली किरण आपके गोद में देखूं, पक्षी पौधों को साथ कहानियां सुनाऊं, यामिनी की आंचल में सितारों को साथ सुमार करूं। माँ, एक जीवन को आपके साथ जिंदगानी बनाना चाहती हूँ। मातृ दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंततः मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी माँ के आसपास हैं तो जाइए, उनकी आंचल में लिपट जाइए, उन्हें नमन कीजिए, अपने प्रेम को हर रूप में व्यक्त कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप जीवन के भाग दौड़ में बाहर निकलेंगे, उस दिन जीवन बेरंग लगने लगेगी। ना उनके रसोई की खुशबू, ना ही उनके पायल की झनकार आपके शहर गूंजेगी। तो हर पल का लुत्फ उठाइए, उन्हें एहसास दिलाइए, उनसे स्वादिष्ट पकवान कोई और नहीं बना सकता, और ना ही कोई उनसे अधिक भागीदारी रखता है जीवन को जिंदगानी बनाने में। धन्यवाद।
2: माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया का प्यार बसा होता है।

माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर दिन हमें नए हौसले के साथ जीना सिखाती है। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि पलक है। कुछ पल बहुत खास होते हैं और ये मदर्स डे भी मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मेरी माँ कुछ समय से अस्वस्थ थी और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, बिल्कुल पहले की तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और जैसे हमेशा आपकी उपस्थिति से माहौल खुशनुमा हो जाता था, वो चेहरे की चमक और वो खुशी हमेशा बरकरार रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और जहाँ तक माँ की बात हो ही रही है, तो अपनी नानी और दादी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज नानी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें, उनका लाड प्यार, उनका आशीर्वाद सदा के लिए हमारे साथ है। उनका मैं हृदय से शुक्रिया करती हूँ। और दादी को मैं यही कहूँगी कि दादी, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। और जब भी आपसे बात होती है और जब आप ये कहती हैं कि ठीक बारू ना, तो मन आनंद से भर जाता है। और आज इस अवसर पर अपनी तीनों माओं को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपनी माँ को मैं यही कहूँगी कि माँ, आपके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। और अंत में कुछ अपनी लिखी पंक्तियों के साथ उनका आभार है, तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। माँ प्यार है, माँ यार है, माँ प्यार है, माँ यार है, माँ हौसलों की बयार है, माँ प्रकाश है, माँ रत्न है, माँ प्रकाश है, माँ रत्न है, माँ खुशियों की सौगात है, माँ खुशियों की सौगात। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक प्यारा सा फिल्मी गीत, आवाज थी सुनिधि चौहान की। दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है रोजगार सूचनाओं का।
4: दोस्तों, CRPF ने ट्रेड्समैन और टेक्निकल कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। इसमें 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ आपको संबंधित ट्रेड की सर्टिफिकेट भी जरूरी है। आगे की जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.crpf.gov.in। अंतिम तिथि है 19 मई 2026।
3: श्रोताओं, SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा हिंदी सीनियर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम, हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए आप उनका वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन के लिए डिटेल जानकारी आप www.ssc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
4: अगली भर्ती है SSC की तरफ से ही। SSC ने ग्रेड सी और ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन ऑनलाइन होगा और इसमें 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही इसकी न्यूनतम आयु है 20 वर्ष और अधिकतम आयु है 30 वर्ष, और ग्रुप डी के लिए अधिकतम आयु है 27 वर्ष। तो दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि है 15 मई 2026। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.ssc.gov.in पर। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अपना अगला स्पेशल मैसेज।
5: मेरा नाम मानसी मोना है और आज मदर्स डे के इस खास अवसर पर मैं अपनी मम्मी श्रीमती कुमारी नूतन रानी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मम्मी, आपने हमारे लिए शुरुआत से लेकर आज तक जो भी कुछ किया उसके लिए मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। आपका प्यार, आपकी मेहनत, आपका त्याग, ये सब हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं सच में खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूं कि आप मेरी मम्मी हो। थैंक यू सो मच मम्मी फॉर एवरीथिंग एंड आई होप दैट यू गेट ऑल द लव दैट यू हैव ऑलवेज शोन टू मी।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना।
1: तो श्रोताओं, अब समय है हमारे रोचक तथ्य का, जिसे सुनकर आप हमेशा ही कहते हैं, ओहो हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और आज का रोचक तथ्य बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम अपने पुराने भारत की झलक को याद करने जा रहे हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी समय था पुराने भारत में जब साइकिल चलाने के लिए भी हमें लाइसेंस बनवाना जरूरी होता था।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज हम बाइक और कार के लाइसेंस की बात करते हैं, लेकिन साल 1940 से लेकर 1960 के दौर में कई शहरों में साइकिल का भी लाइसेंस बनता था।
0: और सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, बल्कि हर साल उसका रजिस्ट्रेशन और टैक्स भी जमा करना पड़ता था।
1: उस समय अगर कोई बिना अनुमति या लाइसेंस के साइकिल चलाते पकड़ा जाता तो उसका चालान भी कर सकता था, जैसे आज हम देखते हैं कि कोई कार या फिर बाइक चलाते तो उनका चालान कटता है।
0: हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फीस जमा करने के बाद पीतल या एल्युमिनियम का एक छोटा सा टैग या बिल्ला दिया जाता था।
1: जिसे साइकिल के फ्रेम या हैंडल के पास लगाना जरूरी होता था, ताकि पता चल सके कि साइकिल रजिस्टर्ड है।
0: बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप अपनी गाड़ियों पे या बाइक्स पे लगाते हैं ना
1: नंबर
0: नंबर प्लेट।
1: प्लेट।
0: तो और रात में साइकिल चलाने समय पता है निशा, लालटेन या फिर लाइट की व्यवस्था करना भी जरूरी था, ताकि वो छोटा सा बिल्ला या टैग क्लियर दिख सके।
1: यानी अंजलि, उस दौर में भी ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता था।
0: सच में आज के समय में ये बात सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें पुराने भारत को और खास बनाती हैं।
1: अंजलि, आप सोचिए, अगर आज भी साइकिल का लाइसेंस बनता तो शायद लोग ड्राइविंग स्कूल की जगह साइकिलिंग स्कूल जाते।
0: ये तो बात सही कही आपने निशा। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की आखिरी ट्रैक की ओर।

0: तो श्रोताओं, मदर्स डे पर तो श्रोताओं मदर्स डे पर आधारित आज का ये कार्यक्रम, ये विशेष प्रस्तुति अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। उम्मीद है आज के गीत, संदेश और भावनाएं आपके दिल को छू पाई होगी।
1: आज हमने माँ के उस प्यार को महसूस करने की कोशिश की जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती हैं, जो बिना कुछ कहे हमारी हर बात को समझ जाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इसके साथ ही आपके इतने सारे मैसेजेस से आपकी माँओं को भी बहुत खुशी हुई होगी।
1: बिल्कुल अंजलि, अभी तो हम लोगों ने प्रोग्राम में इतनी सारी बातें की है ना, और साथ ही हमारे कई लिसनर्स ने अपनी अपनी माँ के लिए संदेश भेजा, तो क्योंकि हमारी माँ भी प्रोग्राम सुन रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी माँ के लिए कुछ ऐसे दिल की बात कहे जो शायद हम नहीं कह पाते हैं।
0: वाकई निशा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, तो चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं।
1: नहीं नहीं अंजलि, पहले आपसे।
0: चलिए ठीक है। तो मम्मी, तुम मेरी लाइफ का सबसे कूल और सबसे प्यारे इंसान हो। तुमने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका या टोका नहीं, हमेशा मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, हर सपने में मेरा साथ दिया। और ऑनेस्टली, वीडियो गेम्स खेलने वाली मॉडर्न मम्मी किसको मिलती है? तुम यूनिक भी हो और स्पेशल भी, और तुम मेरी सिर्फ माँ ही नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो।
1: वाह क्या बात कही है, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो गेम खेलने वाली मॉडर्न मम्मी। अंजलि, तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपनी मम्मी को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। तो मम्मी, जैसे कि अभी आज मैंने प्रोग्राम किया और इससे भी पहले मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि शायद मैं ये सब कभी नहीं कर पाती, शायद मेरी भी लाइफ ना बहुत नॉर्मल होती अगर तुम नहीं होती मेरे साथ। तुम अगर मुझे बताती नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच रहना चाहिए, किस तरह से अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अगर तुम मुझे ही वो सारी चीज़ें नहीं बताती तो शायद मैं बहुत नॉर्मल रहती, पढ़ाई करती, घर जाती, कोई नॉर्मल सा जॉब होता मेरे पास और बस ज़िंदगी यहीं हो जाती। बट तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत हौसला दिया कि कुछ अलग करो, क्योंकि सब लोग वही करते हैं, और मैं आज थोड़ा बहुत जो भी कर पा रही हूँ कुछ अलग कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर तुम शहर नहीं आती हम लोगों को लेकर, तो शायद मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
0: हैप्पी मदर्स डे मम्मी।
1: हैप्पी मदर्स डे।
0: दुनिया में सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें बता

0: सकते हैं, आप अपने फीडबैक और सजेशंस हमें मेल कर सकते हैं।
1: हमारा मेल आईडी है feedback@patna@gmail.com। अब इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ अब सचमुच हमें दीजिए इजाजत।
0: तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से ही बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारती में पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता बंधु, आई भारती में अमित कुमार पाठक सँ हुनक स्वरचित काव्यक आनंद लऽ सकब, संगहि सुरेंद्र नारायण यादव गीत सुनौता। मुदा आओ पहिने किछु गपशप कऽ लै छी। श्रोता, समाज में परिवारक स्थान सबसे ऊपर अछि। परिवार समाजक आधार आ विकासक पहिल ओ स्थान थिक जतय नेना लोकनि के नीक संस्कार, नैतिकता आ सांस्कृतिक मूल्यक शिक्षा भेटैत अछि, जाहिसँ सभ्य समाजक निर्माण होइ छै। परिवार सदस्य के भावनात्मक सुरक्षा, प्यार, सहारा आ आर्थिक मदद करैत अछि। श्रोता, जँ समाज में परिवारक महत्वक गप करी तऽ जीवन मूल्य आ सांस्कृतिक बढ़ावा परिवारे दैत अछि। परिवार में नेना अपन परंपरा, धर्म आ सामाजिक रीति रिवाज सीखैत अछि आ अपन अगला खाड़ी के ओ सिखबैत अछि। परिवारक माहौल, संस्कार आ पालन पोषण सँ व्यक्तिक चरित्र निर्माण होइ छै आ ओहिसँ व्यक्तित्व निर्माण होइ छै। परिवारक प्यार आ सहयोग जीवनक संघर्ष, दुख आ तनाव के कम करैत अछि। ओहिसँ मानसिक स्थिरता आ खुशी भेटै छै, जे जीवनक सफलताक लेल जरूरी थिक। एकटा मजबूत परिवार समाज में प्रेम, सहयोग आ भाईचारा के बढ़ावा दैत अछि, जाहिसँ संपूर्ण समुदाय में सामंजस्य बनल रहै छै। परिवारेसँ नेना लोकनि के जिम्मेवार नागरिक बनबाक लेल प्रेरणा भेटै छै आ ओ अनुशासन सीखैत अछि। श्रोता बंधु, परिवार व्यक्तिक सफलताक आधारे टा नहि थिक, एकटा खुशहाल आ अनुशासित समाजक निर्माण सेहो परिवारक मजबूती पर निर्भर करैत अछि। श्रोता, आब गप पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण के लेल गाछ वृक्ष हमरा लोकनिक मित्र अछि। गाछ वृक्ष सँ जीवनदायिनी वायु भेटैत अछि, संगहि ई दूषित वायु के शुद्ध करैत अछि, बढ़ैत तापमान के कम करैत अछि, वन्य जीव के आश्रय दैत अछि। बढ़ैत जनसंख्या आ शहरीकरणक कारण गाछ वृक्षक संख्या घटते जा रहल छै। एहि कारण सँ ई जरूरी जे हमरा लोकनि वृक्षारोपण तऽ करबे करी, छोट गाछ के नमहर हुअ धरि ओकर देखभाल करब सेहो जरूरी अछि। श्रोता, जँ गाछ वृक्षक देखभालक गप करी तऽ नमी बनौने रखबाक लेल भोर साँझ पानि पटाबी, गाछक नीक बढ़बा लेल जैविक खादक उपयोग करी। गाछ जहन छोट रहै छै तऽ माल मवेशी ओकर पात के खा जाइ छै, ओहि समय गाछ के बचेबाक लेल ओकरा घेर कऽ राखी। समय समय पर माटिक क्यारी के खुरपी वा कोनो आन चीज वस्तु सँ माटि के कोरि दी, जाहिसँ जड़ि के हवा भेट सकै। श्रोता, हमरा लोकनि के अपन जीवन में कम से कम 10 टा गाछ जरूर लगाबी आ ओकरा बचेबाक लेल जिम्मेवारी ली। गाछ लगेबाक लेल एकटा योजना थिक, एक पेड़ माँ के नाम। आइ ओना मातृत्व दिवस छै, मदर्स डे, तऽ ई योजना जे छै से समय अनुकूल अछि। एहि योजना सँ जुड़ि हम अपन धरती के हरियर बना सकै छी आ जहन हरियर धरती रहत गाछ वृक्ष के कारणे।

0: ता निश्चित रूपे हमर प्रकृति जे छथि से हमरा सबके स्वस्थ राखब में, चाहे प्रकृति के दिस से जे हमरा सबके हवा भेटैत अछि, पानि भेटैत अछि, से सब स्वच्छ रहत आ हमरा लोग के निरोग बनल रहब। श्रोता, कार्यक्रम दिस बढ़ी, आओ पहिने सुनी सुरेंद्र नारायण यादव से ई गीत।
1: भल हर भल हरी

0: श्रोताई छलथि सुरेंद्र नारायण यादव सुना रहल छलथि विद्यापति गीत कार्यक्रम में हिनका से खन आर गीत सुनब हम लोकन। आओ एखन सुनी अमित कुमार पाठक से हुनक स्वरचित किछु काव्य।
1: हमर पहिल रचना अछि छाह भरल मुँह पर छदमक समूह पर छाह भरल मुँह पर।

बास खन आकाश शिव माथ खन बिराजे, बास खन आकाश शिव माथ खन बिराजे, बसे सबक जीह पर हृदय के डीह पर, बस

हाथे परान अगबे, चान एहन चान ने गुमान अगबे, चान एहन चान ने गुमान अगबे।

अजगुत अनूप को ना दुनिया मनई छै, जैन कोन विद्या की जादू जनई छै। अजगुत

चान एहन चान ने गुमान अगबे, चान एहन चान ने गुमान अगबे। हमर दोसर रचना,

माथ कते तैल धुनैत रहलैया, यह अदौसा होइत रहलैया, यह अदौसा होइत रहलैया। के अछि एहन कहू ककरा में आब ने, के अछि एहन कहू ककरा में आब ने, सबटा अछैत भऽ गेल हो लहब ने, के अछि एहन।

अदौसा होइत रहलैया, यह अदौसा होइत रहलैया। गज गज करैछ ककरो घर लोक वेदसँ, ककरो

लैया, यह अदौसा होइत रहलैया, यह अदौसा होइत रहलैया। सब हक जड़ि जो संतोख रहे मोन में, सब हक जड़ि जो संतोख रहे मोन में, फेर ने ओ छिछियात कतौ अकाबन में। सब हक जड़ि जो संतोख रहे मोन में, फेर ने ओ छिछियात कतौ अकाबन में। ज्ञान तो गुरुर ने, गुरुर तो ज्ञान ने, चांद तो सुरुज ने, सूरज तो चांद ने।

0: यह अदोसा होत रहलैया, यह अदोसा होत रहलैया।
1: श्रोताई छलथि अमित कुमार पाठक, काव्य पाठ सुना रहल छलथि, हिनका धन्यवाद दियनि। आउ हमरा लोकनि फेर से सुनी सुरेंद्र नारायण यादव से ई अगिला गीत।

श्रोताई छल लग्नी जे सुना रहल छलथि सुरेंद्र नारायण यादव। श्रोता, एखन बहुत रास सड़क दुर्घटनाक समाचार सुनबामे आबैत हैत, तैं लऽ कऽ जे छै से सड़क पर चलऽ काल कनि बेसी सावधान रहऽ पड़ै छै आ खास कऽ यातायात के नियम के पालन करब सुरक्षा के खातिर बड़ जरूरी अछि। दुपहिया चालक जे छथि हुनका लेल हेलमेट आ चारपहिया चालक के लेल सीट बेल्ट जरूरी थिक। नशा पान केला के बाद गाड़ी जुइन चलाबी। गाड़ी चलाबऽ काल गति सीमा पर अवश्य ध्यान दी, खास कऽ भीड़ भाड़ वाला जगह पर, चाहे चौक चौराहा हो, चाहे बामा चाहे दहिना घूमऽ काल में गाड़ी के गति के एकदम कम कऽ कऽ राखी। ट्रैफिक लाइट आ ट्रैफिक पुलिसक जे निर्देश होइ छै तकर पालन अवश्य करी। गाड़ी चलाबऽ काल मोबाइल फोनक उपयोग नहि करी। सड़क के कात में जे संकेतक बनल रहै छै तकरा सेहो ध्यान में राखी आ ओहि अनुसारे गाड़ी चलाबी। सड़क पर जे जेब्रा क्रॉसिंग बनल रहै छै ओ पैदल यात्री के सड़क पार करबा के लेल रहै छै, तैं लऽ कऽ ओहिठाम गाड़ी के गति के अत्यंत कम कऽ दी। श्रोता, कहल जाइ छै जान है तो जहान है, नहि पहुँचऽ से बढ़िया देर से पहुँचनाइ, तैं लऽ कऽ सतर्क भऽ गाड़ी चलाबी आ सुरक्षित मंजिल धरि पहुँची। आ श्रोता, आओ एक बेर फेर हमरा लोकनि सुरेंद्र नारायण यादव से गीत सुनै छी।

श्रोता छलथ सुरेंद्र नारायण यादव सुना रहल छलथ मिथिला गीत। आ श्रोता आजुक भारती में एतबे, अगला कार्यक्रम में फिर भेंट घाट हेतै, गपशप हेतै। ता धरि पवन के विदा दियौ, नमस्कार।

अभी आपने मैथिली कार्यक्रम भारती सुना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता, ये जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:20 पर हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

चौपाल कार्यक्रम का वक्त है 6:30। 7 बजे हम चर्चा करेंगे खेती गृहस्थी की। प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे 7:30 पर। नमस्कार, 47 पर सुनेंगे जिले की हलचल। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे 7:52 पर, और 8:30 पर भी आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे। आठ बजकर 45 मिनट पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर उर्दू समाचार खबरें। रात्रि 9:30 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर फ्यूचर। रात्रि 10 बजे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार का वक्त है, और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे। श्रोता, ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण को आइए सुने फिल्म राजा में। इस गाने को लिखा समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

कुमार शानू की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म टक्कर का ये गाना। इस गाने को लिखा था माया गोविंद ने और धुन तैयार की थी अनु मलिक ने। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।
1: श्रूयंताम प्रवाचकः ललित मोहन तिवारी।

0: नमस्कार उदय भाई,
1: नमस्ते आनंद भाई।
0: कहा समाचार?
1: सब बढ़िया बा आनंद भाई, सब ठीक ठाक बा।
0: उदय भाई, हमने चौपाल में नित नया विषय पर बात करवे करी, जे विषय मिल जाए चौपाल चौपाल है, बात कही शुरू हो जाए। आज बात कही जाए कुछ अलग हटके।
1: आज इशारा हम समझ रहल बनी हमनी का जे मुर्गा बा ओकर जे व्यावसायिक उपयोग बा,
0: हाँ हाँ
1: चूंकि आय के एक साधन के रूप में पोल्ट्री जे बा मुर्गा के जो उत्पादन बा, ये अब एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने
0: बिल्कुल
1: आई।
0: बिल्कुल सही बात। अच्छा, रोजगार तो सबसे जरूरी चीज है, आ ओकरा में पोल्ट्री के व्यवसाय बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एकरा बारे में हमनी के चर्चा करना, बताना श्रोता सब के बहुत जरूरी भी
1: आनंद भाई, अभी अपने यहाँ हिंदुस्तान में
0: है।
1: 5 लाख मीट्रिक टन इतना हमने का मुर्गा के मांस के खपत बा।
0: खपत हो रहा है।
1: ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा देशी मुर्गा के ज्यादा खपत बा, और शहरी क्षेत्र में जो हमने का हई जो खाइले
0: फार्म
1: बॉयलर
0: वाला
1: बॉय
0: जैसे
1: हाँ
0: बॉयलर।
1: फार्म बॉयलर जगह कहिले, और उकर सबसे ही बा कि प्रोटीन जे हमने के शरीर के चाहिए, प्रोटीन उपलब्धता के दाल तो जे एक विकल्प बा से बढ़ले बा, लेकिन ओकरा बाद जे सबसे ज्यादा जौन विकल्प के रूप में उपयोग होए वाला खाद्य सामग्री बा ओमे चिकेन बा मुर्गा बा।
0: तब यदि पोल्ट्री व्यवसाय में खास करके मुर्गा पालन यदि करल जाए तो एकरा में कुछ चुनौती है, कुछ सावधानी है जो बरते के चाहिए। आज बात कर जाए खास करके एकरा रोग के बारे में, जो कि मुर्गा के बारे में कहल जाए कि टुनकी धर लेलक, टुनकी धर लेलक। आ टुनकी धर लेलक तो समझा कि मुर्गा मुर्गी पटपटा के मर जाए पूरा बाड़ा साफ। तो चर्चा आज मुर्गी के रोग के बारे में, मुर्गी में मुख्य रूप से रानीखेत यानी न्यू कैसल, कोक्सीडियोसिस, बर्ड फ्लू और फाउल पॉक्स जैसन बीमारी होबा है।
1: अच्छा।
0: ये सब बीमारी में मुर्गी के सांस लेवे में दिक्कत, सुस्ती, हरा या खूनी दस्त और गर्दन टेढ़ा होना जैसन प्रमुख लक्षण है। ये सब बीमारी से बचे लगी टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, स्वच्छ आवास और बीमार मुर्गी के तुरंत अलग करना बहुत जरूरी हो जाए। रानीखेत रोग एगो प्रमुख रोग है मुर्गियन के, ई बड़ी घातक रोग है। एकर लक्षण है खांसी, छींक, गर्दन टेढ़ा होना, हरा रंग के दस्त होना और फिर 40 से 50% तक मरे के भी समस्या हो जाए। कोक्सीडियोसिस आंत के परजीवी बीमारी है। एकर लक्षण है खूनी या पानीदार दस्त, सुस्ती और वजन कम होना। फाउल पॉक्स भी एगो ऐसन बीमारी है जे कि वायरस से फैला है और एकरा में त्वचा पर दाना और छाला जैसन दिखाई पड़ा है। हैजा भी मुर्गी के प्रमुख बीमारी है। एकरा में मुर्गी के शरीर के तापमान बढ़ जाए, सुस्ती आवा है और सांस लेवे में तकलीफ होवा है। साल्मोनेला या पुलोरम नामक बीमारी में चूजा में दस्त होवा है और फिर मृत्यु दर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मुर्गी एगो ऐसन जीव है जेकर पालन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरते के जरूरत है।
1: हाँ। आनंद भाई, ई तो बात भइल बीमारी के, बचाव कैसे कइल जाओ, कैसे वहाँ सबके सुरक्षा दियाओ मुर्गियन के, यह बारे में कुछ बात जानल आवश्यक होला। स्वस्थ जो मुर्गी होला ओकरा से यदि कोनो एह तरह के बीमारी से मुर्गी मर जाओ तो ओकरा से अलग कइल पहिल का काम हमनी के करे के
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: सही बात है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है
1: पहला काम ई
0: हाँ,
1: करी
0: जो
1: कि
0: रोगग्रस्त
1: यदि
0: मुर्गी ओकरा
1: हाँ
0: अलग
1: रोग
0: करल जाए।
1: हाँ हाँ ओकरा के अलग कर दी। मुर्गी के जोन दरवा बा जोन ओकरा के घर जमा रहेला वो जा पानी के बर्तन और जे ओकनी के रहे खातिर हमनी के बीच
0: बेड
1: उपाय
0: बिछावन
1: करी।
0: लगावल गेले
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ ओकरा के हमेशा साफ सुथरा रखे के चाहिए, और ओकरा पर जीवाणु नाशक दवा के छिड़काव भी
0: अच्छा
1: आवश्यक
0: अच्छा
1: रूप से
0: अच्छा
1: करे के
0: जरूरी
1: चाहिए।
0: है।
1: हाँ, मुर्गी के समय समय पर दाना में पानी में एंटीबायोटिक्स विटामिन्स आ खनिज लवण देला से उनका रोग रोग के जे
0: प्रतिरोध
1: प्रतिरोध
0: क्षमता
1: क्षमता

0: बढ़ाए।
1: बढ़ावल जा सकेला। मुर्गी के प्रमुख बीमारी से बचावे खातिर उनका टीकाकरण भी उचित समय में कैला
0: बिल्कुल।
1: आवश्यक होला। फिर जोन मुर्गी अंडा देवे आनंद भई, ओकरा में कृमि से बचाव खातिर दवाई के उपयोग भी करे के चाहिए। मरल मुर्गी, मुर्गी के मलमूत्र, गिरल पंख, टूटल अंडा, जे ओकरा उस सब के जे सामान्य मुर्गी बारी सन ओकरा से दूर रखे के चाहिए, या फिर ओकरा के नष्ट कर देवे
0: अब
1: के
0: एगो
1: चाहिए।
0: बात तो यह है उदय भाई कि कोई भी लक्षण मुर्गी के बीमारी में नजर आ जाए तो ओकरा क्वारंटीन कर देवे के चाहिए, और साथ साथ विशेषज्ञ अथवा विशेष चिकित्सक से
1: हाँ
0: तुरंत संपर्क करके इलाज के व्यवस्था करे के चाहिए। यदि महसूस होवे कि मुर्गी के लकवा हो रहे है, त तेजी से वजन कम हो रहे है और सांस लेवे में तकलीफ हो रहे है, लगातार दस्त हो रहे है, खड़ा होवे में असमर्थ हो रहे है, या अचानक बगैर कोई स्पष्ट कारण की मृत्यु जैसे लक्षण दिखाई देवे, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करे के चाहिए। समय रहते क्रियाशील होवे से बड़गर नुकसान से बचल जा सके है। सभ्य या नया मुर्गी के कम से कम 30 दिन क्वारंटीन यानी संगरोध में, यानी सबसे अलग करके, बाकी सब मुर्गी से अलग करके रखे के चाहिए। मुर्गी करके तो साफ सुथरा रखने के चाहिए, अपने भी कहवे किलखियाँ, और सूखा और अच्छा हवादार वाला जगह होवे के चाहिए।
1: हाँ
0: जंगली पक्षी और चूहा से भी बचाव बहुत जरूरी है, न तो बर्ड फ्लू फैले के संभावना हो सके है। बर्ड फ्लू मुर्गी के सबसे ज्यादा घातक रोग है। एकर लक्षण है कि सिर में सूजन हो जाए, कलगी नीला हो जाए, सांस लेवे में तकलीफ होवे लगा है, दस्त होवे है, अंडा देवे में कमी हो जाए, और बौधा तो मुर्गी मर भी जाए। ये एगो वायरल बीमारी है और एकर कोई सटीक इलाज भी नहीं है। ई गुनी एकर टीकाकरण भी अभी संभव नहीं है, तो ऐसे में सावधानी
1: बर्ड
0: रखना
1: फ्लू
0: चाहिए।
1: हो गए के
0: बिल्कुल
1: बाद आनंद भाई सामान्य रूप से लोग ओकरा के खाए से भी बचे लगेला,
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब
1: तो
0: बीमार हो गए
1: एगो
0: मुर्गी
1: सीधा
0: तब।
1: घाटा लगेला।
0: हाँ, तो निश्चित रूप से ये सब बीमारी से बचाव जरूरी है, जानकारी जरूरी है ताकि बचाव हो सके।
1: आनंद भाई, ई तो भइल हमनी के व्यावसायिक रूप से यदि हमनी मुर्गी पालन करतनी तो वह बारे में कुछ सुझाव। अब समय बा कि हमनी का एगो गीत सुने के, कलाकार बनी अवधेश कुमार सुने
0: सुने
1: के,
0: सुने
1: वहां
0: जाए।
1: से ई लोक भजन।

0: आनंद भाई, अवधेश कुमार जी रनी है, गीत सुनावत। आगे यहाँ से और भी गीत हमने का सुनल जी। अभी अपना कार्यक्रम में एगो वार्ता सुने के, वायु प्रदूषण और उससे बचाव।
1: वार्ताकार के है कि
0: वार्ताकार बनी अंजू सिंह,
1: सुनल जाए
0: सुने के ई वार्ता।
2: मान परिदृश्य में परिवर्तन के साथ पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण की मात्रा 10 गुना बढ़ गई है। पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन मनुष्य, जानवरों और पौधों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। प्रदूषण किसी भी प्राकृतिक संसाधन के साथ संतुलन को संदर्भित करता है। ये वायु और जल प्रदूषक को उन सामग्रियों या पदार्थों के रूप में संदर्भ करते हैं जो प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। वायु प्रदूषण प्रदूषण का एक प्रमुख प्रकार। इसे पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण वायु के संदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मीथेन, क्लोरोफ्लोर, कार्बन CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया शामिल है। वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हवा के भौतिक और रासायनिक गुण भी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं और आप सामान्य रूप से प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से उनका पता लगा सकते हैं। वायु प्रदूषण को मीथेन, क्लोरोफ्लोर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि जैसे रसायनों और हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति के कारण वायु को दूषित होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह हवा के क्षरण की ओर ले जाता है जो इसे सांस लेने के लिए अनुपयुक्त बनाता है। इससे अस्थमा, साइनस, फेफड़ों का कैंसर, वात स्फीति, ब्रोंकाइटिस आदि जैसे कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है। वायु प्रदूषण हवा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों को बदलकर इसकी मूल गुणवत्ता को बदल देते हैं। पर्यावरण में कई प्रदूषकों की मौजूदगी के कारण हवा के रासायनिक स्तर सांद्रता बदल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हवा की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आती है। वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकार 2 अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं क्लोरीन, सल्फर, मीथेन इत्यादि उत्सर्जित कर सकते हैं। ये वायु प्रदूषण के कई कारणों में से एक। जीवाशय ईंधन को जलाना वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। औद्योगिक कारण के कारण औद्योगिक स्रोत और अन्य ईंधन मशीनों को समुचित संचालन में मदद करते हैं। ऐसे बहुत से उपकरण हैं जो पर्यावरण में हानिकारक गैस छोड़ते हैं। इससे हेयर स्प्रे, पेंट, वॉशिंग, एरोसोल स्प्रे आदि शामिल है। कुछ सैन्य युद्ध उपकरण जैसे परमाणु हथियार, जहरीली गैस, रॉकेट भी इस सूची में शामिल है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। कारखानों में इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और ऐसी ही अन्य गैस छोड़ते हैं। कृषि उद्योग में

भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान है। किसान कई तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, ये पर्यावरण में कई हानिकारक उत्सर्जन फैला सकते हैं। इससे मुख्य घटक अमोनिया है, यह हवा को अत्यधिक प्रदूषित करता है। दुनिया के हर बड़े शहर में कई लैंडफिल पर्यावरण में बहुत बड़ा मीथेन गैस पैदा करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पृथ्वी के अंदर से खनिज निकलने के लिए खनन में बहुत सारी भारी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये मशीनें हवा को दूषित करने के अलावा बहुत अधिक शोर भी पैदा करती है। यह वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। जब कोयले और पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पर्यावरण में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पर्यावरण में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन छोड़ते हैं। ये दोनों गैस वायु प्रदूषण में योगदान देती है। वायु प्रदूषण के मनुष्य, जानवरों, पौधों और पर्यावरण पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। वायु प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वायु प्रदूषण से मनुष्य बहुत प्रभावित होते हैं, और यह कैसे आसानी से फैलता है और इसके शरीर में समस्याएं पैदा करता है। वायु प्रदूषण से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में अस्थमा, एलर्जी, साइनस, फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और वात स्फूर्ति शामिल है। WHO के अनुसार हर साल वायु प्रदूषण से जुड़ी जटिलताओं के कारण 7 मिलियन से अधिक लोग मरते हैं। वायु प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव फेफड़ों को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब पौधे और जानवर लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं तो इससे उनकी वृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पौधों की वृद्धि एक रुक जाती है और वे वांछित उपज देने में विफल हो जाती है। पौधों में रंध्र भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बाद में गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरी ओर जानवरों को जीवित रहना मुश्किल लगता है और वे संक्रमण का शिकार बन जाते हैं। इसके कारण उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। वर्तमान में इससे एक छेद हो गया है। इसके माध्यम से सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें पृथ्वी की सतह पर प्रवेश करती है। चूंकि वायु प्रदूषण पर्यावरण में नई हानिकारक गैसों को जन्म देती है, इसलिए इस गैस का पानी की बूंदों के साथ मिल जाना अम्लीय वर्षा के कारण बन सकता है। अम्लीय वर्षा सतहों को नष्ट कर सकती है और पौधों के जीवन को नष्ट कर सकती है। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी की अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इससे आसमान का रंग रूप भी बदल जाता है। कम धूप के कारण पौधों और इंसानों दोनों के जीवन प्रभावित होते हैं। हमने आपको प्रदूषण और प्रदूषकों की सामान्य परिभाषा बताई है। प्रदूषण में से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक संसाधन के दूषित होने से है। ये वायु और जल प्रदूषकों को उन सामग्रियों या पदार्थों के रूप में संदर्भित करते हैं जो प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। ये प्रदूषक पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। फिर हमने वायु प्रदूषण पर चर्चा की, जो प्रदूषण का एक प्रमुख प्रकार है। वायु प्रदूषण का तात्पर्य रसायन, हानिकारकों गैस और ऐसे अन्य कणों की उपस्थिति के कारण वायु के दूषित होने से है। यह हवा के क्षरण का कारण बनता है, जो इसे सांस लेने के लिए अनुपयुक्त बताता है। यह सही समय है कि हम वायु प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए कदम उठाएं। वायु प्रदूषण एवं बहुआयामी पर्यावरण चुनौती है, जिसके लिए व्यापक समझ और सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है। प्रदूषकों के स्रोतों और प्रकारों की पहचान कर उनके प्रभावों को समझकर प्रभावी नियंत्रण रणनीतियों को लागू करके हम वायु की गुणवत्ता के उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा कर सकते हैं। वेदांत में हम छात्राओं और अभिभावकों को स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह की ओर उनकी यात्रा में सशक्त बनने के लिए विस्तृत और सुलभ शैक्षिक संसाधन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वायु से प्रदूषकों को अवशोषित करने और बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों और पौधों का उपयोग करना दूषित वातावरण के सफाई के लिए अस्थायी समाधान प्रदान करता है।
वायु प्रदूषण

0: के स्रोतों और प्रभावों के बारे में जनता और शिक्षित करने से व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्वच्छ वायु प्राप्त हो सकती है। वायु प्रदूषण को समझने के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग है जो समाज और पर्यावरण के लिए लाभकारी है।
1: नारद भाई, अभी हमने का ये वार्ता सुनत रहनी है।
2: वायु प्रदूषण में से बचाओ,
1: वार्ताकार रही है
2: अंजू
1: अंजू सिंह
2: सिंह।
1: जी।
2: बिल्कुल
1: अन भाई, वायु प्रदूषण सामान्य रूप से ये समझे वाला चीज़ बा, और आज की दुनिया में खास करके विकासशील देश जे एकरा के झेल रहल बा, वो अब विकासशील देश के नागरिक लोग के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है,
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कल की आपने।
1: और बड़ पैमाना पर लोग दमा और यही तरह के दूसर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से ओकर शिकार हो रहा
2: बहुत
1: बड़े,
2: बहुत तरह की
1: प्रभावित हो
2: बीमारी।
1: रहा
2: हाँ
1: बड़े। सबसे जे एमे हमने के यहाँ अपना हिंदुस्तान के अंदर जे प्राथमिक जे प्रदूषक जे मने एकरा के कहल जा सकेला, जोन वातावरण में उत्सर्जित होके हमने के स्वास्थ्य के प्रभावित करेला, ओमे सल्फर डाइऑक्साइड
2: अच्छा
1: कोयला आ तेल का जलला से ये उत्पादित हो जला, और सल्फर डाइऑक्साइड जे बा सबसे ज़्यादा हमने के स्वास्थ्य के
2: नुकसान
1: प्रभावित
2: पहुंचा।
1: प्रभावित करेला। फिर वही तरह से यदि उच्च तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यदि उत्सर्जित होके, तो ई जे बा स्वास्थ्य के प्रभावित करेला, हवा के धुंध जे होला वो एकरा से ई उत्पन्न होत रहला।
2: फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओकरो से धूल से धुआं से ये सब से नुकसान होवे। एकर जे प्रमुख स्रोत है उदय भाई, वाहन के धुआं है ना, फिर उद्योग कल कारखाना से निकले वाला रसायन, चाहे फिर धुआं, फिर पुआल जरा पराली भी कहल जाए जलाना, ओकर अलावे।
1: वो तो अमोनिया उत्सर्जित करेला है स्त्री, और वो पराली जे बा वो ज्यादा घातक होला
2: बहुत
1: स्वास्थ्य
2: बहुत
1: के।
2: ओकर अलावे निर्माण कार्य में भी देखे हमने कि बहुत धूल उड़ा
1: हाँ,
2: है,
1: धूल का
2: और वो
1: धूल।
2: भी प्रदूषण के बहुत बड़ा कारण है। फिर कचरा जलावे से भी, सब प्लास्टिक वगैरह जो रहे कचरा लोग जला देखी, वायु प्रदूषण ओकरों से फैले है। बच्चे लगी क्या करे के चाहिए कि जे ये सब कचरा है ओकरा सीधे सीधे जलावे से बचे के चाहिए। औद्योगिक कल कारखाना में धुआं जो है वो सब कम निकले या नहीं निकले, एकर उपाय करल बहुत जरूरी है।
1: ये सब आवश्यक चीज बा। अनंत भाई, सबसे यह बा कि हमने के वातावरण में जे गैस के मात्रा बा, जिनमें ऑक्सीजन भी जे बा एक निर्धारित मात्रा में बा, तो जैसे ही ये सब गैस जे बा जे भी हमने खातिर अहितकर जे गैस बा, एकर मात्रा जैसे ही बढ़ेला तो पर्यावरणीय असंतुलन कायम हो जाला
2: बिल्कुल
1: वायुमंडल के अंदर, और यह हमनी के जीवन खातिर सबसे घातक बा।
2: हमारा लगा है उदय भाई कि वाहन के प्रयोग भी कम से कम करे के चाहिए।
1: बड़का
2: हाँ,
1: बड़का
2: आमतौर
1: कंसर्न।
2: पर देखे में आवा है कि एक आदमी एक ही गाड़ी ले जा रहे हैं, तो भाई पूरा तो जगह घेर रहा है, अलगे वायु प्रदूषण भी करवा रहा है और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, राष्ट्र पर ओकर बोझ भी पड़ रहा है। चूंकि जे तेल जरावल जा रहा है वो विदेशी मुद्रा खर्च करके तब लावल जाए यहाँ,
1: आनंद
2: तो
1: भाई, कभी कभी तो ऐसा ऐसा गाड़ी जोगार गाड़ी जेकरा के कहल जाला, पता ना लोग का अपने चेतना होके के चाहे जे हमने के इस यह तरह के नियंत्रित करे वाला इकाई सब बा, वो सामान्य वाहन पर तो नियंत्रण करेला, लेकिन वो धुआं छकड़ा जे बा वो तो आता ना हवाई जहाज खानी दौड़ावेला सन, जे पूछे मत तो कोई धाका मार देवे तो लोग के का न का हो जाए,
2: बिल्कुल
1: आ ओकरा पर कोनो प्रशासनिक नियंत्रण या फिर वह तरह से प्रभावी हस्तक्षेप कोनो नजर ना
2: नहीं
1: आए।
2: आवे है, नहीं आवे है।
1: तो ये सब जे कारण बा, ये मूल कारण बा, और कोनो भी कारण के बहुत हल्का में ना समझे के चाहे, एक एक छोट छोट कारण बन के एक बड़ कारण बन जाला, और सीधे सीधे आदमी का जीवन के प्रभावित करेला। तो आवश्यकता बा कि सब चीज पर ध्यान दी, और हमनी का चले के अब गीत के दुनिया में सुने के एगो पूर्वी कलाकार बनी अवधेश कुमार।
2: सुनल जाए।

0: उसका था कि अब पॉलिशन बन जाएगा, लेकिन सालों उसने उसको छुट्टियों नहीं मिलता है साले को,
1: हाँ
0: तो 5 महीना 4 महीना जरूर हो गया होगा
1: हाँ
0: चालान जमा किए हुए, आज उसका भी पॉलिशन बनवाया। फिर
1: ओ
0: हम अपना बनवाने लगे थे, बोले एक तो और मोटरसाइकिल है जी, तो बोला
1: आनंद भाई,
0: हाँ
1: अभी हमने का सुनत रही है गीत, कलाकार रही है उदेश कुमार। समय जे बा चौपाल के संपन्न हो गिल बा, थोड़ा देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत कीजिए।
0: बिल्कुल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आनंद भाई,
2: हाँ,
1: खेती गृहस्थी में अब समय बा प्रायोजित कार्यक्रम के, और आज के प्रायोजित कार्यक्रम बा रोजगार।
2: सुनेंगे।
3: प्रायोजक है SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, गरौल रेलवे स्टेशन के पास, गरौल वैशाली।
4: रोजगार, रोजगार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में आ चुका है। हम ये प्रिविलेज ले रहे हैं कि हम अपने वैशाली जिले में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रहे हैं, और इसी सत्र से SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट गोरौल में BBA और BCA की पढ़ाई होगी यहाँ पर। और नंबर हम बता दें कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो आप इस नंबर को डायल करें 9155558888, 9155558888। SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट AICTE और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे फोन कॉल आए, कुछ लोगों ने कहा कि ये विजिट भी किए थे। कैंपस अभी बन रहा है ना, कैंपस बन रहा है, लेकिन और दूसरे कोर्सेज के लिए BBA और BCA के लिए पूरा तैयार है, क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी है। पूरा एक कैंपस होगा जिसमें अलग अलग तरीके की पढ़ाई कराई जाएगी। हमने आपको याद दिलाया था पिछले एपिसोड में भी कि ये श्री राज ग्रुप का है, जिनका कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, और उसकी विश्वसनीयता है, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो निश्चित रूप से BBA और BCA के बाद हेल्थ सेक्टर को भी वहां आना है, इसीलिए अभी भी काम जारी है और आगे वो सतत चलता रहेगा।
5: तो आज के कार्यक्रम में हमें आपको ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि हमने कहा अभी अभी कि श्री राज ग्रुप का है, और भी कोर्स आने हैं, तो बस हम जल्दी से दो कोर्स यहाँ हेल्थ सेक्टर के और शुरू करने जा रहे हैं, GNM और BSc नर्सिंग का कोर्स। जी हाँ, हमने कहा GNM और BSc नर्सिंग का कोर्स यहाँ शुरू होने जा रहा है, और जिसके लिए जानकारियां दी जाने लगी हैं, और इस कार्यक्रम रोजगार के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं अभी अभी। कैसा लगा, कैसा लगा BCA BBA? कंप्यूटर भी और हेल्थ के सेक्टर में भी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, GNM और BSc नर्सिंग की बातें यहाँ होंगी। पटना में भी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ ये कोर्स उसी गुणवत्ता के साथ शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। जो लोग भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किए हैं, वो 9155558888, 9155558888 ये नंबर है, इस पर जानकारियां ले सकते हैं। आप पटना भी आ सकते हैं और अपने गोरौल में, जी हाँ, गोरौल में भी आप, जो संस्कार नगर कॉलोनी है, गोरौल स्टेशन से PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीचों बीच ये संस्थान स्थित है, वहां के लोगों के लिए और भी कोर्सेज का जुगाड़ हो रहा है, और भी कोर्सेज वहां शुरू किए जाएंगे, जिससे गांव का विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र के युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल
4: डॉक्टर NP प्रियदर्शी हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठे हैं, आप लोगों से खुद बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि BBA करने से क्या फायदा, मुख्य फायदे क्या हैं?
4: हाँ,
6: तो मैं अगले बार भी बताया था, इस बार फिर से बताता हूँ
4: जी,
6: कि कैरियर ग्रोथ, अगर आप करियर में आप चाहते हैं कि बहुत एडवांस हो, हम आगे बढ़े, तो यह सबसे अच्छा है, क्योंकि यह क्या करता है कि आपको लीडरशिप रोल में प्रोजेक्ट करता है, लीडरशिप में आपको प्रोजेक्ट ले जाता है, तैयार करता है, और बिजनेस एनालिस्ट करता है, मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कराता है कि मार्केट में क्या चाहिए और तुम क्या देना चाहते हो, क्या दे तुम्हारे पास उपलब्ध है
4: जी।
6: तो इस बात को यही कराता है, BBA कराता है। उसके साथ साथ हर कोई को

0: अपेक्षा होता है कि हमारा इकोनॉमिकली हम आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मास्टर बीबीए करने वाले लोग को ये चांस मिलता है और वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि हर मार्केटिंग के ऊपर जो रहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। हाँ। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल के ऊपर के लोगों को गाइड करता है
1: जी।
0: उसको स्किल्ड करता है, उसको ट्रेंड करता है, तो निश्चित रूप से इसका आय भी इसका भी सैलरी होता है जो उन लोग से ऊपर होता है। तो और जो बैचलर करके आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करके आए या और भी कोर्स दूसरे कोर्स करके आए, तो उनको लीड करने के लिए उनसे ऊपर का जो आदमी होता है वो बीबीए वाले होते हैं, बैचलर एडमिनिस्ट्रेटर होता है।
1: बिल्कुल।
0: उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल डील होता है तो इसके लिए भी वही यही करते हैं, तो ये उसके लिए होता है। उसके साथ साथ नेटवर्किंग होता है कि ये जो बीबीए वाले होते हैं वो सभी को नेटवर्किंग कर करके एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं, तो ये स्किल्ड जो होता है वो सिर्फ इसी को इम्प्लीमेंट करना होता है, दूसरे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इन्ही को इम्प्लीमेंट करना होता है। और आगे चल करके यही ये कहने का मतलब कि मैनेजर वगैरह वगैरह तक जाते हैं, बहुत सारे जाते, जितना उसका लेबर होता है उतना वो चाहता है,
1: और हायर एजुकेशन में भी तो जा सकते,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: MBA
0: बिल्कुल
1: कर सकते हैं,
0: बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका जो लेवल जो होता है वो राजेश जी, इसका लेवल जो होता है वो वैश्विक स्तर पर होता है, मतलब हाई आज क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या होना चाहिए, अमेरिका में हो रहा है क्या, इंग्लैंड में हो रहा है क्या, यहाँ हो रहा है क्या, हमें करना चाहिए, ये सब जो उसके पास ग्लैंस होता है, एटीट्यूड होता है, वो सिर्फ MBA ही दिखा सकता है और आगे ले जा सकता है, विजन उसी के पास होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कहने का मतलब कि बीबीए करने का जो रोल है यह बहुत ही बड़ा, एक छोटा सा पेड़ जैसे बीज जो होता है, किसी पेड़ का बीज जो होता है उसमें पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, फल नहीं दिखते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ निहित रहता है। उसी तरह जैसे ही बीज को डालते हैं तो अपने आप को अस्तित्व को समाप्त कर करके और उसके बाद बड़े फल बीज पेड़ का जन्म देता है। हाँ। और उसके बाद उसमें से कितने फल निकलते हैं, तो उसी तरह से बीबीए भी है, इसी तरह का है कि ये बीज है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ने पर इसका ग्लोरेंस बहुत ज्यादा आता है और ये फ्लोरिश कर करके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है।
1: बीसीए की बात आगे आप करें उससे पहले बता दें कि कार्यक्रम रोजगार चल रहा है, मैं हूं राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी बैठे हैं, आपके सवालों का, आपके जिज्ञासाओं का जवाब दे रहे हैं। कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना इसी सत्र से हो रही है आपके गोरौल में, और ये है स्टेशन गोरौल स्टेशन और PSC या आप गोरौल चौराहा कह लें, उसके ठीक बीच में है SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट BBA और BCA की पढ़ाई के लिए, जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त भी है। सबसे पहले देखना चाहिए कहीं अगर पढ़ने जा रहे हैं तो संस्था कहां से मान्यता प्राप्त है, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कौन सा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है श्रीराज ग्रुप है जिसका नर्सिंग कॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल है उसकी अगली कड़ी है, और जिन लोगों ने जाकर देखा है साइट पर कॉलेज में वो अभी भी देख रहे हैं कि अभी एक्सटेंशन होता ही चला जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नंबर नोट करें 9155588889155558888। अब पटना आने की कोई जरूरत नहीं, ना मुजफ्फरपुर जाने की कोई जरूरत है, एकदम गोरौल में एकदम स्टेशन से उतरिए और पैदल आ जाइए आप। हाँ, इंस्टीट्यूशन आपके ही आपके घर के पास आ गया। हालांकि आपने राजेश को हमेशा सुना है, हम कहते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए, जी हाँ, जिसमें BCA और BBA का नाम जरूर लेते हैं और कहते हैं कि ये वो पढ़ाई है जिसको पढ़कर आगे आप जा सकते हैं। साथ में हम ये भी कहते हैं लगातार युवा साथियों कि बिला वजह बाहर जाने की जरूरत नहीं, बिहार की बात करते रहें कि बिला वजह बिहार से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारा कुछ अपने बिहार में है, और अगर जो आपने नजर उठाकर देखा ना तो सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। और इसी की कड़ी में डॉक्टर NP प्रियदर्शी से एक दफा हमारी बात हो रही थी, इन्होंने कहा गोरौल में किसी हेल्थ सेक्टर की बातें चल रही थी, वैसे में बातचीत के क्रम में BCA और BBA की भी चर्चा चली और देखिए बातें हुई और आपके घर में इंस्टीट्यूशन खुल गया, SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, खुला ही नहीं, और हमने अभी आपको जानकारी दी कि डॉक्टर साहब से बात चल रही

0: नीति और योजनाएं बहुत बड़ी हैं, तो एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कैंपस में ही, हाँ, श्रीराज ग्रुप का अगला जो कोर्स है, जो हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीसीए और बीबीए के बाद हेल्थ सेक्टर का जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी शुरू होने जा रहा है, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है उनके लिए बहुत ही गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसी कैंपस में, एसएस प्रोफेशनल में आपको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी मिलेगा। वही गोड़ौल हम समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए, एकदम उनके विकास के लिए तत्पर हैं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, और लगातार ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो आसपास के जितने लोग हैं, गोरौल के लोग हैं, भगवानपुर हैं, मुजफ्फरपुर हैं, आप छपरा तक के लोग हैं, बिदुपुर है, जंदाहा है, महुआ है, ये पूरा इलाका जो कभी सोचता था कि बाहर जाना होगा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर की बात है, घर की बात है, घर में ही संस्थान है। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा आगे बढ़ जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी देना चाहते हैं ग्रामीण युवाओं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो सरकार पढ़ने के लिए 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन भी दे रही है, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल सकती हैं, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ उठाइए और घर बैठकर ही अपने करियर को, अपने रोजगार को, अपने व्यावसायिक शिक्षा को, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, पैसे की भी अब कोई चिंता नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, बीसीए के बारे में आप कुछ बता रहे थे।
1: देखिए बीसीए एमबीए तो बताया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के
0: बीबीए,
1: अंतर्गत था,
0: हाँ
1: बीबीए, और उसके बाद बीसीए बीसीए आता है।
0: जी
1: यह भी एक तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर में सबसे अच्छा कोर्स है।
0: जी
1: आईटी सेक्टर का सबसे अच्छा कोर्स है। आईटी सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशन आया है और उस रेवोल्यूशन में बीसीए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है।
0: हाँ
1: और इससे कारण क्या है कि यह तुरंत अब कहने का मतलब कि यह सबसे उम्दा कोर्स हो जाता है और तुरंत इसको मार्केट में लाकर के नेटवर्क खड़ा कर करके और उसके बाद पूरा अपने बिजनेस को, अपने वो एंटरप्रेन्योर को, अपने कह सकते हैं वो जितने जो संस्थान है उसको आगे ले जाने के लिए जो विजन तैयार करता है वो बीसीए ही तैयार करता है और उस तरह से कंप्यूटराइज यील्ड निकालता है उसमें से। तो ये काम जो है बीसीए वाले ही कर सकते हैं, एमसीए वाले ही कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है,
0: बहुत बड़ा क्षेत्र है। और थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका आभार अभिनंदन युवा साथियों की तरफ से कि आपने इतने वाइब्रेंट कोर्स को आपने रिस्क लिया और गोरौल में उतार दिया। हाँ वहां वहां एकदम सारी चीजें आपने उपलब्ध करा दी हैं। युवा साथियों, गोरौल में एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि गोरौल स्टेशन से निकलिएगा और पीएससी की तरफ बढ़िएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको कहते हैं उसकी तरफ बढ़िएगा, बाजार भी है, तो ठीक उसके बीचों बीच है एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ठहरने का भी इंतजाम है, हॉस्टल की व्यवस्था है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी था कि 20 किलोमीटर तक जो है वो आपके लिए गाड़ी को भी अवेलेबल कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। नंबर एक बार बता दें फिर डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888। हाँ जिन लोगों को अगर उन्होंने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया है, रिजल्ट्स आ गए हैं, तो देर करने की जरूरत नहीं है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स भी यहाँ शुरू होने जा रहे हैं, आप जानकारियां ले सकते हैं। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, कोविड काफी समय निकल गया लेकिन आज भी हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए और आश्वस्त हो जाइए, हेल्थ सेक्टर में आप रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, रोजगार बोले तो सरकारी या निजी क्षेत्र में स्वरोजगार भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए। फिलहाल चलने से पहले एक बार नंबर बता दें, 9155558888, 9155558888।

0: 888-888 ये नंबर है, आप चाहें तो बात कर लीजिए डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट गरौल रेलवे स्टेशन के पास गरौल वैशाली।
2: आनंद भाई,
3: हाँ हाँ
2: अभी हमने का ई प्रायोजित कार्यक्रम सुनत नहीं है रोजगार समय बाकी कुछ बातचीत कई जाओ कृषि के तहत वान कृषि वानिकी पर और उनमें भी खास तौर से पेड़ लगावे के बारे में, इमारती लकड़ी के बारे में।
3: अच्छा, पेड़ भी तो इमारती मतलब वृक्षारोपण के महत्व भाई हम सब जानिए रह लिए है, लेकिन ये बात है कि जब पेड़ लगावल जाए तो सोचे पड़े है कि पेड़ कौन सी के लगावल जाए। पेड़ वृक्षारोपण भी जो है तीन तरह के हो भाई, एक तो जे फल देवे पौधा फलदार पौधा, दूसर का जलावन वाला पौधा जलावन वाला पेड़ जिस जलावन मिल रहा है, तीसर का इमारती लकड़ी जगह से फर्नीचर कुर्सी टेबल दरवाजा चौखट वगैरह सब बनना है। तो बात आज कही जाए इमारती वृक्ष के बारे में कि इमारती वृक्ष लगावे से फायदा है ओकरा लगावल जाए। देखा इमारती लकड़ी में जे पेड़ सब है ओकरा में बात करल जाए तो सबसे पहले तो अब बात शीशम के, सागवान, अर्जुन, महोगनी, इक्लिप्टस, गम्हार या खमेर भी जरा कहल जाए इस सब के।
2: पहले हमने की हाँ शीशम जब बहुतायत हो गया,
3: हाँ,
2: लेकिन अब धीरे धीरे पता ना कौन बीमारी आई कि शीशम धीरे धीरे अपना यहाँ से बहुत कम हो चल गई,
3: वृद्धि कम
2: और,
3: होकर
2: और अब पहले तो शीशम जेबा यहीं जहाँ गाछी रहे ओजा जेबा अपने से शीशम जेबा उगावे और धीरे धीरे वो पेड़ के रूप ले लेवे और विकसित भी हो जाए और
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: बढ़िया लकड़ी भी होला शीशम के, लेकिन खैर
3: मजबूत और भारी होबा है। इमारती वृक्ष में सागवान के सबसे कीमती इमारती लकड़ी मानल जाए, एक मांग फर्नीचर उद्योग में सबसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो 12 से 15 साल में कटाई लायक तैयार हो जाए, मगर 20-25 साल तक रखला से ही बहुत अच्छा तैयार हुआ है। गम्हार भी तेजी से बढ़े वाला इमारती लकड़ी है, ये वजन में हल्का लेकिन मजबूत और काट छांट या डिजाइन बनावे में आसानी वाला लकड़ी है, ये गुण एकर मांग भी खूब है। शीशम के लकड़ी भारी मगर मजबूत होबा है और एकर फर्नीचर लगी बढ़िया एकरा मानल जाए, काहे कि बहुत बरियार भी हुआ है। महोगनी के पेड़ भी 10 से 12 साल में तैयार हो जाए, एकर लकड़ी हल्का मगर मजबूत होवे है, एकर लकड़ी नाव फर्नीचर संगीत वाद्य यंत्र और बंदूक आदि के कुंदा बनावे में बड़ी उपयुक्त मानल जाए। इकलिप्टस कम लागत और कम समय में उगावल जा सके वाला एगो आओ सस्ता इमारती लकड़ी है जेकर खूब प्रयोग होवे है। वृक्षारोपण के बात करल जाए तो आओ सब प्रकार के वृक्षारोपणियन इमारती लकड़ी के भी पौधा लगावे के उपयुक्त समय जुलाई से अगस्त तक के उपयुक्त मानल जाए। इमारती लकड़ी के वृक्ष लगी मट्टी रेतीला दोमट ज्यादा उपयुक्त होवे है। दो पेड़ के बीच के दूरी के बात कही जाए उदय भाई, तो विशेष ध्यान रखे की जरूरत है एकरा पर, कहे कि यदि दो पेड़ के बीच में बढ़िया दूरी नहीं रहत तो पेड़ के बढ़वार नहीं होवत। दो पेड़ के बीच दूरी 8 से 10 फीट से लेके 4 से 5 मीटर तक रखल जा सके, माने पेड़ के प्रकार के अनुसार, ताकि ओकरा फैले लगी पर्याप्त जगह मिल सके। शुरुआती 3-4 साल तक पौधा के नियमित देखभाल, खाद, कंपोस्ट, सिंचाई आदि पर विशेष ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। खेत के आरी पर यानी कि मेड़ पर भी एकर रोपण करके अच्छा लाभ लेवल जा सके है, और खुला या खाली या बेकार पड़ल जगह पर तो ये वृक्षारोपण बहुत फायदेमंद है।
2: आनंद भाई, हमने का महुआ भी, तूत भी,
3: हाँ,
2: इस तरह के लकड़ी के भी जोन जेबा जकड़ा खातिर ज्यादा हमने का तरजुत करे के ना पड़ेला,
3: बिल्कुल
2: वह तरह के लकड़ी के भी हमने का लगा सकेले,
3: हाँ,
2: उस तरह के पेड़ के और वो जेबा हमने खातिर फायदेमंद हो,
3: फायदेमंद हो।
2: हाँ हाँ, तो आवश्यकता बा कि एकरा के भी प्रयोग करे के चाहे, कहे कि अब मांग बहुत बढ़ रहा बा इस तरह के लकड़ी के,
3: हाँ,
2: धीरे धीरे जेबा हमने का एकरा के कई तरह से उपयोग कर रहा बनी, इमारत के अलावे भी फर्नीचर और दूसरा भी का इनमें बहुत ज्यादा हमने का उपयोग में ले रहल बनी लकड़ी, तो मांग एकर बा ऐसे यदि हमने एकरा के लगाई तो ये लाभप्रद हो सकेला, हमने खातिर फायदा के रही फायदा।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आनंद भाई, अब समय बाकी एगो और गीत हमने का सुने के, कलाकार बनी अवधेश कुमार, सुने के वहां से ई गीत
3: सुनल जाए।

0: वाह वाह वाह, हरिहर के अवधेश कुमार आज
1: एक बढ़िया गीत सुनोनी आज।
0: सब लोग गीत लगी आज इकट्ठे, इनका धन्यवाद उदय देवल जाए। और चौपाल के
1: समय

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।

0: स्वच्छता की आवाज आकाशवाणी के साथ।
1: इधर आइए, इधर।
0: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य में बड़े पैमाने पर

0: पुलिस महकमे में फेरबदल, कई आईएएस ऑफिसर का भी तबादला। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव। मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने आज बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज खुद राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है।
1: समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। जब समाज सक्रिय हो जाता है तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कानून व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार भी मौजूद थे। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 28 जून को खाली हो रहे इन सीटों के लिए इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। एनडीए से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का परिषद सदस्य बनना तय माना जा रहा है। जदयू से जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाजपा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय मेहू की सीट खाली हो रही है, जबकि कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सम्राट सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सुधांशु कुमार को एडीजी विधि व्यवस्था और विकास वैभव को मगध क्षेत्र का आईजी बनाया गया है। वहीं नैयर हसनैन खान को आर्थिक अपराध इकाई से हटाकर विशेष सशस्त्र पुलिस बल की जिम्मेदारी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार तकनीकी सेवाएं एवं संचार के एडीजी निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के एडीजी डॉक्टर अमित कुमार जैन अब आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी होंगे। चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से हटाकर एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार बनाया गया है। इधर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। आनंद किशोर फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। एचआर श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

0: संतोष कुमार मल्ल को जल संसाधन विभाग से हटाकर आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। लोकेश कुमार सिंह को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। अजय यादव को ऊर्जा विभाग और संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रणव कुमार को भवन निर्माण विभाग का नया सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रशेखर सिंह अब जल संसाधन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर विशेष सहायक पुलिस सैप की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की भर्ती के लिए पटना जिले के दानापुर कैंट स्थित सेवा रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज सुबह राज्य के पहले गैर द्रविड़ पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिश्व शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। इधर सारण के हरिहरनाथ मंदिर में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। आयोजन में भक्ति संगीत, स्तुति गान और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pattna को फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में चार्जिंग प्वाइंट का जाल बिछाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
2: बिहार में पर्यावरण एक समस्या बन गई है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हम लोग प्रोत्साहित करने जा रहे हैं और ये इसको प्रोत्साहित करने के क्रम में हम लोग समूचे बिहार में चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं।
0: खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवर्षी ने कहा है कि राज्य में सुशासन का राज कायम करना सरकार की प्राथमिकता है। श्री चंद्रवर्षी ने मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनके रख रखाव में अनियमितता के मामले में इंजीनियर और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करने वाली संस्थाओं को पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। एम्स पटना में आज नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और नवजात शिशु विशेषज्ञों ने भाग

लिया। राष्ट्रीय नवजात विज्ञान फोरम की ओर से आयोजित इस शिविर में एक ही दिन में 18,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को नवजात पुनर्जीवन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक सह कुलपति डॉक्टर राजू अग्रवाल ने इस प्रशिक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्यकर्मी हर परिस्थिति में प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्रम में यूनिसेफ बिहार की चीफ ऑफ फील्ड ऑफिसर मोनिका नीलसन, सांसद

0: सारण, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल के क्षेत्रों सहित प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
1: दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम में परिवर्तन से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कैमूर, सारण, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र के NH 139 पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री झा ने हत्या, आर्म्स एक्ट और संगीन मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम ने झीलिया मोहल्ले में 1,82,00,000 रुपये की लागत से 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को पूरा करने की पहल शुरू की है। जहानाबाद जिला ने 7 निश्चय और 1 और 2 की योजनाओं के कार्यक्रम में क्रियान्वयन में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2026 के लिए जारी रैंकिंग रिपोर्ट में जहानाबाद ने यह उपलब्धि दर्ज की है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के विश्वामित्र स्थान और कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि दोनों स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से जिले में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद पूर्व रेलवे ने देवघर और सरायगढ़ के बीच 31 मई तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान बांका, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, रतनपुर और मुंगेर स्टेशनों पर रुकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में फेरबदल, कई IAS ऑफिसर का भी तबादला। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव। मंत्री निशांत कुमार और दीपक प्रकाश परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
4: रोहतास जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। यह प्रक्रिया 2 मई से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि मकान सूचीकरण कार्य के तहत प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व स्वगणना में जिलावासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूछे गए सवालों के जवाब देकर जनगणना में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने स्वगणना में भाग नहीं लिया उन्हें भी मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक जनगणना में शामिल करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जिले में आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी के

0: कारण कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिली, जिससे लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति बने रहने की आशंका है। जिले के तीनों व्यवहार न्यायालयों में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सासाराम व्यवहार न्यायालय में उपस्थित न्यायाधीशों और अधिकारियों द्वारा लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिला जज अनुज कुमार जैन, SP रोशन कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन किया गया। शिक्षा विभाग की पहल पर रोहतास जिले के मॉडल स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सासाराम स्थित शेर सासुरी इंटर स्तरीय स्कूल में स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे छात्रों को डिजिटल और प्रैक्टिकल सुविधा का लाभ मिल रहा है। इस मॉडल स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने बताया कि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
1: बात हुई है मॉडल स्कूल का, अभी तो चिन्हित हुए हैं और एक सेक्शन पढ़ाई हो रही है। विस्तृत कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई और बिल्कुल ये अलग टाइप का होगा, बिल्कुल सभी विद्यालय से। नाम ही मॉडल है तो कहने का मतलब कि आदर्श, हर इंडिकेटर पर आदर्श होंगे और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी हम लोगों की पूरी कोशिश है कि ये विद्यालय बिल्कुल अलग टाइप के विद्यालय हो, जहाँ जाने पर लोगों को ये लगे कि सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर बने हैं और प्राइवेट विद्यालय से अच्छी शिक्षा दी जा रही है।
0: महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहकारी बैंक ने सकारात्मक प्रयास किया है। बीते दिनों जिले के करगहर मोड़ के समीप स्थित सहकारी बैंक की नई पिंक शाखा का उद्घाटन किया गया। पिंक शाखा में सभी अधिकारी और कर्मचारी के तौर पर महिलाएं कार्यरत हैं, जिससे यह महिलाओं द्वारा संचालित प्रदेश की पहली सहकारी बैंक शाखा बन गई है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले के विभिन्न पंचायतों में 19 मई से सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि हर महीने के दो मंगलवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए मई और जून माह का विस्तृत शेड्यूल जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत 19 मई, 2 जून और 16 जून को जिले के 18-18 पंचायतों में वरीय अधिकारियों की देखरेख में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व, अंचल, प्रखंड, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जिला मुख्यालय सासाराम स्थित सदर अस्पताल में चल रही एक सकारात्मक पहल मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके तहत मरीजों को इलाज और दवाओं के साथ साथ दीदी की रसोई के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था से मरीजों को स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक आहार मिल रहा है। इसका सबसे अधिक लाभ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को हो रहा है, जिन्हें अब इलाज के साथ साथ भोजन की भी चिंता नहीं करनी पड़ रही है। बीते दिनों समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में सासाराम और डेहरी क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर मास्टर प्लान 2045 के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उदिता सिंह ने की, जिसमें जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए। ड्राफ्ट में शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सासाराम और डेहरी को ट्विन सिटी के रूप में विकसित करने की अवधारणा पर भी चर्चा हुई। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। इसको लेकर रोहतास में MLC निवेदिता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिले में धिकार यात्रा निकालकर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।
2: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क

0: करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार हैं अनूप जलोटा। इनके स्वर में आइए सुने ये भजन।

अभी आपने कार्यक्रम सुगम संगीत सुना। कलाकार थे अनूप जलोटा, इनसे आपने ये भजन सुना। सुगम संगीत का आप आनंद 8:45 पर भी लेंगे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए आनंद ले फिल्म संगीत का।

अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम को अभी आपने सुना फिल्म चोर और चांद में, योगेश के बोल और निखिल विनय का संगीत। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: फिल्म गोपी किसन से अभी आपने ये गाना सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल समीर के थे और आनंद मिलन का संगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: विनोद राठौर और अलका याग्निक को आइए सुने फिल्म दीवाना में, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म डर में, आनंद बख्शी के बोल और शिव हरी का संगीत। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें हम सुनेंगे सीताराम सिंह के स्वर में कुछ भजन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आपने सीताराम सिंह के स्वर में कुछ भजन सुना।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को

0: संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इस

0: को स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi

वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। उन्होंने मगरबी एशिया तनाज़े के मनफी असरात को कम करने के लिए दरामदशुदा पेट्रोलियम मसनूआत के किफ़ायती इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इमकानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतालिक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। एक और मैच रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे और सनअत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह

0: किया और संघ बुनियाद रखा, जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों का मजमूई मकसद रियासत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना, रोजगार के मौके पैदा करना, लॉजिस्टिक्स की इस्तेदाद में इजाफा करना, हिफाजत में इजाफा करना और लोगों को सफर में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत मरकज की तरफ से किए गए इकदाम की वजह से मगरबी एशिया की महाजराई से उभरने वाले तवानाई के बहरान से मौसर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के इस्तेमाल में जिस तहम्मुल से काम लिया गया है वो वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दरामद की गई पेट्रोलियम मसनूआत को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत और जारी महाजराई के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलेगी।
1: सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत इस्लाहात के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना में हर कुनबे को यकीन दिलाना चाहेंगे कि मरकज आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए और ज्यादा रफ्तार के साथ काम करेगा।
1: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
0: आज जिन बड़े प्रोजेक्टों का आगाज किया गया उनमें वरंगल में पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इकतसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वज़ीर आज़म ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
1: आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिना सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मौसर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निज़ाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा दो वजरा

0: राय मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जन भवन लखनऊ में आज नए वजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वजरा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वजरा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मम्लकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मम्लकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मम्लकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मौसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खराज से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खरात के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी तश्कील दी गई थी। आईपीएस अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली एसआईटी ने नासिक में वाकई महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम उमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी अहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दीगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है, जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमेरिका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है

कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की, जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। ये अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल दो चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर्रे आज़मी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नेहरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनकी लागत तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत, हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: vowels are different, there's also a primary stress. Thus began my long, unending journey with nuances of diction. I truly feel blessed with the guidance of many avatars of Professor Henry Higgins at Broadcasting House, my Bodhi tree.
1: And then there are those milestones when Akashvani does a trajectory change, charts new vistas, creates fresh road maps.
2: फिर पाउडर लगाकर आ गई हूँ मैं आरजे सिमरन आपको ये बताने के लिए कि हाउ माई लाइफ चेंज 360 डिग्रीज एंड बैक एज आई रिमेम्बर इट इन दोज विविड क्रैकलिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मेमोरी व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन कॉल्ड एफएम रेनबो.

0: In the National Program of Features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी है रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए

तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।